0: एक और लड्डू ले लो।
1: थोड़ी और बिरयानी।
0: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
2: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
3: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
4: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
5: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag aur upar se stress.
6: Arey relax, you need a cool therapy.
5: Therapy? Wo to bahut mehengi hai.
6: Nahi, cool matlab cool cha therapy.
5: Ye kya hota?
6: Simple, Chandigarh Bites Express in Allen.
3: Chandigarh Bites Express, serving some of the best Punjabi food in Dallas. From buttery curries to authentic Punjabi street food favorites, straight from Chef Gagan Pannu's kitchen. So next time life gets stressful, just take a dose of Kulcha Therapy at Chandigarh Bites Express.
4: And now at a bigger location, just 3 doors down, with limited reservation available.
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
7: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
8: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
9: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
8: Fikar not. We have the perfect solution.
4: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
10: जिंदगी एक रंगमंच है
11: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
12: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
13: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
14: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
15: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
14: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
15: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
13: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
16: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

कश्ती तेरी किनारा मेरा है तू ही तो है देवफा तू बारिश मेरी सवेरा मेरा मैं तेरा हमरा सता कश्ती तेरी

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से।
1: डालस की जनता, क्या हाल है आप सभी लोगों के? मेरे तो बिल्कुल ठीक है भाई। इट इज 7:10 ऑन द क्लॉक एंड यस, यू आर हियर विद मी इपी द हिपी ओनली ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM. Yes, guys, and this is my show, An Evening in Dallas. Let's get the show on the road today. आज रोड में तो भाई पता नहीं लोग कैसे चला रहे थे। I mean, if you are driving, be careful. I don't know, is it me or maybe that's the energy that I'm feeling? But like, I feel like everybody is just so frantic and driving so rash lately. Maybe shayad summer ke baad everybody is like trying to settle in into the work schedule and things like that. So everyone's like in a rush to go everywhere. Lekin bhai apna dhyan rakhiye because it is very important to take care of yourselves. That's right. So without further ado, let's get the show going. Agar aap भाई आज के डेट में मैं एक्चुअली यू नो व्हाट, पहले गाना सुनते हैं फिर उसके बाद आके बातें करते हैं। हाउ अबाउट दैट?

गाइज, जैसे मैंने कि बोला था, अभी लोग पता नहीं कैसे ही चला रहे हैं. आई मीन, इट्स सो स्ट्रेसफुल ड्राइविंग ऑन DFW रोड्स दीज डेज. मुझे लगता है कहीं से कोई भी. और सबसे मैंने पता क्या नोटिस किया है, सब लोग, याद है आपको 10-12 साल पहले जब एवरीवन स्टार्टेड हैविंग देयर फोन्स एंड एवरीथिंग, सब लोग कहते थे फोन पकड़ के गाड़ी मत चलाओ. लेकिन आज मैं इधर भी देख रही हूँ, मतलब फास्ट लेन्स को लोग ब्लॉक करके अपने फोन पे स्क्रोल कर रहे हैं. लाइक लिटरली दे आर स्क्रोलिंग ऑन देयर फोन एंड दे आर जस्ट लाइक ब्लॉकिंग द फास्ट लेन एंड ड्राइविंग सो स्लोली. आगे पूरी रोड खाली है, पीछे ट्रैफिक हो रखा है क्योंकि एक बंदा हमारे सामने फोन पे स्क्रॉल कर रहा है. हाउ अनफेयर इज दैट, राइट? तो इसी कारण कई बार बहुत सारी एक्सीडेंट्स होती हैं. सो इफ यू एवर गेट इन टू एन एक्सीडेंट और मे बी लाइक अ ट्रिप एंड फॉल इंसिडेंट या फिर कुछ भी हो सकता है वेयर यू हैव बिन हर्ट, देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट लॉ ऑफिसर्स उमर ख्वाजा, ओके? बिकॉज उमर ख्वाजा इज ए पर्सनल इंजरी अटर्नी एंड ही विल मेक श्योर दैट यू गेट द मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन फॉर योर हेल्थ एंड यू कैन फोकस ऑन हीलिंग वाइल लेट हिम फाइट द केस फॉर यू. ऑलवेज डेलीगेट ऑल द स्टफ टू समवन एल्स एंड यू पे नथिंग अनलेस ही एक्चुअली विन्स. सो कॉल 4693005046 और विजिट attorneyomer.com. तो फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर अडू, हम आज, जैसे मैंने बोला था, वैसे तो टेक्निकली आई वॉन्टेड टू डू दिस स्पेशल फ्रॉम येस्टरडे. यू नो, जैसे आपको पता है, वी डू दिस रिलेशनशिप टॉक एंड यू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट वी ऑलवेज डू इट आफ्टर 9 o'clock. सो येस्टरडे आई वॉज गोइंग टू स्टार्ट इट, बट क्योंकि लेबर डे था, आई थॉट यू नो वॉट, एवरी वन इज इन अ वीकेंड काइंड ऑफ मूड. तो आई वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट. टुडे वी आर नॉट गोना बी डूइंग दैट सो मच. 9 बजे के बाद वी गोना टॉक अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉल्ड रिलेशनशिप्स एंड न्यूरो साइंस. एग्जैक्टली गाइज. तो स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड, बिकॉज आई थिंक दैट डिस्कशन इज गोना बी वर्थ योर वाइल. समथिंग टू थिंक अबाउट. मे बी यू अग्री विथ इट, मे बी यू डोंट अग्री विथ इट. लेकिन अगर आप सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, राइट? फॉर ऑल माई साइंस नर्ड्स एंड ऑल माई रिलेशनशिप नर्ड्स, दिस वन इज फॉर यू गाइज. तो मेक श्योर यू ट्यून इन आफ्टर 9 o'clock एंड देन 8 बजे हम लोग खेलेंगे ऑफकोर्स अपना अमेजिंग सा गिव अवे वाला गेम. तो लेट्स लिसन टू अ सॉन्ग एंड कम बैक एंड वी कैन टॉक अबाउट मोर ऑफ दीज थिंग्स.

गाइस, सैटरडे सितंबर 12th को एक बहुत ही अमेजिंग वर्कशॉप होने वाला है फॉर योर किड्स. इफ यू हैव किड्स बिटवीन द एजेस ऑफ 5 एंड 12, देन यू कैन जॉइन इन एट द क्ले गणेशा वर्कशॉप विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज बाय फनेशिया, ऑफ कोर्स इन एसोसिएशन विद फैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, इंश्योर होम लोन्स एंड उमर ख्वाजा. ओके, एंड बेसिकली क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे अपने क्ले से, लाइक यू नो पॉटरी जैसे होता है ना, उससे क्ले से दे गोना मेक देयर ओन गणेशास एंड इट्स गोना बी हेल्ड ऑन सितंबर 12th. अगर आपको अपने बच्चे को इसमें इन्वॉल्व करना है एट दिस वर्कशॉप, इट्स गोइंग टू बी सुपर कूल. मेक श्योर यू रजिस्टर इन एडवांस बिकॉज स्पॉट्स आर वेरी लिमिटेड. रजिस्टर एट ganesha.fanesha.net एंड लेट योर चाइल्ड्स इनर आर्टिस्ट शाइन. ठीक है, तो उसी के शुभ अवसर पर एक शुभारंभ भी किया जाए.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
3: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
4: लिया.
3: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
4: नहीं आया.
3: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
6: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
8: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
9: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
8: नहीं.
9: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
8: नहीं.
9: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
8: वो भी नहीं.
9: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
7: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
10: तारा वो तारा हर तारा.
11: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
12: होको.
13: अरे बस भी करो यार.
14: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
13: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
7: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
15: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

Ow. Ah, yeah, but,

भाई 7:56 बज चुके हैं एंड 8 बजे, जैसे आपको पता है 4 मिनट में 8 बजने वाले हैं, और 8 बजे हमारा क्या होता है, गिव अवे होता है. एग्जैक्टली गाइस, तो आज हम गिव अवे थोड़ा सा अलग से खेलेंगे. तो न्यू गेम खेलेंगे, इट्स नॉट द साउंड्स लाइक वाला गेम. आज का गिव अवे थोड़ा अलग है. तो आप मुझे कॉल करके, मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी, आप मुझे कॉल करके उस कौन सी मूवी है वो बताएंगे, ठीक है? और विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो इन टू आर नेक्स्ट सॉन्ग. बाय द वे, अभी मेरे पास ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉल आई. कहता है आपने मेरा नाम नहीं पहचाना. भाई मैंने कहा यार आई एम सो सॉरी, मुझे तो नाम पहचान में नहीं आया. कहते हैं उन्होंने फिर अपना नाम बोला. फिर वो मुझे कहती हैं कि आप हमें जो ये Page 3 Eatery के बारे में बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आप रोज क्रॉस करते हो उसको, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? मैंने कहा यार अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं तो जरूर चली आती, 7 से 10 तो मैं यहाँ पे होती हूँ. अगर मैं Page 3 Eatery चली गई 7 से 10 या शाम के डिनर टाइम पे, तो फिर भाई यहाँ पे गाने कौन बजाएगा आपके लिए, आपके साथ मजेदार बातें कौन करेगा, कोई भी नहीं होगा फिर करने के लिए. तो फिर वो हमारा ऑटो प्ले में गाने बजते रहेंगे. इसीलिए गाइज मैं नहीं जा सकती, लेकिन कभी जरूर जाऊंगी. एक दिन वीकेंड तो ऐसा आएगा जिसमें मैं जाऊंगी. ये सारे रेस्टोरेंट जितने जिनका भी एड मैं बोलती हूँ, आई विल गो देयर, इट इज ए प्रॉमिस. तो आप ये गाना एंजॉय करिए एंड 2 मिनट में हम ब्रेक में जाने वाले हैं, एंड देन यू कम बैक, वी विल टॉक सम मोर.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
3: भूख लगी
4: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
5: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
6: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
0: वी नीड टू टॉक।
11: अब क्या हुआ?
0: नथिंग, इट्स नॉट यू।
11: ओह नो,
0: इट्स द डिस्टेंस।
11: डिस्टेंस? वी लिव 10 मिनट्स अपार्ट।
0: अरे इट्स एक्चुअली नॉट यू, इट्स दैट ड्राइविंग ऑल द वे फॉर माय सैल्स हॉट चिकन।
12: अर्विंग, दैट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज ऑफिशियली ओवर। सैल्स हॉट चिकन इज नाउ इन अर्विंग। योर क्रिस्पी चिकन, लोडेड सैंडविचेस एंड बोल्ड सैल्स फ्लेवर्स जस्ट गॉट अ होल लॉट क्लोजर। सैल्स हॉट चिकन, अर्विंग, सेम ऑब्सेशन, लेस डिस्टेंस।

0: कुछ भाई हमारे यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टी हो गई थी. मुझे लगा मैं गाना बजा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे तो पता चल रहा था कि म्यूट चल रहा है. एंड आई वाज लाइक व्हाई इजंट द म्यूजिक प्लेइंग. हाउएवर वी फिक्स्ड इट. तो विदाउट फर्दर अडू, जैसे मैंने बोला था, हम लोग गिव अवे खेलने वाले हैं फ्रॉम द मिराज लाउंज. अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है, देन यू कैन विन $20 ऑफ ऑन ए मिनिमम बिल ऑफ $50. ओके, एंड आज के विनर के लिए मैं दो विनर्स चूज करूंगी आज के गेम के लिए. सो द गेम इज बेसिकली, आई एम गोना टेल यू द प्लॉट ऑफ अ बॉलीवुड मूवी, वेरी वेरी पॉपुलर बॉलीवुड मूवी, एंड यू हैव टू गेस द नेम ऑफ दैट मूवी. सो द फर्स्ट कॉलर, हूएवर, जिसकी भी कॉल लगती है, आपको मुझे मूवी का नाम बताना है. एंड देन जो सेकेंड कॉलर है, जिसकी भी कॉल लगेगी, आपको मुझे उसके एक्टर का नाम बताना है. मतलब एक्टर मतलब कैरेक्टर का नाम बताना है. हूएवर इज द मेन, जो हीरो है उसका मूवी में क्या नाम था, आपको वो बताना है. ठीक है, मूवी का नाम, नॉट कि शाहरुख खान है. नहीं, शाहरुख खान, इफ हीज शाहरुख खान इज प्लेइंग राज, देन यू हैव टू टेल मी हिज नेम वॉज राज कपूर और राजकुमार और या वट एवर. ओके, तो जस्ट जस्ट सो यू नो, शाहरुख खान नहीं है. सो दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, वो कल था. खेलें अब. चलो गाइज, सो हियर इज द प्लॉट, हियर वी गो. सो वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज इन अ फार फार अवे लैंड, देर वॉज अ बॉय एंड अ गर्ल. ऑफकोर्स, क्योंकि बॉलीवुड मूवी है, एक बॉय एक गर्ल तो होगी. एंड उनको प्यार हो जाता है. द बॉय इज बेसिकली एन एस्पायरिंग सिंगर, वेरी पुअर, मतलब गरीब घर से है. लड़की ऑब्वियसली अमीर घर से है, क्लासिक, यू नो, रिच गर्ल पुअर बॉय स्टोरी. एंड दे फॉल डीपली इन लव. ठीक है, लड़की की जो फादर थी, लड़की की जो फादर थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था इनका प्यार एंड ऑल दैट. तो उसने तो मना कर दिया शादी वादी से, लेकिन दे स्टिल काइंड ऑफ यू नो दे वर सीइंग इच अदर. देन वॉट हैपन्स इज द गाय हु वॉज लाइक दिस रियली पुअर गाय, ही इज एक्चुअली स्टार्ट्स टू गेट अ लिटिल सक्सेसफुल. एंड उसके मिड्स में, एंड मैंने तो पूरी स्टोरी बोली भी नहीं. मेरे पास कॉल आ गई. लेट्स टेक द कॉल एंड सी इफ दे गेट द नेम ऑफ द मूवी राइट. हाय, कैन यू हियर मी?
1: I can hear you.
0: ओके ग्रेट. पहले तो अपना नाम बताइए एंड देन टेल मी द नेम ऑफ द मूवी.
1: अंशुल भार्गव.
0: अंशुल. ओके अंशुल भार्गव जी, ना व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी दैट आई वाज टेलिंग यू द स्टोरी?
1: कहो ना प्यार है.
0: अरे वाह, क्या बात है यार. मैंने तो पूरा प्लॉट भी नहीं बोला, तुमने तो पहले ही गेस कर दिया. शानदार प्रदर्शन.
1: एस्पायरिंग सिंगर और बस डैडी को नहीं होता.
0: हाँ,
1: उतना ही काफी है.
0: उतना ही काफी था. आई नो, मतलब सच अ क्लासिक मूवी ना, हमने बचपन में सब देखी थी. चलो आप लाइन पे रहो, मुझे दूसरी कॉलर लेनी पड़ेगी फॉर माय सेकंड विनर. ठीक है, अगर कॉल कट जाती है, कॉल मी बैक इन लाइक 5 मिनट्स, क्योंकि मुझे आपका इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा. एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू क्लेम योर गिव अवे. ओके ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल. अरे कॉल आते आते कट गया. आ गया. चलो, हाय, कैन यू हियर मी?
2: Hi.
0: हेलो.
2: Yep.
0: हाय, कैन यू हियर मी?
2: कैन यू हियर मी?
0: या.
2: यप. सो द कैरेक्टर्स नेम, लाइक द हीरोज नेम इज रोहित एंड राज. देयर
0: अरे
2: टू
0: वाह,
2: कैरेक्टर्स.
0: क्या बात है भाई. हमारे को दो, पहले अपना नाम तो बताओ.
2: यू सी दैट अगेन?
0: कैन यू टेल मी योर नेम?
2: सोनाली नायर.
0: सोनाली. सोनाली एंड अंशुल, वी हैव आवर टू विनर्स. लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. ओके सोनाली, आप लाइन पे बने रहिए, मैं एक गाना लगा रही हूँ एंड आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन देन. एंड उसके बाद आई विल टेल यू हाउ टू क्लेम योर प्राइज.
2: ओके थैंक यू
0: गाइज, तब तक के लिए आप ये वाला एंजॉय करिए.

0: इन केस यू आर वंडरिंग भाई ये कौन सा वर्जन आ गया काला चश्मे का भाई, दैट इज बाय द वे इफ यू डोंट नो दैट इज माय बैंड द डैलस बॉलीवुड प्रोजेक्ट परफॉर्मिंग काला चश्मा लाइव फ्रॉम एन इवेंट. वी रिकॉर्डेड दैट, वो मेरी आवाज थी. सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर. हाँ जी मैं रैप भी कर रही हूँ. देखो वो बादशाह ने नहीं गाया भाई, बादशाह भी है हम, नेहा कक्कड़ भी बन जाते हैं, हम सारे रोल्स करते हैं यहाँ पे, बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू मल्टीटास्क एंड दैट्स हाउ लाइफ इट हैपन्स. तो इन केस यू वांट टू हायर माय बैंड फॉर एनी ऑफ योर प्राइवेट इवेंट्स, weddings, corporate events, and you need a high energy dance performance, then do reach out to the Dallas Bollywood Project. Agar aap hame Google pe dhoondenge, this is called the DallasBollywoodProject.com ya fir DallasBollywood.com, and YouTube pe bhi we are available as the Dallas Bollywood Project. Reach out to us and you never know, you could be listening to the next absolutely sensational vocalist here, which is me, Ippy the Hippie, only on Pan Asia Radio 104.9 FM. Aur aap sun rahe mera show, An Evening in Dallas. Hum thodi der mein break mein jane wale, exactly 1 minute ke andar. Lekin break mein jane se pehle, guys, agar aap apni future ki planning kar rahe hain, then do check out My Time Equity. Because sometimes, you know, doing your financial future and planning for your financial strategies all by yourself, just by internet research, is not enough. Sometimes you need an expert CPA like Sudhir Pai. They help individuals and families build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities, and alternative investments. Whether you're planning long-term retirement, growing your investments, MyTime Equity offers personalized solution design around your goals. Visit MyTimeEquity.com or call 469-702-1272 today. Bhai, the earlier you start, the more ahead you are in the game. That is exactly how financial future in America works. I don't know how it works in India, but yahan pe to yahi chalta hai. So don't wait. Call him now.
1: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
2: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
3: हाँ.
2: घर रिलोकेट करनी है?
3: हाँ.
2: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
3: हाँ भाई हाँ.
2: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
4: डॉक्यूमेंट्स शिप इट, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
5: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
6: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
11: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
10: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
11: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
12: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
13: Sadia. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है. वही आवाज
3: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
14: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
15: तुमसे मिलके दिल का है।
3: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
14: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
16: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

गाइस, दिस नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू राहुल सैनी जी, जिन्होंने मुझे 8 बजे वाले ब्रेक में मुझे बोला था कि प्लीज़ मेरा ये गाना बजा दीजिए. तो उस टाइम पे तो हम गिव अवे वगैरह खेल रहे थे, तो हम नहीं बजा पाए, लेकिन ये गाना अभी आपके लिए है.

गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग आज बातें करने वाले हैं लव एंड न्यूरो साइंस के बारे में. तो एग्जैक्टली गाइस, तो उससे आगे बढ़ते हैं. टुडे एंड फॉर द नेक्स्ट 3 डेज वी आर नॉट जस्ट गोना टॉक, वी आर गोना टॉक अबाउट द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी. एंड आई डोंट मीन द हार्ट, नो नो नो. एंड आई डोंट इवन मीट आई मीन मीट द मीन द डाइजेस्टिव सिस्टम और एनीथिंग लाइक दैट. आई मीन दैट 3 pounds ऑफ ग्रे मैटर जो आपकी आंखों के पीछे बैठा हुआ है ना, जो दिमाग बोलते हैं जिसको हम. एग्जैक्टली, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्रेन. दिस हफ्ते वी आर डूइंग समथिंग लिटिल डिफरेंट. हम लोग सबसे, दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पजल जो है, जिसको हम बोलते हैं प्यार या लव, उसके अलग अलग एलिमेंट्स लेके हम उसको एनालाइज करेंगे. सो व्हाट आर सम ऑफ दीज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ लव? पहला है अट्रैक्शन, देन फॉलिंग इन लव, देन बॉन्डिंग, हार्ट ब्रेक, एंड देन फाइनली हाउ सम पीपल मैनेज टू स्टे इन लव फॉर 40-50 ईयर्स. एंड देन वी आर गोना लुक एट कि वॉट्स एक्चुअली हैपनिंग इन साइड योर ब्रेन वेन दैट हैपन्स. तो सबसे पहला स्टेप लेते हैं. पहला होता है अट्रैक्शन. ओके, दैट फर्स्ट स्पार्क, दैट फर्स्ट टाइम यू सी दैट, यू नो, दैट ब्यूटिफुल गर्ल अक्रॉस द रूम फ्रॉम द जिम और द बार. एंड दीज डेज वेन यू स्टॉप स्क्रोलिंग ऑन समवन्स फोटो ऑन अ डेटिंग ऐप, यू नो, लेफ्ट स्क्रोल करते करते एक फोटो आपको मिल जाएगी, कहते हैं ओ इस पर राइट करते हैं. बट ऑफकोर्स आई हैव हर्ड इट फ्रॉम माई गाय फ्रेंड्स, वो तो सब पे राइट करते हैं, एक शायद लेफ्ट करते हैं. वो कहते हैं हम तो सब पे राइट मारते हैं, जिससे मिल गया मैच उसी से ये सही है. वाई दैट पर्सन? किसको आपने लाइक किया, किस पे आपने स्वाइप राइट किया? व्हाई नॉट 10 पीपल यू वॉक पास्ट टू गेट देयर? साइंस एक्चुअली हैज सम कॉन्क्रीट एविडेंस एंड सम इंटरेस्टिंग आंसर. सो आई प्रॉमिस यू सम ऑफ देम आर गोइंग टू मेक यू रीथिंक एवरी सिंगल क्रश दैट यू हैड. सो लेट्स गेट इनटू इट. लेकिन पहले हम थोड़ी सी और बातें करते हैं, ठीक है? हम थोड़ी सी एक छोटा सा गाना सुनते हैं एंड देन वी विल कम बैक एंड कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन.

तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन अबाउट अट्रैक्शन. इज इट रियली लव एट फर्स्ट साइड कि आपने पहली बार देखा किसी को, अरे प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइड, OMG. न्यूरोसाइंस सेज नॉट रियली ब्रो. वॉट यू आर फीलिंग इन ऑल दो सेकेंड्स इज नॉट लव, इट्स बेसिकली लाइक अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ. राइट, हियर्स व्हाट्स हैपनिंग. द मोमेंट यू सी समवन दैट यू फाइंड अट्रैक्टिव, योर ब्रेन सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम वो मतलब फायर अप हो जाता है, एंड देन द सेम सिस्टम इज ईदर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फाइट और फ्लाइट मोशन. ठीक है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या होता है कि अगर आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हो, देर आर टू वेज अ पर्सन डील्स विद स्ट्रेस. या तो आप लड़ाई करके डटे रहोगे कि नहीं मैं इसको हासिल करके, मतलब यू नो आई विल डील विद दिस, आई विल यू नो फाइंड अ वे टू डू दिस, या फिर आप बोलोगे ब्रो दिस इज टू मच, आई एम आउट, सॉरी, टाटा, बाय बाय. सो वेन वेन यू मीट समवन अट्रैक्टिव, यू नो ब्रेन डजेंट रियली अंडरस्टैंड कि ये क्या आ रहा है. उनको तो अट्रैक्शन देख के लग रहा है, ओह एंग्जाइटी, ओ एम जी नर्व्स, ओह हाउ डू वी हैंडल दिस. योर एड्रीनल ग्लैंड्स, ओके दिस इज एक्चुअली साइंस, योर एड्रीनल ग्लैंड्स रिलीज एड्रेनलिन एंड नोराड्रेनलिन. ओके दीज आर टू केमिकल्स, दैट्स वाई यू गेट स्वेटी पाम्स, अ रेसी हार्ट, ठीक है, एंड अ फ्लटरी स्टमक, जो बोलते नहीं अरे मेरे तो बटरफ्लाई आ गए स्टमक में, OMG कुछ कुछ कुछ कुछ हो रहा है. यू आर बायोलॉजिकली स्पीकिंग हैविंग ए टाइनी टीनी टाइनी पैनिक अटैक, जिसको हम प्यार के कंबल में ओढ़ के ला रहे हैं. ठीक है, एट द सेम टाइम डोपामीन जो है, इट्स लाइक अ ब्रेन्स केमिकल. डोपामीन एक सेटिस्फैक्टरी केमिकल है, राइट? तो ब्रेन्स, इट्स बेसिकली, in other words you can say it's the brain's reward chemical. It floods a region called a ventral tegmental area or VTA. This is science, you guys, I'm not making this stuff up. And then it travels to the nuclear accumbens, a part of what the researchers call the brain's reward circuit. So there's a lot of big words that I also don't know the meaning of fully. However, I'm telling you, when there are big words involved, there has got to be some truth in it, right? This is the exact same circuitry that lights up with, by the way, substances, intoxicating substances like cocaine, like gambling wins, like your favorite food. Same kind of nervous system response. Attraction at a chemical level activates a reward system, not a warmth system. This is why new attraction can feel less comfort and more like, oh my god, like a craving. जैसे आपको नहीं होती craving ice cream खाने की या sugar खाने की, मेरे साथ तो बड़ा होता है. तो let's listen to the song and then come back.

भाई अपने दिल और दिमाग का ध्यान रखते रखते रेस्ट ऑफ द बॉडी का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, दे हैव अ रियली कूल प्लान। इट्स कॉल्ड अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विथ पैशन हेल्थ मेंबरशिप प्लान। इट इज़ कॉल्ड पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो यू मेक श्योर दैट यू साइन अप फॉर दिस मेंबरशिप, बिकॉज इट इंक्लूड्स प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलो अप्स, प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीज, मेडिकेशन, टेली हेल्थ व्हेन अप्रोप्रिएट एंड केयर कोऑर्डिनेशन, प्लस 20% सेविंग्स ऑन एलिजिबल सेल्फ पे लैब्स, इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। तो कॉल 214-666-6259 या फिर आप लॉग इन कर सकते हैं पैशन हेल्थ फिजिशंस .com पे भी। एंड गाइस, जस्ट अ रिमाइंडर, दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस, इट्स लाइक अ मेंबरशिप प्लान। तो अगर जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर फ्रॉम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए गाइज, हम 9 बजे ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले, जैसे हमने बोला था, वी वर टॉकिंग अबाउट अट्रैक्शन, राइट? नाउ हियर्स अ प्लॉट ट्विस्ट दैट मोस्ट पीपल डोंट एक्सपेक्ट। सेरोटोनिन, हमने बात करी डोपामिन के बारे में, हमने बात करी एड्रेनलिन के बारे में, ओके? नाउ आता है सेरोटोनिन के बारे में। दिस इज ऑल्सो अनदर केमिकल विच इज लिंक्ड डायरेक्टली टू मूड स्टेबिलिटी एंड फीलिंग सेटल्ड, एंड एक्चुअली इट टेंड्स टू ड्रॉप ड्यूरिंग इंटेंस अर्ली अट्रैक्शन। तो जब शुरू शुरू में कोई अट्रैक्शन होता है, वहां पे सेरोटोनिन नाम का बहुत ड्रॉप हो जाता है, ओके? देर इज अ रिसर्चर कॉल्ड डोनाटेला माराजिटी, एंड दिस इज नॉट डोनाटेला वर्साचे, दिस इज डोनाटेला माराजिटी इन इटली, एंड शी कंपेयर्ड पीपल हु हैड जस्ट फॉलन फॉर समवन, मतलब नया नया प्यार, टू एंड डायग्नोस्ड विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, माने ओसीडी। हमने नाम तो सुना ही होगा ओसीडी के बारे में। दे शी रियलाइज दैट पीपल हु हैव जस्ट फॉलन इन लव एंड जिन लोगों को ओसीडी है, उनके सिम्टम्स काफ़ी सिमिलर हैं, एंड दोनों के सेरोटोनिन लेवल्स बहुत लो होते हैं। दैट्स द बायोलॉजिकल रीजन एंड द साइंटिफिक रीजन वाई यू कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट समवन इन दोज अर्ली डेज। इट्स नॉट रोमांटिक पोएट्री कि आपके दिमाग में कोई हमेशा से घूम रहा है, एंड यू लाइक ओ एम जी आई एम सो इन लव। नो, इट्स न्यूरोकेमिकली क्लोजर टू एन ऑब्सेसिव लूप, जस्ट लाइक एन ओसीडी पर्सन, यू नो। तो अब छोटा सा, हम थोड़ी देर में ब्रेक में जाने वाले, एग्जैक्टली इन अबाउट 30 सेकेंड्स, तो बने रहिए यहाँ पे 9 बजे के बाद भी, बिकॉज वी गोन कंटिन्यू दिस डिस्कशन। बट बिफोर वी गो, सम थॉट्स दैट यू कैन ऑल थिंक अबाउट, व्हाई डू वी इवन गेट दिस रिएक्शन इन द फर्स्ट प्लेस? दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग, क्योंकि अट्रैक्शन रैंडम नहीं होता, एक पैटर्न होता है। वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर दिस ब्रेक, ठीक है? लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आप थोड़ा म्यूजिक ही सुन लो।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
3: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
4: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
3: Fikar not. We have the perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
5: Aji, sunte ho?
6: Aji, nahi. Aji, sunte.
7: The OG of tax planning, AG FinTax. Sunenge aapke financial concerns, denge smart solutions. Every Friday, 9:45 a.m. only on Funasia Radio.
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.
10: Alright guys, we are back. So, first, let's finish this song, then we will continue our conversation. Yeah.

गाइस, हम जैसे बात कर रहे थे न्यूरो साइंस एंड अट्रैक्शन के बारे में, ठीक है. सो व्हाई डू वी इवन गेट दिस रिएक्शन इन द फर्स्ट प्लेस? दिस इज वेयर थिंग्स बिकम इंटरेस्टिंग, क्योंकि अट्रैक्शन रैंडम नहीं होता है. पहले तो प्रॉक्सिमिटी. देर इज ए क्लासिक फाइंडिंग इन साइकोलॉजी कॉल्ड द मियर एक्सपोजर इफेक्ट. इसका मतलब क्या है? वी टेंड टू डिवेलप मोर पॉजिटिव फीलिंग्स टूवर्ड्स पीपल सिंपली क्योंकि वी सी देम रिपीटेडली. अगर आप किसी को रिपीटेडली बार बार देख रहे हो, देन यू डिवेलप फीलिंग्स फॉर देम. देर इज अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी. ओके, एंड दैट टू आर ब्रेन इट सिग्नल्स कि अच्छा नहीं, दिस इज सेफ, इट्स अ सेफ सिग्नल. सेकेंड चीज है सिमेट्री across cultures. Now there are so many reels on this also, where people are like some of the most successful actors or actresses, or you know, people who are really kind of famous, they have a very symmetrical face. And across cultures, facial symmetry consistently rates as more attractive. To jo log bahut sundar hote hain unko bolte hain, because maybe their facial features are just more symmetrical. One theory is that symmetry can be rough visual proxy for developmental stability and health. इसका मतलब क्या है? Symmetry मतलब visual proxy मतलब आपकी आँखों के सामने it looks like kind of, you know, it affects the way your development, your stability develops and your health develops. Though attractiveness research is genuinely complicated and culture plays a massive role too, आप इसको पूरी मतलब पिक्चर, इट्स नॉट द होल ट्रूथ. ओके, बेसिकली थर्डली ये बहुत ज़रूरी है, दिस वन सरप्राइजेज मोस्ट पीपल, दैट इज कॉल्ड सिमिलैरिटी. हमने पहली दो चीज़ें बोली थी विच इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी, तो आप उनको रोज देखते हो. दूसरी चीज़ थी फेशियल सिमेट्री, एंड थर्ड चीज़ है सिमिलैरिटी. तो उनके बीच में आप यू नो जो कॉमन चीज़ें देखते हैं, ओ वी बोथ आर सो सिमिलर, वी हैव द सेम लाइव्स, फॉर एग्जाम्पल सिमिलर वैल्यूज, सिमिलर बैकग्राउंड, सिमिलर वीजा सिचुएशन. आई एम जस्ट किडिंग. ओके, यस, स्टडीज ऑन फेशियल रिजेम्बलेंस, सिमिलर वैल्यूज, सिमिलर बैकग्राउंड, दे सजेस्ट दैट वी आर माइल्डली ड्रॉन टू फेसेस दैट शेयर द सेम फिजिकल फीचर्स जो हमारे जैसे हैं. तो यू नो देयर इज अ ट्रूथ, लाइक कहते हैं लाइक दो people, there's also another theory by the way which says that once you start dating someone, a couple, the husband wife or whoever the couple is, they actually kuch 6-7 mahine baad they start looking like each other. You know, I don't know how much of that is true, but because you know you're spending so much time, aap ek jaise dikhte bhi lagte ho, ek jaise kapde bhi pehante ho, but something to think about, right?

तो गाइज हमने तीन पॉइंटर्स तो बोल दिए, लेकिन एक पॉइंटर और भी है उसमें. तो दूसरा लास्ट फाइनल पॉइंटर पता क्या है कि देर इज द साइंस ऑफ स्मेल. समटाइम्स वी आर अट्रैक्टेड टू द स्मेल ऑफ द अदर पर्सन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट इज द स्मेल. एंड आई डोंट मीन लाइक परफ्यूम वाली सेंट. ओके, दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड सेंस इन द अट्रैक्शन स्टोरी. स्टडीज, देर आर स्टडीज ऑन वॉट इज नोन एज, दिस इज एक्चुअली द एक्चुअल टाइटल ऑफ द स्टडी बाय द वे, साइंटिफिक स्टडी. इट्स कॉल्ड द स्वेटी टी शर्ट एक्सपेरिमेंट. काइंड साइंस साउंड्स काइंड ऑफ ग्रोस राइट, बट चेक इट आउट. इट्स बाय, इट वॉज फर्स्ट रन बाय क्लाउस वेडेनकाइंड इन द 1990s, एंड दे फाउंड आउट आफ्टर द स्टडी दैट वुमेन टेंड टू प्रेफर द सेंट ऑफ मैन हुज इम्यून सिस्टम जीन्स, and there's a scientific name for it, it's called MHC ya fir major histocompatibility complex, they were different from their own. Which means agar, you know, if a woman has MHC say A, then she is going to prefer the MHC complex of B, because the offspring that is going to be born in dono ke beech mein, if they decide to mate, then unka jo bachcha hoga, that offspring is going to have a higher chance of survival. Okay, the theory is that the offspring from genetically diverse immune profile may have stronger, more varied immune defenses. Now, isme sabse bada asterisk point kya hai? Something to be noted. This effect gets, of course, disrupted by hormonal birth control, and we know that, which is prescribed very frequently to women these days. And that tends to shift scent preferences. It's a great example of how something as so unromantic and boring such as a pill prescription can kind of affect the way you develop your sense of attraction to another person. Therefore, to sum up, so summarize karta hai pura. Attraction is dopamine plus adrenaline plus serotonin dip wrapped around the cues of proximity, symmetry, similarity, and of course, smell. Wow, so many factors, right? It's not shallow. It's not silly. I mean, isko jab hum ye sab cheeze sochte hain, we think that, oh my God, this is so silly. That's not how it is. It's finely tuned survival and reproductive system, and they are running underneath your कॉन्शियस माइंड. आपके दिमाग के नीचे ये चल रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट इट. ये चले जा रहा है, अपना ही कुछ कर रहे हैं, एंड यू आर ओनली अवेयर ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ दिस. ओके, तो गाइज इट इज 9:19 ऑन द क्लॉक. मैं दो गाने बजाऊंगी आपके लिए, देन वील गो इन टू अ ब्रेक. आई एम ओनली गोना बी हियर विद यू टिल 10 o'clock टुडे, सो आई होप यू आर एंजॉयिंग टुडेज डिस्कशन एंड कॉन्वर्सेशन. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अमेजिंग stories about the same concept. I'm going to have some more conversation 9:30 baje ke baad.

0: गाइज वी आर अबाउट टू गो इन टू अ ब्रेक इन अबाउट 30 seconds, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि भाई टेक्सस प्राइमरी केयर हैज़ लॉन्च्ड NDFW, बट दे आर नाउ कॉल्ड नॉक्सी मेडिकल. फॉर द लास्ट 13 years दे हैव ऑलरेडी बीन केयरिंग फॉर आर कम्युनिटी एंड नाउ दे हैव ओपन अ न्यू लोकेशन इन फ्रिस्को. दे आर फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप अजारिया. लनॉक्सी मेडिकल, विच इज द न्यू नेम, इट ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग.
1: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
2: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
3: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
2: सच में सब संभालेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
7: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
8: तुमसे मिलके दिल का है.
7: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है.

राइट गाइस, इट इज 9:46 ऑन द क्लॉक. मैं अभी थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ, लेकिन जाने से पहले लेट्स फिनिश अप दिस डिस्कशन दैट वी वर हैविंग. देर इज समथिंग नोन एज द मेड चॉइस कॉपिंग इफेक्ट, विच इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ एनिमल स्टडीज एंड ह्यूमन रिसर्च. इसका मतलब क्या है? वी फाइंड पीपल मोर अट्रैक्टिव व्हेन वी परसीव दैट द अदर पीपल फाइंड देम अट्रैक्टिव. तो अगर आप किसी के साथ हैं और अगर आपको लग रहा है कि ओ माय पार्टनर is so attractive to all the other people, you actually land up getting more attracted to your partner. Basically, in a way, you're kind of putting your partner on a pedestal, you know? Think about it. It makes sense completely. It's a part of why a person who's already in a relationship or surrounded by friends at a party can seem to have this extra magneticism, okay? Your brain is quietly using social proof ya fir social validation as a shortcut for quality. भाई चार लोग मेरी बंदी को चेक आउट मारे, दैट मीन्स आई एम विद लाइक द हॉटेस्ट चिक इन द क्राउड. OMG, आई लाइक माई गर्ल सो मच. डज दैट साउंड फेमिलियर? आई एम श्योर इट डज. यू नो, वी हैव ऑल सीन दैट. एंड देन टाइमिंग, ऑफकोर्स सबसे जरूरी चीज वो होती है, रिसर्च ऑन हॉर्मोनल साइकिल्स. बट दिस इज नॉट दिस स्पिरिचुअल वाली टाइमिंग, इट्स द टाइम फॉर आर रिलेशनशिप 10 साल बाद, वो वाली टाइमिंग नहीं. इट्स नॉट लाइक कुछ कुछ होता है वाली टाइमिंग, राहुल एंड क्या नाम है उसका, अंजलि की टाइमिंग 10 साल बाद, व्हेन शी बिकम्स ऑल गर्ली एंड एवरीथिंग. इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ टाइमिंग. द टाइमिंग व्हाट मैटर्स इज हॉर्मोनल साइकिल्स. ओके, रिसर्च ऑन हॉर्मोनल साइकिल्स हैज फाउंड दैट ड्यूरिंग ओव्यूलेशन पीरियड ऑफ गर्ल्स, देयर दे शो सटल शिफ्टेड प्रेफरेंसेस, फॉर एग्जाम्पल टूवर्ड सर्टन मार्कर्स ऑफ फेशियल मैस्कुलिनिटी. तो ड्यूरिंग दैट टाइम guys who are generally have more masculine features like gym bros, girls tend to find them attractive. This area of research has some real replication problems in the recent years. However, scientists abhi bhi debate kar rahe hain ki how large or reliable these effects are. Okay, I mention it not as a settled fact but because it shows ki kitna attraction research is actually active out there in today's world and how much it's evolving. We don't have all the answers, lekin science jari hai, research jari hai, tabhi itne sare log US aur bahut alag alag countries mein aake in sab cheezon pe research karte hain, hai na. To guys, I hope you enjoyed aaj ka discussion. It is 9:49 on the clock. Ye main aapse alvida leti hu aaj ke liye. Hopefully I will see you tomorrow again. This is Ippy the Hippie signing off and you are listening to Funisha Radio 104.9 FM and this is my show. An evening in Dallas. Abhi to night ho gayi hai, khair koi baat nahi. Lekin have a wonderful rest of your night and sleep tight. Don't let the bed bugs bite.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: We need to show the world our power. अब हम डर के शांत नहीं बैठेंगे, करके शांत बैठेंगे.
1: KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.

0: ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
1: मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।

जिंदगी है वश नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

0: same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
4: तुमसे मिलकर दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

जान लेके किस्मत में बांटे हैं राहों में कांटे हैं।

0: एंटरटेनमेंट से करते मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: बोरिंग दिनचर्या में
1: घोलिए नए रंग फनेजा रेडियो के संग।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
1: नहीं।
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
1: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
1: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि संगीत की ये सवारी आपको कहाँ तक ले जाएगी। सुरों का सफर, आपका हम सफर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्टबीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी जर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्टबीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट.
1: बेटा, 95% आए?
2: हाँ मम्मी.
1: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
3: मेरा?
1: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintechs.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनी शो रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल, धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

0: tracks that put you on the right track.
1: Check it out.

0: सबर करो,
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अजी सुनते हो?
3: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
4: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
5: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
7: तुमसे मिलके दिल का है।
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
8: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.

0: आनंद
1: लगे रहो।
2: I love you।
1: आनंद तेरा फोन आया यार।
0: औरा?
1: चल चल।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनेश।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
2: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुर्राटा चिकन टिक्का न्यू लव।
1: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
2: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
3: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
4: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स।
5: सबसे पहले तारीफ उस ऊपर वाले की जिसने दुनिया बनाई, चांद सितारे बनाए, जमीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया। उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम ऑन दिस लवली वेंसडे मॉर्निंग। इट्स द 9th ऑफ सितंबर।

0: If you are looking to move and you need to ship stuff, it could be just documents, it could be boxes, it could be your entire house or even your car. SFL Worldwide is the name of the company. You get complete door-to-door shipping and moving services within the United States to India or worldwide, wherever it is that you want to move. Let me give you the name of the company again, SFLWorldwide.com. You can even call them at 1-800-691-2335. SFLWorldwide.com is the website for more information.
1: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
2: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
6: Ek aur laddu le lo.
7: Thodi aur biryani.
6: Are America jaake thodi milega.
8: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
9: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स। दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
10: जिंदगी एक रंगमंच है
11: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
12: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
13: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
12: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
13: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
12: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
13: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
14: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
15: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
14: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
15: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
14: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
15: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
14: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
16: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे स्वीट 205 फ्रिस्को।
1: अरे यार, घर मिल गया।
2: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
0: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
2: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
0: बिल्कुल। विजिट अजय प्रभु .com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम। Love!

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
2: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
0: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी। Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं।
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं।
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं।
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
0: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
6: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
0: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present. Make your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

0: It is 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
4: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
5: Call 857-891-8942 today.
6: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
7: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
6: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
7: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
8: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
9: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
10: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
11: Yaar, boss ne fir se daad diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
11: ये क्या होता है?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
13: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
14: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
15: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
16: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
16: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
16: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
17: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
18: Weekend ka plan, abhi tak nahi mana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye, to luxurious sky tower और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं, तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम।
0: थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड इफ यू आर जस्ट डूइंग दैट, वेल डू रिसीव माय वेरी वार्म वेलकम टू द शो दिस मॉर्निंग। दिस इज द फाइनल आवर ऑफ आवर प्रोग्राम, सो वी विल गेट यू कॉट अप ऑन दिस ब्यूटीफुल वेडनेसडे मॉर्निंग। इज द 9th ऑफ सितंबर, and we haven't had rain for 55 days. I hope tomorrow I can change the forecast for you a little bit and we'll see a few drops somewhere. We are under a heat advisory as we head towards 101 today, which is actually our record. So let's find out where we are going to be tomorrow on this. We are looking for some kind of 90s temperatures, hopefully coming soon.

0: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
1: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
3: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
4: अजी सुनते हो?
5: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
6: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
7: रेस्टोरेंट चूज करना हो? गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो? गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
8: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
13: क्या मतलब?
14: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
14: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914।
13: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
15: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
2: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज। DFW get ready to relieve the magic of Kumar Shanu live unforgettable 90s September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano. Gaiye, jhoomiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane. Limited seats, free parking aur meet and greet options available. For tickets visit eventbrite.com ya fir call kare 214-869-2668 par. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: It's Hoko.
3: अरे बस भी करो यार.
2: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
3: नाम Hoko हो या Hocho क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
6: तुमसे मिलके दिल का है.
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
7: हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही और तू है कि मुझसे ओ जाने जा. ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है. मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ तेरा नाम लेती है.

8 minutes past 10 o'clock, you're listening to 104.9 FM Funisha Radio. A very good morning to you, Dallas. You know, Monday ka shock nikal chuka hai, Friday abhi bhi dur hai, aur aaj Wednesday beech mein khara pooch raha hai yaar, ke energy असली है आपका या सिर्फ ये एनर्जी कॉफी वाली है. दिस इज रमिता और 10 से 12:30 तक काम का प्रेशर कम हो या ना हो आपके मूड का प्रेशर जरूर कम होगा. आज मिलेगा बॉलीवुड ट्रेंडिंग सोशल मीडिया मसाला, बहुत सारी बातें, आपके पार्टिसिपेशन वाले कन्फेशंस भी और थोड़ा रेट्रो ड्रामा, बिकॉज इंस्टाग्राम ने सडनली 2026 को 1986 बना दिया है. सीट बेल्ट फिल्मी है यार, थोड़ा फिल्मी वे में बोलते हैं ना. कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपनी वॉल्यूम बढ़ाइए, काम आपका चलता रहेगा, लेकिन अगले 2.5 घंटे आपकी मूड, मतलब आपका जो मूड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. योर मिड मॉर्निंग अपग्रेड स्टार्ट्स राइट हियर राइट नाउ ओनली ऑन 104.9 FM फनीशिया रेडियो.

एक गपशप होने वाली है अभी इंस्टाग्राम ट्रेंड की. यू नो इंस्टाग्राम का लेटेस्ट ऑब्सेशन यही है कि आप चैट जीपीटी में जाओ और एक सिंपल सा वन लाइनर प्रॉम्प्ट टाइप करो. क्या है वो प्रॉम्प्ट? सिंपल है. यू जस्ट नीड टू टाइप शो मी हाउ आई वुड लुक इन द 80s. बस उसके बाद एक प्रेजेंट डे फोटो अपलोड कीजिए और एआई आपको देगा एक 80s वर्शन ऑफ योर सेल्फ. यानी कि घने लंबे बाल, बोल्ड कलर्स, ड्रामेटिक आई लाइनर, ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट लेडीज, और वार्म फिल्म टेक्सचर और एक्सप्रेशंस ऐसे हैं ना जैसे अभी आप फैमिली के अभी सीक्रेट रिवील ही करने वाले हो. ऐसा ट्रेंड जा रहा है इंस्टाग्राम में और हर कोई इंक्लूडिंग मी इज ट्राइंग आउट दिस ट्रेंड के हाउ आई वुड लुक इन द 80s. बट फनीएस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रेंड इज कि आपको फोटोज 80s की चाहिए और अप्रूवल चाहिए 2026 के फॉलोअर्स से. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका फेस है ना वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए, वो 80s जैसा नहीं, बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए. मतलब नॉस्टैल्जिया चाहिए भी और आपका आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं करना चाहिए. आई वांट टू नो आपने ये ट्रेंड ट्राई किया है कि नहीं. ऑनेस्टली बताइएगा कैसा लगा आपको ये नया इंस्टाग्राम ट्रेंड. यानी एआई ने जब आपको रेट्रो सुपरस्टार बनाया या कोई खोया हुआ फैमिली एल्बम से आपका वो पुराना जो रिश्तेदार है जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे वैसे दिख रहे हो आप, या फिर अ कंप्लीट स्ट्रेंजर. कॉल मी एट द स्टूडियो 9722355555 एंड लेट मी नो हाउ आर यू लाइकिंग दिस ट्रेंड. वैसे बात जब 80s की हो रही है, बैक टू बैक दो 80s सुपरहिट गाने.

0: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
0: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
2: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails, and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
3: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
4: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
5: हाँ।
4: घर रिलोकेट करनी है?
5: हाँ।
4: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
5: हाँ भाई हाँ।
4: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
6: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
7: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
9: किसी को दिल दिया?
10: दिया,
9: मैंने भी दिया।

वेंसडे की सुबह, इससे अच्छा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। जितना भी आप काम में उलझे हो या फिर घर के प्रॉब्लम्स को लेके ड्राइव कर रहे हो और हमें सुन रहे हो, एक ही बात दिल में बिठा लो यार, ओम शांति ओम। यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, दिस इज गपशप गली और मैं हूँ रमीता, जहाँ पे बात चल रही है 80s ट्रेंड की, विच इज लाइक डोमिनेटिंग राइट नाउ इन द सोशल मीडिया। और यू नो 80s बॉलीवुड लुक अगर आपको जेन्युइनली ऑथेंटिक बनाना है तो उसका एक स्टार्टर पैक है, सिर्फ फिल्टर से काम नहीं चलेगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द एआई यू नो एप्स आर फोकसिंग ऑन राइट नाउ। यू नो जितने भी पिक्चर्स देख रही हूँ मैं, हेयर स्टाइल इज द मेन फैक्टर ऑफ द 80s। हेयर स्टाइल इतना बड़ा है कि उसका एक अलग सेपरेट जिप कोड है। और आउटफिट्स जो ट्रेंडिंग, जब क्या देख रही हूँ मैं आउटफिट्स में, मिनिमम तीन कलर्स तो चल ही रहे हैं और तीनों के तीनों कलर्स एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, कोई किसी के साथ किसी का पैरिटी नहीं है। दे वर सो लाउड एंड सो वाइब्रेंट। और हमारे हीरोज जो मतलब मेल फ्रेंड्स हैं मेरे, उनके जो पिक्चर्स देख रही हूँ ना, एक स्लाइटली क्यूटली मुश्ताश जो अपने फ्लॉन्ट कर रहे हैं, उसका एक अलग इंडिपेंडेंट स्क्रीन प्रेजेंस है बाय गॉड। और बड़े बड़े इयररिंग्स फॉर द लेडीज हु आर गेटिंग इनटू दिस ट्रेंड। और शिफॉन की वो जो अदा है, दैट ब्रिंग्स बैक द श्रीदेवी मेमोरीज फ्रॉम द 80s। आय हाय क्या लग रहे हो तुम लोग, लोकेशंस लिविंग रूम हो या फिर कोई बीच साइड, द शिफॉन सारीज आर बैक इन द ट्रेंड लाइक इट इज इन द 80s ट्रेंड। सो मुझे बताओ कि 80s का फैशन इतना लाउड था तो, but how are you feeling when you're seeing those pictures live in the social media and you are trying yourself with all the vibrant colors and all the trends that 80s is bringing out louder? I know aaj ka aesthetic thoda pastel shades mein hai, beige mein hai, but tab colors were dominating. And 80s ki baat jab bhi aati hai, only three names rightfully comes up in my mind. Ek to ji, of course, Rishi Kapoor bhai sahab, jinka gana abhi chal raha tha, Bappi Lahiri, and who can forget the ideal combination of Bappi Lahiri with Mithun Chakravarti with the discos in the 80s. Stay tuned and keep listening and do enjoy this song because segment chal raha hai 80s trending again.

35 minutes past 10 o'clock. You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Rumita. Chal raha hai 80s ka trend, because that exactly what is trending right now on the social media. Aur baat chal rahi hai us trend ke fashion ki, us trend ke highlights ki. But I want to ask a big, big question to all my listeners right now. Ki 80s se agar ek cheez wapas lani ho aur ek cheez jo wahin chhodni ho, to aap kya choose karoge? If you ask me, I would definitely want the handwritten letters back in our life. Because yeh jo last scene at 10:42 hai na, isse zyada romantic hai किसी का बैठ के आपके लिए लिखना. यार है क्या रोमांस था उस टाइम में. लेकिन लैंडलाइन के पास फोन का वेट वो बिल्कुल नहीं करना है भाई, क्योंकि कॉल आपके लिए होता है बट इंटरव्यू आपकी पूरी फैमिली ले लेती थी. आई नो आई डोंट वांट टू ब्रिंग द लैंडलाइन बैक, बट उसमें भी कुछ सिंप्लिसिटीज होती थी यार. व्हाट डू यू से, कैसेट्स, मिक्स टेप्स, ब्राइट फैशन, सिंपल फ्रेंडशिप्स, संडे फैमिली मूवीज. व्हाट डिजर्व्स अ कमबैक? Tell me, 972-235-5555. I'm going to tell and share whatever you guys are sharing with me today in this show, because 80s trend is back again. Aur saath hi saath wo bhi bata dijiyega ki history mein kaun si cheez aisi hai jise aap safely locked rakhna chahte hain. Filhal 80s se hi ek gana which was brought back. Simple hai, आपको सिर्फ सुनना है, एंजॉय करना है, क्योंकि रीमिक्स वर्जन्स भी काफी मजेदार होते हैं.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: बेटा 95% आए?
2: हाँ मम्मी।
1: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
3: मेरा?
1: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: सेम ऑर्डर अगेन? सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी? टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डालस, because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican inspired menu, and trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
9: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
9: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
12: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
13: तुमसे मिलके दिल का है।
12: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

46 minutes past 10 o'clock. You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. This is Gupshup Gully with me, Rumita. And you are listening to this melodious voice by none other than Sonu Nigam, जो कि आने वाले हैं सितंबर 26 को, 26th of September at the Credit Union of Texas Event Center, which is located in Allen, and you can listen to this revolutionary, I mean, ड्रामेटिक करने की कोशिश कर रही थी, बट लेट्स कीप इट सिंपल. इट्स अ कॉन्सर्ट कॉल्ड रेवोल्यूशन. सोनू निगम विल बी लाइव इन डैलस फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. अरे यार, इस आवाज को लाइव सुनने के लिए आई मीन क्या ही बताऊं मैं. बीइंग अ 90s किड्स एंड अ मिलेनियल, वी हैव लिव्ड अप टू हिज सॉन्ग्स, चाहे वो पारी हो, रोमांस हो, हार्ट ब्रेक हो, या फिर ऐसे ही अच्छा कोई गाना सुनने का मन कर रहा है. इट इज सोनू निगम, आर गो टू वर्जन. अब लाइव सुनने का मौका आई डोंट थिंक आप गंवाने वाले हो. सो टिकट्स के लिए विजिट टिकट मास्टर, विच इज अवेलेबल थ्रू आउट. अभी भी टिकट्स अवेलेबल है, और यू कैन हैव और गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डायलिंग द सिंपल नंबर, विच इज 855-360-SHOWS, 855-360-SHOWS, and buy your Sonu Nigam live tickets. And to let you know, Funny Share Network is the exclusive media partner for Sonu Nigam Revolution.

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: What a beautiful, beautiful, beautiful track from the movie Param Sundari. And yet again, if you want to catch this voice live on the 26th of September at the Revolution Concert by Sonu Nigam, to tickets ke liye ticketmaster.com. Ye dekho, aapki planning to maine kar li at the end of September. Waise planning se yaad aaya, agar ghar mein koi occasion ho, chahe wo shaadi ho, graduation ho, housewarming ho, ya koi bhi special celebration ho, ek naam yaad rakhna aapko zaruri hai, which is simply Vanessa Evans, क्योंकि वही आपके वेन्यूज डेकोर फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी केटरिंग सब कुछ संभाल लेते हैं. दैट इज वेनेसा इवेंस. और डेकोर की हम बात करें तो इट्स द डेकोर बाय द सिग्नेचर इवेंस एंड द केटरिंग सर्विसेज एक्सक्लूसिवली बाय द बसेरा ग्रैंड. तो अगर अगेन घर पे कोई भी ओकेशन हो, चाहे शादी हो या सगाई, रिमेंबर वेनेसा Events. Call Hari Basera at 469-442-8770. That's 469-442-8770. Or yaar, memories ko enjoy karo. Stress Vanessa pe chhod do.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
6: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
5: कैसे?
6: पेज 3 ईटरी?
5: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
6: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
5: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
7: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
9: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
10: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
9: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
10: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी। फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
11: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाय, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
12: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
13: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower or relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
14: This is Uday Chopra, and you are listening to Fun Asia Radio.

0: Something about the way the music was made in the late 90s, early 2000s. This was Colonial Cousins, and by Colonial Cousins, this was an album released by Hariharan and Leslie Lewis, and ye unka debut gana tha. And what a banger. This is Phanisha Radio 104.9 FM and Gapshap Gali mein chal raha hai bahut kuch aaj. Today is September 9th and this is Ramita, jo agle der ghante aur aapke saath karengi Gapshap. Aaj hai Wednesday aur ye na Wednesday bahut hi confusing character hai, kyunki Monday jaisa ye villain to nahi hai, but Friday jaisa hero bhi to nahi hai boss. Bas side role mein aakar bolta hai ki bhai weekend tak jana hai तो पहले मुझे क्रॉस करो. दिस मिड वीक जो ब्लू होता है ना, आई नो मंडे ब्लूज बहुत ही ओवररेटेड है, बीच वाला हफ्ते का ये जो दिन है ये गुजरना ही नहीं चाहता है. क्या करें, कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसको भी जीना है. और डैलस वेदर भी फुल ड्रामा में है आज. टेम्परेचर वुड बी अराउंड 100 डिग्रीज फारेनहाइट, आई मीन 100 तक भी जा सकता है. आई मीन सितंबर कैलेंडर पे आ गया है, बट अभी तक समर ने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया. क्या चल क्या रहा है? हाइड्रेशन को सपोर्टिंग एक्टर में मत समझना, वही आज आपका मेन हीरो है पिक्चर का. आउटडोर प्लान्स बहुत ही स्मार्टली मैनेज कीजिए, गाड़ी से ही ट्रैवल कीजिए, डोंट ट्राई टू वॉक, जस्ट धूप सेकना है अपने आप को. जादू मत समझिए कोई मिल गया क्या, अब गाड़ी ट्रैवल कीजिए, टेक एज मच हाइड्रेशन एज पॉसिबल. और बहुत इंपॉर्टेंटली अपने बच्चे को या फिर पेट को अकेले में गाड़ी में मत छोड़िए. अगर कभी कभी ना ऊटपटांग चीज़ें दिमाग में आ जाती है, तो सवाल यह है, आई वॉन्ट टू बिगिन दिस आर विद दिस क्वेश्चन, अगर डैलस हीट को ना कोई बॉलीवुड टाइटल आप देना चाहते हो तो वो कौन सी होगी? जस्ट थिंक अबाउट इट एंड गेट क्रिएटिव एंड कॉल मी, और मुझे भी थोड़ा एनलाइटन करो आपके इस ऊटपटांग सोच से. स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM. दिस इज गपशप गली विथ मी रमिता.
1: अरे यार कोई एसी चला दो यार.
2: सही है, सही
1: मजा ही मजा ब्रो. चलो शुरू करते हैं.

You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. इस गाने से पहले मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि अगर डैलस की गर्मी को या वेदर को अगर आप कोई भी बॉलीवुड टाइटल का टाइटल देना चाहते हो तो वो कौन सी होगी. बहुत ही क्रिएटिव है हमारे डैलस के लिसनर्स. तो पहला कॉल जो मैंने रिसीव किया वो था गिरीश का, जिन्होंने बहुत ही सिंपल से एक लाइन में मुझे आंसर दिया और आई डिडंट वांट टू हैव और आस्क एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट इट. उनका मानना था द टाइटल दैट शुड बी गिवन टू द डैलस की गर्मी शुड बी जला कर राख कर दूंगा. एनी डिबेट ऑन दैट फ्रॉम माई साइड? No. The second call I received was from Aarti. और Aarti ने बहुत ही खूबसूरती से explain किया कि यार इसको धुरंधर नाम दे दो क्योंकि यार रिवेंज खत्म ही नहीं हो रहा, उनका जा ही नहीं रहे, बदले पे बदला ले ही जा रहे, हो क्या रहा है, इट्स गेटिंग वर्सर डे बाई डे. एंड ये ड्राई गर्मी क्या ही करूँ, सह नहीं होता, सह नहीं पा रहे और चले जाओ यार. लेट द फॉल कम and enjoy, let's have at least weather तो ठीक हो life में. कुछ भी नहीं समझ चल रहा है यार.

You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Gupshup Gali with me, Rumita. और एक सवाल जो क्या पूछ लिया मैंने आपसे कि डालस की गर्मी को कोई भी फिल्म का टाइटल दे दो यार. कॉल्स पे कॉल्स आ ही जा रहे हैं. आनंद ने थोड़ी देर पहले फोन किया और उन्होंने कहा कि आग का गोला, दैट इज द अप्रोप्रिएट टाइटल दैट ही वॉन्ट्स टू गिव टू द डालस की गर्मी. वैसे आई कांट सेकेंड यू मोर आनंद जी. यस, थोड़ी तो गर्मी है बट क्या करें, शहर है अपना, रहना तो यहीं पे, जीना तो यहीं पे है. फिलहाल आप बाकी लोगों से मुझे पूछना था कि इस साल का आपका जो घर का चेकलिस्ट था वो पूरा हुआ, या मीन अपना घर, अपने सपनों का घर, उसका चेकलिस्ट पूरा हुआ? नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा. उसकी प्रेपरेशन आप अब से शुरू कर दो, बिकॉज ड्रीम होम मॉर्गेज इज देयर बाय योर साइड, जो कि 1998 से हेल्प कर रहे हैं फैमिलीज को अपने सपनों का घर ताकि आप बना सको. फॉर डिटेल्स कॉल कीजिए 972-245-5626, दैट्स 972-245-5626, या फिर विजिट कीजिए dreamhomemortgage.com and contact Hussain Panjwani because he will make sure that sapno ka ghar is मतलब वही होता है ना, आपके सपनों के घर का चाबी आपके हाथ में जितनी जल्दी से जल्दी आपको मिले, चाहे वो पर्सनलाइज मॉर्गेज सॉल्यूशन हो या फिर घर खरीदना हो, रिफाइनेंस करना हो, हर सवाल का जवाब उन्हीं से मिलेगा. और उनसे अगर डायरेक्टली बात करनी हो तो एवरी सैटरडे 3 to 3:30 PM ही वुड बी लाइव ऑन फनीशिया रेडियो. कॉल इन द स्टूडियो एंड आस्क एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव फॉर योर होम बाइंग, यू नो, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी एंड प्लॉटिंग. प्लॉट तो घर का ही होता है. फिलहाल सुनते रहिए 104.9 FM फनीशिया रेडियो. दिस इज गपशप गली विथ मी रुमिता.

Exactly my words whenever I visit this restaurant, yaar. Bring it on. Bring out all the lovely dishes that you have. And I'm talking about Page 3 Eatery. And क्या बात कर रहे हो, यू हैवन हर्ड ऑफ पेज थ्री ईटरी? यार डालस में रहते हो, मी मैकेनी के आसपास भी अगर रहते हो, यू हैव टू हैव, आई मीन यू मस्ट हैव विजिटेड पेज थ्री ईटरी टिल नाउ. और अगर नहीं किया है तो मेरी बात सुन रो एंड विजिट इट, बिकॉज दे हैव दिस स्लिजलिंग कबाब्स एंड फ्लेवर फूड चाट. और इनकी जो माशाल्लाह मॉकटेल्स है ना, येस मॉकटेल्स, दे हैव दैट मॉडर्न फ्लेयर एंड ट्विस्ट इन दैट एज वेल. पेज थ्री इटरी एट हब 121. और अगर मुंबई की स्ट्रीट चाट हो या दिल्ली या अवधी, लखनऊ की बिरयानी, कुछ भी आप इंडियन खाना विथ अ मॉडर्न फ्लेयर, इफ़ यू आर मिसिंग आउट देन डेफिनेटली डू स्टेप इन एट पेज थ्री. चाहे वो ब्रंच हो, लंच हो, डिनर हो, डेट नाइट हो, या फिर मेरी तरह सिर्फ आप सिर्फ फूडी हो और अच्छा खाना चाहते हो, हब 121 मैकेनी, दैट इज पेज थ्री ईटरी फॉर यू. फॉर डिटेल्स एंड द फुल मेन्यू विजिट page3eatery.com. You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. This is Rumita and this is Gup Shup Gully.

0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
1: क्या मतलब?
2: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
2: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
1: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
3: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
6: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूँगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूँ।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: वेट, इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं ही तो।
0: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000+ गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
11: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

36 minutes past 11 o'clock. It's a 9th September Wednesday morning and you're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. This is Gup Shup Gully with me, Rumita. And 9th September, yani ki aaj hai Akshay Kumar ka birthday. He turns 59 today. Aur aaj... क्या ही बताए, डिसिप्लिन के मामले में ना वो हम सबको बिना लेक्चर दिए ही गिल्टी फील करा देते यार। सुबह 3:30-4 बजे उठ के एक्सरसाइज करना और अपना दिन पूरा काम खत्म करके रात को बाय 9 o'clock सोना, ये डिसिप्लिन अगर जीवन में आ जाए ना तो क्या ही कहे। बर्थडे के साथ हैवान जो कि उनकी अपकमिंग रिलीज है, दैट इज गोइंग टू रिलीज वेरी सून, और उसकी एक फ्रेश ग्लिम्स भी हमें देखने को मिल गई है एंड दैट brings Akshay Kumar and Saif Ali Khan together after 18 years. और ये बढ़िया काम किया है फिल्म मेकर प्रियदर्शन ने। वैसे कुछ दिन पहले प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी जो जिसने कमबैक की विद भूत बंगला वो भी चर्चे में तो थी, बट क्या ही कहे, मूवी के बारे में जितना कम बोला जाए उतना ही बेटर। और हैवान की बात करें तो थॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द मेन प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड दिस कि जो अच्छा दिखे वो हमेशा अच्छा नहीं होता है, और जो ईविल लगे जरूरी नहीं है वो ट्रूली ईविल हो। आया ना, कुछ शक्लें चेहरे इंसानों की बातें आपके सामने आ गई, रिफ्लेक्ट हो गई है, किसी के बारे में सोच तो जरूर रहे हो इस लाइन को मेरे बताने के बाद। फिलहाल हैवान के लिए वेट करते देखते ये पिक्चर विद प्रियदर्शन, अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान क्या जादू दिखाती है बॉक्स ऑफिस में। बट अक्षय कुमार, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम द फनीशिया टीम, द एंटायर डैलस। वैसे कौन सा अवतार ऑफ अक्षय कुमार इज योर फेवरेट, चाहे वो एक्शन हो, कॉमेडी, रोमांस या फिर सोशल ड्रामा या फिर पेट्रियटिज्म, उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एवरीवेयर ही इज द ओनली वन एंड ओनली अक्षय एंड अक्षय। एंड हैविंग सेड दैट, सैफ अक्षय विद हैवान, दे आर कमिंग बैक। अच्छा सच बताओ, कौन सी ऐसी फिल्म है जो इंस्टेंटली इन जोड़ों, आई मीन अक्षय और सैफ की कौन सी ऐसी मूवी है जो नाम लेते ही आपको याद आती है कि नहीं ये मूवी तो वही थी। आया ना, याद आया ना। चलिए अगर उसी फिल्म के बारे में आप भी सोच रहे हो तो ये लो उसी फिल्म का गाना।

You're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. This is Gupshup Gali with me, Ramita. और back to back, मैं खिलाड़ी तू अनारी से सुन रहे थे आप ये गाना. और ये जो last गाना, I mean, I'm pairing तो अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की आप कर ही सकते हो बातें उनकी. But interesting fact ये है कि अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी सिर्फ रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी या फिर later on कोई भी हीरोइन ले लो, वो वैसे हर एक हीरोइन के साथ ही अच्छे लगते हैं. बट देयर इज अ स्पेशल जोड़ी विद कुमार शानू. आई मस्ट से दैट ही यूज्ड टू हैव 90s में बैक टू बैक हिट्स ऑफ अक्षय वर बाय कुमार शानू इन हिज लेजेंडरी वॉइस. और वही आवाज, वही मेलोडियस ट्रैक्स आप सुनने वाले हैं इन डैलस ऑन द 12th ऑफ I beg your pardon, on the 11th of September at the brand new Robinson Fine Arts Center, which is located in Plano. Yes, you're right. Kumar Shanu, the unforgettable 90s, is going to come with his 90s nostalgia, timeless memories, unforgettable romance. Yani ki agar aap meri tarah millennial ho aur Kumar Shanu ke meri tarah bhi bahut bade fan ho, then don't miss this opportunity to listen to him live on 11th of September. For tickets, you need to visit eventbrite.com and sulekhatickets.com. In websites mein is event ki tickets available hai. Seats are very limited and available also. And there is also a free parking. So, free parking ka jo कभी कभी आई मीन पार्किंग का जो बहुत बड़ा झमेला होता है कॉन्सर्ट्स में आजकल, वो यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो देर इज एन एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल. तो और देरी मत कीजिए. eventbrite.com, sulekhatickets.com और सिंपली यू कैन कॉल 214-869-2668 एंड गेट योर टिकट्स बाय टुडे. दिस इवेंट इज प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्चून ग्रुप. वैसे गपशप गली में अब मौका है आपका एक टिकट जीतने का ऑफ दिस कॉन्सर्ट, यानी कि अनफॉरगेटेबल 90s बाय कुमार शानू. ऑल यू हैव टू डू इज गेस द नेम ऑफ द मूवी of the soundtrack that I'm going to play. इससे simple कुछ भी नहीं हो सकता. सुबह सुबह Wednesday morning अगर एक ticket जीतना है of the Kumar Shanu unforgettable 90s, so call लगाओ and answer me the simple question, the name of this movie which I'm playing the soundtrack of. Studio number is 972-235-5555.

You're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. This is Gupshup Gully with me, Rumita. And जी हाँ, abhi bhi phone lines are still ringing. And I know how much a Bollywood buff all the entire DFW is. इसलिए तो आप हमें सुनते हैं क्योंकि you know, हम ही तो है. We bring the community together. We are the Dallas की धड़कन. वैसे, I have the name of the winner of this giveaway contest that I ran just now before this song. Simple सा question था. Answer भी उतना ही simple है. जी हाँ, परदेस है फिल्म का, मूवी का नाम. और बहुत लोगों ने कॉल किया, अभी भी किए जा रहे हैं. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मत कीजिए, क्योंकि विनर ऑलरेडी चूज कर लिया है मैंने. द फर्स्ट एंड द राइट आंसर देने वाले कॉलर है मिलिंद चौक. कंग्रेचुलेशंस मिलिंद जी, आपको मिलता है एक टिकट ऑफ दिस कॉन्सर्ट विच इज हैपनिंग ऑन द 11th ऑफ सितंबर. अनफॉरगेटेबल 90s कुमार शानू लाइव इन कॉन्सर्ट एट द रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स सेंटर इन प्लेडो. और निराश ना होइए, आपको भी मौका मिलेगा. अगेन इन द आफ्टरनून ड्राइव टाइम शो विद सुनहरी किरण, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विन वन मोर टिकट ऑफ द डे ऑफ द कुमार शानू लाइव इन कॉन्सर्ट. फिलहाल सुनते रहिए 104.9 FM फनीशा रेडियो. दिस इज रुमिता.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases. From silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make the Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
8: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
8: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
9: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
8: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
9: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
10: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है,
11: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
12: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
13: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
11: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
14: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
15: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
14: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
15: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
14: ये क्या होता?
15: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
16: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
17: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन। Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
18: Sadia.
19: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
20: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
21: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
22: तुमसे मिलके दिल का है।
20: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
21: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

13 minutes past 12 o'clock, you're listening to 104.9 FM Phanisha Radio and it's time for the Dallas Desi Dilemma. Yes, hum desiyos ke paas dilemma kam hai kya? To uske baare mein charcha kar lete is show mein. And it's time for that only on, you know, NRI life ka unofficial sport kya ho sakta hai? इट्स अ टाइम जोन कैलकुलेशन. ओलंपिक्स जीत सकते हैं हम इसमें. अगर आपके देश में शहर में आपको कॉल करना होता है तो पहले आप क्लॉक देखो, टाइम देखो, मेंटली आवर्स ऐड करो, फिर डाउट हो तो फाइनली गूगल कर लो यार. और तब तक इन सब के बाद अगर ना हो तो उन बीच आपकी मम्मी का मैसेज आ ही जाता है कि यार बिजी हो क्या. फैमिली ग्रुप में गुड मॉर्निंग तब आता है जब डालस डिनर डिसाइड कर रहा होता है और अगर गलत टाइम पे वीडियो कॉल कर दिया तो स्क्रीन पर सीलिंग फैन, एक आधा सा फोरहेड और बैकग्राउंड से तीन रिलेटिव तो ऑलरेडी पूछ ही चुके होते हैं कि यार कौन है आपका फनीएस्ट डालस, इंडिया या पाकिस्तान या कोई भी आप देश से हो, यूएस टाइम के साथ मिक्सअप स्टोरी कौन सा है. अब कॉल करके बताओ मुझे 9722355555 एंड शेयर फनी स्टोरीज, क्रिएटिव स्टोरीज जो आपने फोन किया या वीडियो कॉल की और ये यू नो टाइम जोन स्याप्पा जो है उसमें फंस चुके हो. मैं बैठी हूँ आपसे गपशप लड़ाने ओनली ऑन गपशप गली विथ रमीता ऑन फनीशिया रेडियो 104.9 FM.

पेंशनर्स, प्राइमरी केयर, इंश्योर होम लोन्स और उमर ख्वाजा लेके आए हैं आपके लिए मेक योर गणेशा विथ फन एशिया नेटवर्क। जी हाँ, गणेश चतुर्थी इज जस्ट राउंड द कॉर्नर और अगर आपके बच्चे जो कि है 5 से 12 साल उम्र के बीच, दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू अटेंड दिस वर्कशॉप जो कि हो रहा है सैटरडे को ऑन द 12th of September। देर इज अ फन फिल्ड वर्कशॉप वेर यू कैन मेक गणेशा आइडल, यानी कि क्ले गणेशा, वही आप फेयरली यू कैन यूज दैट, यू कैन मेक ऑन योर ओन बाय योर सेल्फ एंड यूज दैट एज योर गणेश चतुर्थी आइडल, है ना? फन फील्ड आइडिया। जी हाँ, यू कैन सेलिब्रेट दिस गणेश चतुर्थी मेकिंग वर्क, आई मीन गणेश क्ले आइडल वर्कशॉप विथ फनीशा। रजिस्टर कीजिए एट ganesha.phanisha.net। दिस वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर कीजिए अपने बच्चों का नाम एंड डिटेल्स एंड क्रिएटिवली टेक पार्ट इन दिस वर्कशॉप विच इज हैपनिंग ऑन द September 12th इन द फनीशा नेटवर्क ऑफिस। तो रजिस्टर कीजिए, आपको सारी डिटेल्स वहीं पे मिल जाएंगे एंड टेक पार्ट इन दिस क्रिएटिव वर्कशॉप।

It's almost 12:30 PM and you're listening to 104.9 FM Funny Show Radio. यानी कि गपशप गली को wrap up करने का time आ गया. This is Ramita signing off from today's Wednesday's गपशप गली. आज Wednesday को ना हमने 80s के colors में रंग दिए थे. अब AI ने इतना fashion trend बना दिया है कि Instagram खोलो तो आपको 80s ही नजर आता है. यानी कि 2026 में बैठे बैठे यू टुक अ ट्रिप टू 1986 मे बी. बट लेट मी टेल यू, नॉस्टैल्जिया का बेस्ट यूज पास्ट में परमानेंटली रिटर्न करना नहीं होता है. बस वो उसकी कलर, कॉन्फिडेंस और सिंप्लिसिटी को आज में थोड़ा सा बोरो करके अगर आप रंग दो ना, उसी में देयर इज दिस कैच ऑफ विजिटिंग योर नॉस्टैल्जिया. कल 10 बजे फिर मिलेंगे नए ट्रेंड, नए मसाले और एक नए डैलस देसी डिलेमा के साथ. तब तक स्टे हाइड्रेटेड, स्टे फिट, स्टे हैप्पी एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. दिस इज रुमिता साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज गपशप गली. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग योर डैलस की धड़कन. दैट इज फनीशा रेडियो 104.9 FM.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
5: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
4: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
6: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
7: Documents ya parcel bhejni hai?
8: हाँ।
7: घर रिलोकेट करनी है?
8: हाँ।
7: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
8: हाँ भाई हाँ।
7: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
9: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. Join Paasya and market your business for free. Showcase your deals and get discovered by customers nearby. Paasya, be where your customers are looking.
2: ये तारा वो तारा हर तारा.
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
4: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.
1: 104.9 FM Phanisha, and you're listening to your host Ayushri. Aap sabko good afternoon. तो कैसा जा रहा है आपका दिन? मेरा दिन बड़ा ही भागे दौड़ वाला जा रहा है, और ऐसे भागती दौड़ती जिंदगी में बस ठहराव मुझे मिलता है मेरे कंफर्ट प्लेस में आके, जो कि मेरा है स्टूडियो. और यहाँ जैसे ही पहुँचती हूँ ना, लगता है कि सब कुछ थम सा गया है, ठहर सा गया है, और बहुत ही आरामदायक होने वाला है अगले 2 घंटे तक, क्योंकि अपने पसंद के गाने, आपके पसंद के गाने आप तक लेकर के आएगी आपकी होस्ट आयुषी. तो स्टूडियो का नंबर याद दिला रही हूँ, 9972235555. कॉल करिए, अपनी फरमाइशें दीजिए और साथ मिलकर के कुछ चर्चा करेंगे फिर आज.

ओके, सो वी हैव अ ट्रैफिक अपडेट. अगर आप अर्विंग से रिचर्डसन की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं ऑन 635 ईस्ट बाउंड, देन यू माइट हैव टू गेट इनटू अ बिग ट्रैफिक, बिकॉज वहाँ पर बहुत ही बड़ा कुछ एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है. सो जस्ट मेक श्योर दैट इफ़ यू ट्रैवलिंग from Irving towards Richardson, then you might have to face this traffic. And one of our callers, Zing, called and told us about this. Thank you so much for that. तो बस चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. इस तरफ जाने के पहले सोच लीजिएगा, अर्विंग से रिचर्डसन की तरफ. तो शो के बारे में आज क्या बात करें? आज मुझे लगता है ना, कंफर्ट इज व्हाट आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट. देयर इज ऑलवेज अ कंफर्ट फूड, अ कंफर्ट जोन, अ कंफर्ट प्लेस, कुछ ऐसे सेट ऑफ फ्रेंड्स जो बहुत कंफर्टिंग होते हैं, जिनके साथ कोई भी बात करते वक्त, कोई भी दिल की बात खोलते वक्त ना समय नहीं लगता है, सोचना नहीं पड़ता है. कोई जगह होती है जहाँ पर आके बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाते हो, निश्चिंत हो जाते हो. तो उसके बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कम्फर्ट टुडे. व्हाट्स योर कम्फर्ट प्लेस, कम्फर्ट जोन, व्हाट्स योर कम्फर्ट फूड? तो मेरे लिए अगर बात करें, अगर हम कहीं भी लंबे सफ़र से लौट कर आते हैं, इट हैज़ बीन अ ट्रिप, और जहाँ पे हमको बहुत सारा खाना मिल रहा है, इंडियन खाना मिल भी रहा है, हर तरह का मिल रहा है, लेकिन घर आने के बाद ना सबसे पहला कंफर्ट फूड जो हमको चाहिए होता है वो होता है दाल, चावल और आलू की एक सूखी सी सब्जी, जिसको हम लोग भुजिया कहते हैं. सो दैट्स माई कम्फर्ट फूड. दैट मेक्स मी फील लाइक होम. मतलब ऐसे लगता है कि हम घर वापस मम्मी के पास चले गए, छोटे हो गए हैं फिर से. सो if you have anything that comforts you, your food, your place, let's talk about it. आप कॉल कर सकते हैं स्टूडियो के नंबर पे 972-235-5555 और शेयर करिए अपनी कंफर्ट स्टोरी.

Led by CPA Sudhir Pai, My Time Equity offers personalized strategies for portfolio management, real estate, alternative investments, and retirement plans. Visit mytimeequity.com or call 469-702-1272. I repeat, 469-702-1272. तो आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने शो पर कंफर्ट की. एंड एक यू नो फैसिनेटिंग रिसर्च भी है अराउंड कंफर्ट फूड, फेमिलियरिटी, इमोशन रेगुलेशन, नॉस्टैल्जिया एंड कंफर्ट जोन. कि अगर आप किसी अपने कंफर्टेबल जोन में हैं, अपने कंफर्टेबल लोगों के साथ हैं, देन योर कॉर्टिसोल गोज डाउन ऑटोमेटिकली और आपका जो ये जो स्ट्रेस है वो अपने आप कम होने लगता है. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है वो अपने आप कम होने लगता है. तो इसीलिए शायद हमें वो सुकून महसूस होता है जब हम अपने घर वापस आते हैं, अपने यू नो अपने ऑफिस में, अपने स्टडी में बैठ के किताब पढ़ रहे होते हैं या फिर अपने बेड पे आराम से सो रहे होते हो. यू फील सेफ इन दैट एनवायरनमेंट. आपको लगता है कि यार ये मेरी जगह है, आई एम सो कंफर्टेबल, आई नो एवरीथिंग अराउंड कि क्या है. और अब धीरे धीरे हम लोगों के लिए ना, पहले वो कंफर्ट जोन हमारा घर मतलब बैक होम हुआ करता था जहाँ हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे. बट नाउ आर कंफर्ट जोन इज़ आर हाउस, आर होम. अब मुझे ऐसा होता है, वेन एवर आई एम एट माई मदर्स प्लेस और माई मदर इन लॉज प्लेस बैक इन इंडिया, देन मुझे बड़ी घबराहट होती है जब मैं किचन में कुछ पकाने जाती हूँ या बनाने कुकिंग के लिए स्पेशली जाती हूँ. Because I want my kitchen, even for a smallest of the thing ki ek pan use karna hai, I want my pan because I know what temperature it sets on. And agar wo nahi ho raha hota hai, baar baar poocho, koi aur bartan lao, koi aur kuch lao, that increases my anxiety. Mujhe tension hone lagti hai. To jo cooking mujhe acha lagta hai, mujhe wahan pe wo tension dene lagta hai. Kitni choti si cheez hai, but yes, we all love our comfort zone, our own space jisme hum reh rahe hain. So yes, we are ready for some stories. If you feel the same when you are with your parents, at your parents' house, then you can call me and share those stories. Or else, just request a song, call me on 972-235-5555 aur apne pasand ke gaane aap mere saath sun sakte hain. See? अगर कोई आदमी, कोई इंसान है जिसके साथ यू फील ऑल राइट, देन गिव मी अ कॉल एंड लेट मी नो.

0: टू है तो आई विल बी ऑल राइट. यस, अगर आप लोग हैं और ऐसे ही फोन करते रहेंगे देन आई विल बी ऑल राइट टू. एंड यस, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पल्लवी एंड पल्लवी शेयर्ड हर स्टोरी दैट उनको भी ऐसा ही लगता है यार जब वो इंडिया जाती हैं और वहाँ जाने के बाद अपना कंफर्ट, अपना प्लेस, अपना घर लगता है कि यहाँ पर हम फटाफट कुछ भी कर देंगे, बट वहाँ जाने के बाद फील होता है कि यार नाउ दिस प्लेस इज ठीक है, मतलब अपना ही है बट थोड़ा कम अपना हो गया है अब. एंड ऑन टॉप ऑफ इट शी एडेड, यार आजकल इंडिया जाओ तो बच्चे भी हमें सिखा रहे होते हैं कि आपको ये करना, तो लगता है कि हम यूएस में रहते तो हमें कुछ पता नहीं है, ना हमें फैशन सेंस पता है, ना हमें वहाँ की चीज़ें पता है. अब भाई उनको क्या पता कि हम यहीं से निकले, यहीं के खिलाड़ी हैं, वो बच्चे क्या समझे. जैसे शी वॉज राइट दैट हर नीसेज और यू नो इवन इफ आई गो माई सिस्टर्स एंड ऑल द लिटिल वंस दे टेल मी कि कहाँ शॉपिंग करना है. हम बोले हम इसी शहर में बड़े हुए हैं यार, हमको मत बताओ कि हमको शॉपिंग कहाँ करना है, हमको जाना कहाँ है, हमको लेना कहाँ से है. बट यस, ऐसा हो जाता है कभी कभार. तो आज हमारे चर्चा का विषय है, टॉपिक है कंफर्ट, कंफर्ट जोन, हाउ कंफर्ट जोन चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ टाइम एज वी ग्रो अप एंड वॉट कंफर्ट फील्स लाइक. अ सेट ऑफ फ्रेंड्स, अ खाली कमरा विथ योर ओन म्यूजिक सिस्टम और योर ओन बुक्स, दैट इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड वील कंटिन्यू दिस कॉन्वर्जेशन विथ यू नो ऑन दिस आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. तो वापस जाते हैं और फिर बात करेंगे.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
6: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer? Oh. उमर ख्वाजा.
7: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
8: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
9: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
8: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
9: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
8: और एंटरटेनमेंट,
9: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में.
8: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
9: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
10: अजी सुनते हो?
11: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
6: दी ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस. एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
13: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: और यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
14: क्या मतलब?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
6: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
17: You can search your radio channel. Fun Asia, 104.9 FM.
0: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 एफएम पे, और आयुषी के साथ चर्चा चल रही है कंफर्ट जोन पे। तो भाई कंफर्ट जोन, कंफर्ट फूड, कंफर्ट दोस्त, ये जो कुछ भी साथ हो तो अच्छा ही लगता है, हमको तो ये लगता है, बट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन टू। अभी मेरे पास एक कॉल आई थी, बोली नहीं यार कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा कंफर्ट में डाल देता है, फिर कोई भी चेंजेस में अडेप्ट करने में टाइम लगता है। बट मेरा सवाल ये है, जिंदगी में कब तक अडेप्ट करते रहोगे, कब तक बदलाव को लाते रहते हो? बदलाव तो आता ही रहता है जीवन में कहीं ना कहीं, हर उम्र के पड़ाव पे एक अलग तरह का बदलाव आता है। बट इस एक टाइम आता है लाइफ में जहाँ पर आपको लगता है कि बस अब यही है यार, यहाँ रुक जाते हैं, थम जाते हैं, यहीं पे अब अपनी ज़िंदगी बिता लेते हैं, यही कमरा, यही घर, यहाँ पे अब आराम से ज़िंदगी निकले, बाकी तो बदलाव आना ही है। शरीर में अंजर पंजर ढीले हो रहे हैं तो घुटने जवाब दे रहे हैं, खाना बनाने का मन कम करने लगा तो बाहर का खाना खा रहे हैं। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बदलाव थोड़े थोड़े हो रहे हैं, वो छोटे छोटे छोटे जो अच्छे लगते हैं, पर बिग चेंजेस वी ऑफन टेंड टू अवॉइड, डोंट वी? बड़े चेंजेस, अब कोई शहर बदलना हो, कोई देश बदलना हो, बड़ा ही मुश्किल लगता है यार। अब लगता है कि नहीं हो पाएगा। वही अपने 20s में जब थे और घर छोड़ के निकले, कॉलेज गए, तो इतना मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि उस समय एक अलग एनर्जी थी, एक अलग जज्बा था, सब कुछ जानना था, एक्सप्लोर करना था। उसके बाद नौकरी की, उस समय भी अलग था, फिर धीरे धीरे यू नो हर एक चैलेंजेस एक्सेप्ट करते गए जॉब में, कंफर्ट के हमेशा बाहर रहे, अपने कंफर्ट से निकल के काम करना है, यही सीखा है। लेकिन अब धीरे धीरे धीरे ऐसा लगता है कि यार बस अब थोड़े से ना अपने जोन में रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में आराम से ज़िंदगी बिताते हैं। यार दोस्त भी पहले हज़ारों हुआ करते थे, अब ऐसे लगता है कि थोड़े से ही हो पर अच्छे हो, सच्चे हो, जिनसे खुल के अपने दिल की बात कह लें, बस इतने हो, वही काफ़ी है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है और ऐसी कोई छोटी सी कहानी या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं, तो आयुष यहाँ बैठी इंतज़ार कर रही है आपकी कॉल का। स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555। कॉल करिए और मुझसे बातें करिए। फिलहाल पल्लवी की फरमाइश पे सोनू निगम का ये गाना।

ये गाने ना कंफर्ट गाने हैं. अगर कंफर्ट की बात करूं, ये वो गाने हैं जो बिल्कुल मन खुश कर देते हैं, नॉस्टैल्जिक कर देते हैं. मुझे लगता है नॉस्टैल्जिया पे भी रिसर्च होना चाहिए, कहीं ये भी तो लोगों का स्ट्रेस हार्मोन कम नहीं करता है, कॉर्टिसोल कम हो जाता है नॉस्टैल्जिक होकर के, ऐसा लगता है मुझे. एनीवेज, टेकिंग द शो अहेड, यू लिसनिंग टू योर होस्ट आयुश्री ऑन फन एशिया 104.9 FM, एंड थैंक यू फॉर ऑल माय लवली कॉलर्स जिन्होंने कॉल करके यू नो अपनी स्टोरीज, अपनी बातें शेयर करी हैं. आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय ब्यूटीफुल लिसनर्स.

Go ahead. You're listening to your host Ayushree on Fun Asia 104.9 FM, and thank you for all my lovely callers जिन्होंने call करके you know अपनी stories अपनी बातें share करी हैं. I just got a call from one of my beautiful listeners, Pushpa ji, जिन्होंने बताया कि you know अब उनका favorite comfort time वो होता है जब उनके grandkids उनके पास होते हैं. So she feels that you know उनके बच्चों को enjoy करना चाहिए और उनको उनके बच्चों के साथ enjoy करना चाहिए. That's a lovely thought. हर grandparent ऐसा ही सोचें, ऐसा ही चाहें. उनका कंफर्ट उनके नाती नतनी पोता पोती के साथ होता है. दैट इज ऑल्सो फाइन एंड फेयर, राइट? जिसको जिस चीज में खुशी मिले शायद वही कंफर्ट है. शो को आगे बढ़ाते हैं. लंच का टाइम हो रहा है. गाना प्ले करने के पहले आपको बता देते हैं कि आप कहाँ जाके बढ़िया खाना एंजॉय कर सकते हैं. तो भाई अगर आप गार्डन की तरफ हैं तो तंदूरी फ्लेम इज द प्लेस वेयर यू नीड टू गो, एंड इट इज द न्यू फ्लेवर डेस्टिनेशन फॉर ऑल स्पाइस लवर्स. सिजलिंग तंदूरी प्लेटर है इनके पास, रिच करीज है, एंड ऑल योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स विथ होम स्टाइल पंच. फ्रॉम स्मोकी तंदूरी कबाब्स टू वेलवेटी करीज एंड फ्रेश हॉट नान, एवरी प्लेट फील्स लाइक अ सेलिब्रेशन. तो भाई सोच क्या रहे हैं, आज ही जाइए तंदूरी फ्लेम एंड दिल सर्व यू द काइंड ऑफ मील दैट टर्न्स एन ऑर्डिनरी डे इनटू अ फीस्ट. तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट लोकेटेड इन गार्लैंड. एंड बिफोर आई टॉक मोर आई प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू गाइज.

Your path to U.S. permanent residency, the law offices of Seema Mehta can help you. Attorney Seema Mehta और उनकी experience team जो है वो specialize करती है exclusively in immigration law, including EB-5 investor visas, family and employment visa, perm labor certification and U.S. citizenship. For more information on EB-5 investor visa program, you can email them at email them on info@seemamehtalawfirm.com. I repeat, it's info@seemamehtalawfirm.com. The law offices of Seema Mehta. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. कंफर्ट की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए और स्टूडियो में ही खूब चिल्ला चिल्ला के गाने लगे क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन है. तो उस कंफर्ट प्लेस की बात करते हैं. कौन सा ऐसा कंफर्ट प्लेस है? और ऑब्वियसली समय के साथ कंफर्ट प्लेस चेंज होता रहता है. जब हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो घर कंफर्ट प्लेस होता है. कुछ लोगों के लिए वापस कॉलेज जाना कंफर्ट होता है क्योंकि घर पर इतना कलेश हो रहा होता है कि उनको लगता है भैया हम कॉलेज में ही अच्छे हैं, अपना कॉलेज का कमरा, मेस का खाना और हमारी किताबें. ऐसे भी हमारे दोस्त थे, बट हम ऐसे थे जो हम सारे मोस्ट ऑफ देम ऐसे थे जो घर वापस जाने का रास्ता देखते थे क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन था. माँ के हाथ का खाना, अपना रूम और अपना वॉकमैन लगा करके गाना सुनना, टीवी देखना, मज़े करना. सो इफ देयर इज अ कंफर्ट प्लेस, व्हाट डू यू थिंक इट वुड बी? वुड इट बी योर होम और योर चाइल्डहुड होम, आपके बचपन का घर? What do you think is your comfort place? Think about it. If you don't want to tell me, it's okay. But सोचिए और सोच करके ही उसको याद कर लीजिए आज मेरी बातों के जरिए.

हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो पैशन हेल्थ है. येस, सो इफ यू डोंट नो हेल्थ इंश्योरेंस और इज पैशन हेल्थ आउट ऑफ योर नेटवर्क, स्टे कनेक्टेड टू अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ. योर मेंबरशिप इंक्लूड्स प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलो अप एंड प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ when appropriate care coordination, plus 20% savings on eligible self-pay labs, lab imaging and diagnostic services. Call or text 214-666-6259. I repeat, it's 214-666-6259. Or visit passionhealthphysicians.com. Passion Health, our passion, your health, our community. And this program is not a health insurance. Eligibility restrictions do apply. शो को आगे बढ़ाते हैं. कंफर्ट पे बहुत सारी बातें कर ली हमने, कंफर्ट फूड के बारे में बात कर लिया, कंफर्ट जोन के बारे में बात कर लिया. अब कंफर्टेबल लोगों के बारे में बात करें. कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जिन जो आपकी ज़िंदगी का हर पन्ना जानते हैं. वो ऐसे लोग होते हैं जो खून के रिश्ते नहीं हो सकते, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके ऑफिस के कलीग हो सकते हैं, बट एक कंफर्ट लगता है उनके अराउंड, एक बहुत ही ज़्यादा अपनापन सा लगता है कि आप बस बैठते हो या फ़ोन उठाते हो और खुली किताब बन जाते हो. आपको सोचना नहीं पड़ता है, कोई झिझक नहीं होती है, कोई मन में थॉट नहीं होता है, आप बस बोलते जाते हो, अपने आप को खाली करते जाते हो. और एट टाइम्स खाली करना बहुत ज़रूरी है. अंदर जितना कुछ भरा है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है. अगर हम नहीं निकाल रहे हैं तो आज के टाइम में बहुत फेटल हो रहा है लोगों के लिए नहीं निकालना. बिकॉज पता नहीं क्या समय आ गया है. पहले तो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, पहले शायद इतनी सारी चीज़ें चल नहीं रही होती थी ज़िंदगी में. अभी इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं और हमारे पास निकालने के लिए कोई नहीं बचा है. शायद हमें ज़्यादा लगता है क्योंकि हम घर से दूर आ गए हैं, दोस्तों से दूर आ गए हैं. फिर बचपन वहाँ बीता तो दोस्त भी वहाँ हैं, बट जब कभी भी मौका लगता है उन दोस्तों से बात करने का जो हमारे सबसे करीब हैं, हमारा आज कल बीता हुआ कल सब जान रहे हैं, उनके पास फटाक से वो सारी बातें, सारा मतलब वो सुनते ही, आपकी आवाज़ सुनते ही, अगर आप जिस हिसाब से आप उसको हेलो बोलते हैं ना, उस हेलो से ही वो सामने वाला जो आपका कंफर्ट पर्सन है वो फटाक से समझ जाता है कि यार या तो कोई गुड न्यूज़ है, और अगर आप सैड होकर के हेलो बोल रहे हो तो वो आवाज़ से पहचान जाएगा क्या प्रॉब्लम है. हेलो का जवाब हेलो से नहीं आएगा. सो इफ़ यू हैव सच वन पर्सन इन योर लाइफ जो आपकी आवाज़ से आपके दिल का हाल समझ ले, यू आर द richest पर्सन इन दिस वर्ल्ड. दिस इज़ what आई फील. एंड समटाइम्स those relationships matter more than anything. So if you have a comfort person, a comfort group of friends, if you're lucky, then आप blessed हैं. और अगर ऐसा कोई group है, कोई दोस्त है जिसके लिए गाना dedicate करना चाहते हो तो call करिए 972-235-5555 पे, और आपकी होस्ट आयुषी आपकी स्टोरी सुनेगी, आपके एक्सपीरियंसेस सुनेगी और आपके लिए गाने भी प्ले करेगी. फिलहाल ये गाना आपके लिए.

0: में जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
3: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
4: लैपटॉप में।
3: इन्वेस्टमेंट?
4: गूगल ड्राइव।
3: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
4: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
3: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
1: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
5: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
1: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
6: भूख लगी
7: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
8: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
1: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी। Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
9: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
11: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
12: तुमसे मिलके दिल का है।
11: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
13: नेशन का फन स्टेशन फन एशिया रेडियो।
14: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे। और आयुषी के साथ चर्चा यहाँ पर चालू है। चर्चा का विषय मतलब हर दिन बदलता रहता है। आज का विषय कंफर्ट था, कंफर्ट जोन, कंफर्ट फूड, कंफर्ट comforting people. So that's what we were talking about, and I got a lot of calls when people are sharing their stories, and you know, unke dost jo sabse zyada unke liye ahmiyat rakhte hain, kyunki obviously wo unki baatein sunke hi, unki awaaz sunke hi pehchan lete hain ki dimag mein kya chal raha hai. Aise dost bahut kam hote hain aur bahut mushkil se milte hain. Sambhal ke rakhiye inko. And when we talk about comfort zone, aaj ke date mein agar मेरे पास जितने कॉल्स आए उसमें से सबके लिए उनका कंफर्ट जोन ना इस पड़ाव पे आके उम्र के अपना अपना घर है, जहाँ पे आकर के अच्छा लगता है, सुकून लगता है, वापस आकर के कि यही है, पहले लोगों के लिए घर वापस जाना मतलब मम्मी पापा के पास जाना होता था, पर अब घर वापस आना मतलब अपने घर वापस आना होता है, अपना घर जहाँ पे अपना सब कुछ अपने हिसाब से हो। और अगर कुछ चीज़ें अपने हिसाब से ना होना तो आजकल बड़ी ही झुंझलाहट हो रही है। उम्र का तकाजा कहते हैं उसको, बुढ़ा रहे हैं आप मेरे जैसे। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, बहुत प्यारा सा गाना दीपाली सहाय की आवाज़ में आप लोगों के लिए।

दीपाली सहाय की आवाज़ में मैं वापस आऊँगा का ये गाना आप लोगों के लिए लेके आई थी आपकी होस्ट आयुषी। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट गाना है और ये सिंगर भी मेरी फेवरेट है यार, बार बार बोलती हूँ, मेरे शहर की है, पटना की है, बड़े ही गर्व से। एनीवे, शो को आगे बढ़ाते हैं और भाई देखिए भी मेरे पास गानों की फरमाइशें बहुत सारी आ गई हैं, तो पहले हम उनको पूरा करते हैं और उसके बाद और बातें करेंगे। और यस, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट आर कम्फर्ट जोन्स। मैंने शुरू में ही कहा था कि पिछले कुछ सालों में मेरा कंफर्ट जोन मेरा ये स्टूडियो का कमरा बन गया है, जहाँ पर आकर के हम दिल खोल के आप लोगों से बात कर पाते हैं, जिस टॉपिक पे मन करता है उस पे चर्चा कर लेते हैं और अपने व्यूज़ रखते हैं और आपके भी व्यूज़ लेते हैं। सो एंड इट गिव्स मी पता नहीं, एक कम्प्लीटली अलग तरह का मज़ेदार सा यहाँ पर ना एक एक्सपीरियंस है। कमरा बंद है, माइक हाथ में है, जो चाहे बोलो। और जब आपको गाने सुनाती हूँ तो खुद भी यहाँ पे जोर जोर से गाने गाती हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले डैलस के बिजनेस ओनर्स के लिए ये न्यूज़ है। अटेंशन टेक्सास बिजनेस ओनर्स लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन। तो भाई तारा कमर्शियल एनर्जी है प्राउडली सर्विंग टेक्सास बिजनेसेस सिंस 2002 विद कॉम्पिटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स। आप इनको कॉल कर सकते हैं 844-428-2808 पे। आई रिपीट, इट्स 844-428-2808, या फिर आप taraenergy.com पे भी जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो सारे बिजनेस ओनर्स, दिस इज़ फॉर यू एंड टेकिंग यू टूवर्ड्स अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग, वन ऑफ माई फेवरेट्स। 2000s का गाना है, ए आर रहमान का म्यूजिक है।

कॉलिंग आउट ऑल द लिटिल आर्टिस्ट. जी हाँ, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इंश्योर होम लोन्स और उमर ख्वाजा प्रेजेंट्स मेक योर गणेशा विद वनेशा नेटवर्क. दिस गणेश चतुर्थी चिल्ड्रन एजेस 5 to 12 कैन क्रिएट देयर ओन क्ले गणेशा एट अ फन फिल वर्कशॉप ऑन सैटरडे सेप्टेम्बर 12th. Spots are limited, so register today at ganesha.funasia.net and let your little artist creativity shine. तो अगर आपके बच्चे ना उनमें है वो artist streak तो लेकर के आइए, उन register करिए ganesha.funasia.net पे और Saturday 12 September को इस fun filled workshop का उनको हिस्सा बनाइए जरूर.

0: तो आप लोग तो तैयार हो चुके होंगे ना अनफॉर्गेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक के लिए. नहीं हुए हैं तो हो जाइए भाई. द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट. एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन सैटरडे सेप्टेम्बर 26 एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. योर फेवरेट सॉन्ग्स दैट आइकॉनिक वॉइस ऑल लाइव. सोनू निगम लाइव. टिकट अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 855-360-SHOWS. I repeat, it's 855-360-SHOWS. Revolution, Sonu Nigam Live. और exclusive media partner है Funisha. तो भाई जल्दी से टिकट ले लीजिए. नहीं लिया है तो 26 सितंबर 26 सितंबर को बुक कर लीजिए 8:30 PM onwards Sonu Nigam Live के लिए. और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनेशिया 104.9 FM पे, जहाँ पे हम बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गाने आपकी फरमाइश पे सुन रहे हैं. और एक और गाना प्ले कर रही हूँ मैं. बहुत ही प्यारी सी फरमाइश आई है. फिल्म का नाम है टाइगर जिंदा है.
1: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब. ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठी हैं. तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
3: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
4: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
5: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
8: वी नीड टू टॉक।
9: अब क्या हुआ?
8: नथिंग, इट्स नॉट यू।
9: ओह नो,
8: इट्स द डिस्टेंस।
9: डिस्टेंस? वी लिव 10 मिनट्स अपार्ट।
8: अरे इट्स एक्चुअली नॉट यू, इट्स द ड्राइविंग ऑल द वे फॉर माय सैल्स हॉट चिकन।
7: इरविंग, दैट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज ऑफिशियली ओवर। सैल्स हॉट चिकन इज नाउ इन इरविंग। योर क्रिस्पी चिकन, लोडेड सैंडविचेस एंड बोल्ड सैल्स फ्लेवर्स जस्ट गॉट अ होल लॉट क्लोजर। सैल्स हॉट चिकन इरविंग, सेम ऑब्सेशन, लेस डिस्टेंस।
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
15: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
14: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
15: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
14: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
15: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
14: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
16: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.
17: Welcome back after this very short commercial break. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को Fun Asia 104.9 FM पे और कुछ प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गाने चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी ही फरमाइश पर। आपकी होस्ट आयुषी आपके साथ 2:30 बजे तक है और उसके बाद यहाँ पर होंगी किरण, जो अपने शो के साथ करेंगी आपको एंटरटेन, बच्चों से करेंगी गपशप और आपको रखेंगी एंटरटेन। चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। आज हमने अपने शो पे बहुत सारी चर्चा की अबाउट कंफर्ट एंड थैंक यू टू ऑल माय लिसनर्स जिन्होंने कॉल करके अपने सारी स्टोरीज और अपनी बातें हमसे शेयर की हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर कंफर्ट जोन की बात करें तो मैंने तो अपने सारे कंफर्ट्स आपको बता दिए, मतलब आपने आयुषी का हर पहलू जान लिया है अपने होस्ट का और मैंने भी अपने कई सारे लिसनर्स का कई पहलू जान लिया और बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग बड़े रेगुलर्स हैं जो फ़ोन करके ना हर बात, हर स्टोरी शेयर करते हैं और हर चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट वॉट कीप्स आर शो गोइंग। सो येस, हियर्स दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर माई लास्ट कॉलर जिनका नाम है प्रिया। प्रिया, दिस सॉन्ग इज़ फॉर यू।

Fun Pizza Kitchen has launched a brand new Mexican inspired pizza lineup, and these aren't just pizzas, they are full of flavor fiesta. From the fresh fiesta veggie to the fiery Pollo Loco, the seafood packed Senor Camarón, every bite is bold, exciting, and made to impress. तो सोच क्या रहे हैं, जाइए फन पिज्जा किचन की तरफ और ये जो नया ऑब्सेशन ये लोग लेकर के आए हैं खुद ही ट्राई करिए. न्यू फ्लेवर्स, न्यू ऑब्सेशन, एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट funpizzakitchen.com. और हम सोच रहे हैं क्यों ना ये ऑब्सेशन हम ही ट्राई करा दें आप लोगों को, बिकॉज यू हैव अ चांस टू विन अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन बाय आंसरिंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो स्टूडियो के नंबर पर कॉल करना है, ये गाना सुनते ही फिल्म का नाम मुझे कॉल करके बताना है, और अगर आपने सही जवाब दिया देन यू विल गेट अ गिफ्ट $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. सो टेकिंग यू टूवर्ड्स अ 90s का नंबर, अ वेरी ब्यूटिफुल अ फेमस सॉन्ग. यू जस्ट हैव टू कॉल एंड टेल द मूवीज नेम. कॉल करिए और बताइए मुझे ये रहा वो प्यारा खूबसूरत सा गाना.

तो हमें हमारा सही जवाब मिल गया है, जोरदार तालियां हो जाएं पवन काकड़े के लिए जिन्होंने कॉल करके बिल्कुल सही जवाब दिया। मूवी का नाम है साजन। और भाई पवन ने विद इन 30 सेकंड्स, मतलब 30 सेकंड्स भी नहीं, मुझे लगता है 10-15 सेकंड के अंदर ही कॉल कर दिया होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। बहुत सारे कॉल्स आए जिन लोगों को आज गिव अवे नहीं मिल पाया। डोंट वरी, हम कल फिर करेंगे ये, और आप ऐसे ही कॉल करते रहिए। डेफिनेटली एक दिन आपका भी नाम तालियों के साथ गूंजेगा फनेशिया पे। अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, और मतलब आप बढ़ाएं क्या, अब तो ख़त्म करने का टाइम आ रहा है। 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं यहाँ पे पता भी नहीं चलता है। इसीलिए बोलते हैं उसको मेरा कंफर्ट जोन। और आज की हमारे शो का टॉपिक और चर्चा का विषय भी यही था, कंफर्ट जोन। तो बस अपने अपने कंफर्ट जोन में सब लोग खुश रहिए, और ऐसे ही मज़े करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कुछ कंफर्टिंग और सूदिंग गाने भी सुनते रहिए।

यार अभी मेरी नजर गई है मेरे फोन पे, मैं देख रही हूँ दिस 80s ट्रेंड हैपनिंग ऑन इंस्टाग्राम. आर यू गाइस अवेयर ऑफ इट? दिस 80s ट्रेंड इज वेयर एंड यू नो एवरीबडी इज पुटिंग देयर पिक्चर्स ऑन चैट जीपीटी एंड एवरीवेयर, एंड वो लोग 80s वाले मोड में खुद को बड़ा ही अच्छा फील कर रहे हैं. लग रहा है ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा. आपने अभी तक इस ट्रेंड को फॉलो किया है या नहीं किया है? नहीं किया है तो कर लो यार, अच्छे ही लग रहे हैं सारे 80s में भी. पता नहीं क्यों लोगों को वापस से टाइम ट्रैवल करने का मन कर रहा है, बट अगर आपको भी मन कर रहा है देन गो अहेड एंड ट्राई दिस न्यू ट्रेंड. मैं करने वाली हूँ. इफ यू वॉन्ट टू सी मी इन द 80s ट्रेंड देन यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. या आई एम ऑन इंस्टाग्राम टू, बिहारी मॉम इन अमेरिका है मेरा हैंडल. करना है तो कर लो फॉलो, वहाँ भी देख सकते हो सुन सकते हो मुझे. फिलहाल एक और 90s का रोमांटिक नंबर, इसकी फरमाइश आ गई है तो प्ले ज़रूर करूँगी. और अगर 90s और 80s का ट्रेंड फॉलो करना है तो आपको जा करके चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा. हमको बोल के कोई फायदा नहीं है.

सो इट्स टाइम टू साइन ऑफ फॉर द डे. आपकी होस्ट आयुषी आज के लिए आपसे विदा ले रही है. कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय पे 12:30 से 2:30 बजे तक. आयुषी के साथ होगी किसी न किसी विषय पे चर्चा, बिकॉज मुझे लग रहा है मुझे जिस टाइम पे मैं आती हूँ मुझे उसका नाम ही रख देना चाहिए, आयुषी के साथ चर्चा या चाय पे चर्चा. क्या सोचते हैं आप लोग? ऐसा ही कुछ चर्चा का विषय लेकर के आएंगे, आपसे करेंगे बातें, सुनाएंगे प्यारे प्यारे गाने. इसके बाद आने वाली है सुनहरी किरण जो आपको लेकर के चलेंगे एक सुनहरे सफर पे. फिलहाल मुझे विदा दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड रिक्वेस्टिंग सॉन्ग्स. ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, कॉल करते रहिए. आज के लिए टाटा बाय बाय एंड हैव अ वेरी गुड रेस्ट ऑफ योर डे.

0: Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
1: Kya matlab?
2: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
2: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
3: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता है?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
7: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
8: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
9: हाँ।
8: घर रिलोकेट करनी है?
9: हाँ।
8: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
9: हाँ भाई हाँ।
8: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
10: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं।
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं।
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं।
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
14: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
15: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
16: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.

वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून. और जी हमेशा फाइनेंशिया आपको रखता है एंटरटेन्ड एज वेल एज इन्फॉर्म्ड. और सुनहरी किरण में आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में हर रोज आपके लिए आता है एक नया फ्लेवर. 2:30 से 5 बजे तक मैं आती हूँ आपके लिए मंडे थ्रू फ्राइडे. आप मेरे साथ रहते हैं 9722355555 के थ्रू. आज है जी वेंसडे और वेंसडे इज एब्सोल्युटली मिडल ऑफ द वीक. और मिडल ऑफ द वीक को मैं बनाती हूँ मजीद एक्साइटिंग, मजीद हैपनिंग विद सो मच दैट आई ब्रिंग फॉर यू राइट हियर ऑन वेंसडेज. वी स्टार्ट विद रोमांटिक मेलोडीज, वी गो ऑन टू पॉप फ्रीक्वेंसीज, सम पॉप पाकिस्तानी म्यूजिक. देन फ्रॉम 3:30 टिल 4 PM मैं लेके आती हूँ आपके लिए द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स. कौन सा ड्रामा आपको पाकिस्तान का बिल्कुल मिस नहीं करना, कौन सा चल रहा है आजकल ऑडियंस का फेवरेट, सारी बात की जाती है ड्रामों की. और फिर लेके आती हूँ आपके लिए ट्रॉफी ट्रैक्स, यानी ये कुछ अवार्ड विनिंग फिल्मों के अवार्ड विनिंग गाने. सो ये है आज की हमारी आइटनरी. Lots of and in between that, lots of information, lots of music, lots of fun, everything kamal dhamal masti right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran.

Bye. और अगर आप टेक्सास में बिजनेस ओनर हैं तो जाहिर है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन, और उस सवाल का जवाब है तारा कमर्शियल एनर्जी. जी हाँ, दे आर प्राउडली सर्विंग टेक्सास बिजनेस ओनर्स सिंस 2002. कंपेरेटिव रेट्स हैं, रिलायबल सर्विस है उनकी, और कस्टमाइज एनर्जी प्लान बनाते हैं आपकी नीड्स के इर्द गिर्द. सो आपको क्या करना है, सिर्फ उनको कॉल करना है, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताइए और देखिए कि तारा कमर्शियल एनर्जी आपको कैसे हेल्प करेगी. 844-428-2808 is that number. 844-428-2808. या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, which is taraenergy.com. T-A-R-A, taraenergy.com. You're tuned into Romantic Melodies right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. 3 baje tak chalengi Romantic Melodies. 3 to 4, I will bring you pop frequency. अच्छा जी, मैं आपकी recommendations को definitely note करती हूँ. This is not a request segment. However, I will try to fit in as much as I can. और अगर मैं ना कर पाऊँ तो माजरत.

जी हाँ, सुन रहे हैं आप रोमांटिक मेलोडीज. थैंक यू फॉर ऑल योर कॉल्स, आपकी रिकमेंडेशंस और प्यारे प्यारे गाने. जी रोमांस, रोमांटिक मेलोडीज जब हम सुनते हैं तो दिल जो है वो बड़ा खुश हो जाता है. आपको पता होता है कि सारा ये जो आधा घंटा है आपको सिर्फ रोमांटिक गाने सुनने को मिलेंगे. नो हाइपर गाना, नो पार्टी सॉन्ग, ओनली रोमांस. लेकिन रोमांटिक ये नेक्स्ट गाना प्ले करने से पहले, जो कि लिया गया है फिल्म रॉक स्टार से, मैं आपको बताती चलूं जी कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन आ रही है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर की तरफ से, कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर आप जो है वो नेटवर्क, जो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर है वो आपके नेटवर्क में नहीं आता, तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नया प्रोग्राम विच इज पैशन हेल्थ डायरेक्ट. $85 अ मंथ में आपको मिलेगी मेंबरशिप. इस मेंबरशिप में हासिल होगा आपको प्राइमरी केयर विजिट्स मिलेंगे, फॉलो अप इन प्रिवेंटिव केयर मिलेगी, क्रॉनिक डिजीज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, साथ ही साथ टेली हेल्थ जब जरूरी हो, और उसी के साथ कोऑर्डिनेशन आपको जो है वो मिलेगी जी फॉर योर केयर, यू नो. और उसके साथ साथ 20% आपको सेविंग्स मिलेंगी ऑन एलिजिबल सेल्फ पे लैब्स, इमेजिंग एज वेल एज डायग्नोस्टिक सर्विसेज. ये एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम नहीं है, दिस इज अ मेंबरशिप प्रोग्राम दैट इज ऑफर्ड टू यू बाय पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. दिस इज कॉल्ड पैशन हेल्थ डायरेक्ट. आप एंड दिस इज नॉट, वंस अगेन, दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम. सम एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई. सो मजीद मालूम हासिल करने के लिए आप इनको कॉल कर लीजिए 214-666-6259. 214-666-6259 पे कॉल कीजिए. फाइंड आउट मोर अबाउट देम, व्हाट दे आर ऑफरिंग, व्हाट इज दिस प्रोग्राम एंड हाउ कैन यू बेनिफिट फ्रॉम इट. ऑल्सो विजिट देयर वेबसाइट इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, दैट इज passionhealthphysicians.com.

और अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट है तो ऐसी सिचुएशन कैन गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है, और अपनी फिजिकल एज वेल एज मेंटल वेलबींग का ख्याल रखिए. और साथ ही साथ आई नो इट कैन गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल क्योंकि आपने पेपर वर्क, इंश्योरेंस कंपनी, लीगैलिटी, इन तमाम चीज़ों के साथ डील करना है, और अगर आपको कोई केस फाइल करना है तो फिर तो और भी चीज़ें डिफिकल्ट हो सकती हैं. तो इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने दीजिए अटर्नी को, एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा. अटर्नी उमर ख्वाजा और उनकी टीम ना सिर्फ ये कि आपको आपका केस फाइल फाइट करेगी बल्कि आपको बेस्ट कॉम्पनसेशन दिलाएगी. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप इस केस को जीत नहीं जाते. सो दिस इज एब्सोल्युटली अ विन विन सिचुएशन फॉर यू इन दिस डिफिकल्ट टाइम इफ यू आर समवन यू केयर फॉर इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस. अटर्नी उमर ख्वाजा को कॉल कीजिए फॉर कंसल्टेशन 469-300-5046 is that number. Ya phir aap unki website visit kar sakte hain, which is attorneyomar.com.

मोहित चौहान की आवाज में ये खूबसूरत रोमांटिक मेलोडी आप सुन रहे थे, मैं मेरी पत्नी और वो से। अच्छा जी, अब इस गाने के साथ हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और गाना प्ले करते हुए आपको बताऊं कि फन पिज्जा किचन की तरफ से आपके लिए $10 का गिफ्ट कार्ड लेके आई हूं। अगर आप जीत गए तो आपको फ्रिस्को की लोकेशन पे जाना होगा टू कलेक्ट योर $10 गिफ्ट कार्ड। तो सबसे पहले तो फन पिज्जा किचन के मेन्यू के बारे में तो हम कई बार बात कर चुके हैं, मतलब देसी फ्लेवर्स का पैराडाइज है फन पिज्जा किचन, देसी पिज्जास का पैराडाइज है। और उसके साथ जो है अब उन्होंने अपना इंट्रोड्यूस किया है एक नया मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप, जो कि वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, विच इज वेजी, अगर आप वेजिटेबल लवर्स हैं तो वेजी फिएस्टा है, चिकन के ब्रिलियंट मैक्सिकन फ्लेवर्स हैं, सी फूड लवर हैं अगर आप तो आपको सी फूड पिज्जास भी इंट्रोड्यूस किए हैं इन दिस मैक्सिकन लाइनअप। डू चेक दम आउट, फन पिज्जा किचन .com इज वेयर यू नीड टू लॉग ऑन एंड चेक आउट मोर अबाउट देम। दे आर लोकेटेड इन कॉलोनी एज वेल एज फ्रिस्को, बट ये कार्ड आपको फ्रिस्को से उठाना पड़ेगा। अब आपको मुझे ये बताना है कि ये जो गाना अब आप सुनेंगे अगला, इस गाने के सिंगर्स कौन है। 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो।

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
3: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
3: That magic removal ho, love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
4: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
5: Samasya ka pakka samadhan.
4: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
6: Agar kisi cheez ko dil se chaho
7: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
8: डील कहाँ?
7: सिंपल पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
9: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं पास है.
10: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
11: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
12: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
13: इतना सब और प्राइस?
12: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
14: मैं हीरो.
15: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
16: जिंदगी एक रंगमंच है
17: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
18: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
19: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
0: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
20: तुमसे मिलके दिल का है.
0: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
21: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो.

104.9 FM Fun Asia Radio सुन रहे हैं आप. Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran में अब वक्त हो चला है Pop Frequency का. For the next one hour, I'm going to play some Pakistani pop music for you. 3:30 से 4 o'clock, I am going to bring you the top 10 trending dramas according to the TRP charts. आपका और मेरा favorite segment है ये. I love talking about those dramas and I love sharing your viewpoint about those dramas as well. आप जो call करके मुझे बताते हैं. अच्छा जी, break पे जाते हुए मैं एक giveaway लेके आई थी और वो था Fun Pizza Kitchen की तरफ से. $10 का gift card आप जीत सकते थे फ्रॉम फन पिज्जा किचन. यू विल हैव टू गो टू फ्रिस्को लोकेशन एंड कलेक्ट योर गिफ्ट कार्ड. और आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो आपको करेक्ट आंसर बता दें, मैंने सिंगर का नाम पूछा था, तेरे हवाले कर दिया कि जो दो सिंगर्स हैं, ऑफ कोर्स मेल एंड फीमेल, देयर वर टू वॉइसेस इन द सॉन्ग. सो अरिजीत सिंह एंड शिल्पा राव, दैट इज द करेक्ट आंसर. और हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आई और आप जानते हैं मैं आप जिस सीक्वेंस में आपकी कॉल आती है उसको एक नंबर असाइन होता है और वो मैथ के फॉर्मूले में डलता है और एक नंबर जो निकलता है वही विनर होते हैं. और आज के जो हमारे लकी विनर हैं वो हैं कॉलर नंबर 6, दैट इज श्रीजन दत्ता. श्रीजन कांग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे फ्रॉम फन पिज्जा किचन. $10 गिफ्ट कार्ड, दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए एंड देन यू विल हैव 7 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर गिफ्ट कार्ड. गेट योर गिफ्ट कार्ड फ्रॉम द फ्रिस्को लोकेशन. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, आई स्टिल हैव अ फ्यू कपल ऑफ मोर गिव अवेज फॉर यू. बने रही है मेरे साथ, आपकी पार्टिसिपेशन रियली रियली मैटर्स अ लॉट. Thank you.

और जी चल रहा है सितंबर का महीना, तो आप जानते हैं कि एक दो गाने में जरूर एक ऐसी सेलिब्रिटी के प्ले करती हूँ जिन्होंने कुछ हमें ब्यूटीफुल म्यूजिक दिया है, जिनसे एसोसिएटेड है कुछ ब्यूटीफुल म्यूजिक। सितंबर के महीने में 3rd September इज द डे व्हेन जुनैद जमशेद वाज बोर्न। जुनैद जमशेद एक बहुत बड़ा नाम है पॉप फ्रीक्वेंसी पॉप सिंगिंग में इन पाकिस्तान, और बहुत सारे गाने उन्होंने बनाए, उन्होंने गाए। ना सिर्फ ये कि उन्होंने गाने गाए, जब उन्होंने अपने पाथ को चेंज किया, अपनी चॉइसेस को चेंज किया, तो देन उन्होंने हमें बहुत सारी नाथ्स दी, नशीद्स दी। मतलब ऑल इन ऑल आप ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसे शख्स थे जिनकी आवाज़ सच में मखमली थी। सो वी आर गोइंग टू पे दिस ट्रिब्यूट टू जुनैद जमशेद who was born on 3rd September 1964 and unfortunately we lost him very young. 7th December 2016 was the day when we lost him. Here is a tribute to Junaid Jamshed right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. This is Pop Frequency.

थोड़ा सा एतराज भी शुरू हुआ कि आपने कुछ जनरलाइज कर दिया है सांवली सलोनी को. तो फिर जुनैद जमशेद ने एक नया गाना बनाया था जिसका नाम था गोरी गोरी रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, इनसिक्योर नहीं हो, इस तरह की फिर उन्होंने गाना बनाया था जस्ट टू प्लीज दी अदर पार्ट ऑल्सो या अदर साइड ऑल्सो. अच्छा, अब जो गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ इसने तो तहलका मचा दिया था जब ये पॉप चार्ट्स पे रिलीज हुआ था, अबरार उल हक की आवाज. आज तक ये गाना जो है ये मेरे और आपके हम सबके फेवरेट लिस्ट में शामिल है. बट बिफोर आई प्ले दिस सॉन्ग आई मस्ट टेल यू दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स. दे ऑफर ट्रस्टेड टैक्स अकाउंटिंग, पेरोल, बुक कीपिंग एज वेल एज बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज. तो चाहे आप इंडिविजुअल हो, आपका कोई स्टार्टअप हो, आप एस्टैब्लिश बिजनेस के मालिक हो, एजी फिनटेक्स डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकता है. दे कैन हेल्प यू, गाइड यू एंड यू नो हेल्प यू मेक द राइट चॉइसेस इन financial decisions. Why don't you give them a call and ask any question if you have. 469-942-9888 469-942-9888 is that number. Ya phir aap unki website visit kar sakte hain, agfintax agfintax.com.

जुनैद जमशेद को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं. सितंबर इज द मंथ जब जुनैद जमशेद अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे. एंड अनबिलीवेबल पर्सनालिटी, विशिंग हिम यू नो जहाँ भी हों वो परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद करे. अब आगे बढ़ रहे हैं जी, और एक जबरदस्त मजे का गाना आपके लिए लाइन अप है. दिस इज द मोस्ट हैपनिंग नंबर. अच्छा भैया जी, ये जो सांवली सलोनी आपने सुना जब ये रिलीज हुआ था गाना, तो ये भी एक एंथम सा बन गया था. एवरी गर्ल वॉज सिंगिंग इट, एवरी बॉय वॉज सिंगिंग इट, एवरीबडी लव्ड इट. और फिर जो है वो

और इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ खूबसूरत गाने आपके लिए लाइन अप हैं और प्ले हो रहे हैं जी पॉप फ्रीक्वेंसी में। अगला गाना प्ले करते हुए आपको बताएं, अगर आप मूव कर रहे हैं या आपने अपने डॉक्यूमेंट्स शिप कराने हैं या फिर आपने कुछ बॉक्सेस मूव कराने हैं या फिर पूरा घर ही मूव कर रहे हैं आप, या गाड़ी भिजवानी है कहीं, चाहे इंडिया चाहे यूएस में कहीं या फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो SFL Worldwide is the place जहां आपको कॉन्टैक्ट करना है एंड दे विल हेल्प यू एंड मेक द प्रोसेस एब्सोल्युटली हैसल फ्री फॉर यू। SFLWorldwide.com यहां पे लॉग ऑन कीजिए, फाइंड आउट मोर अबाउट देम और साथ ही साथ उनकी उनको कॉल भी कर सकते हैं आप फॉर योर क्वेश्चंस। दैट इज 1-800-691-2335 1-800-691-2335। जुनैद जमशेद को दिया आज हमने ट्रिब्यूट, September is the month that he celebrated his birthday. This beautiful number जो अब मैं आपके लिए प्ले करने लगी हूँ, एक ऐसा कमाल का गाना था और जब ये आया था तो मतलब literally ऐसा लग रहा था जैसे वो बात कर रहे हैं, जैसे गाना तो है ही नहीं है और हर बंदे का ऐसा लगता था कि मैं ही बात कर रही हूँ, कि खासतौर पर लड़कों ने इसको अपना वो बात करने का तरीका ही बना लिया था कि वो कौन थी, तमाम शहर उसके हुस्न में गुम था, वो क्या गई कि फिर तो मुस्तकिल खिजा का मौसम था।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights be.
3: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
4: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
7: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
8: Ocho.
9: Hoko.
8: Ocho.
9: Hoko.
8: Ocho.
9: It's Hoko.
10: अरे बस भी करो यार।
9: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
10: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
1: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
11: ये तारा वो तारा हर तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
12: How may I help you?
5: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
12: Fear not, we have the perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
8: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration. From top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
13: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM.

पॉप फ्रीक्वेंसी ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण पे वक्त हो चला है जी टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करने का अकॉर्डिंग टू द टीआरपी चार्ट्स फॉर लास्ट वीक दैट इज ऑगस्ट 31st टिल सितंबर 6th. किन किन ड्रामास ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई, क्या टीआरपीज रही उनकी, मैंने और आपने उन्हें कितना पसंद किया, और अगर आपकी लिस्ट में उनमें से कोई ड्रामा नहीं है, खासतौर पर जो टॉप 4 के आजकल ट्रेंडिंग ड्रामास हैं वो तो किसी सूरत मिस नहीं किए जा सकते बिकॉज एवरी ड्रामा इज रॉकिंग. वी विल बिगिन डिस्कसिंग द लिस्ट राइट आफ्टर दिस song. Bani rahiye mere saath. The next half an hour is going to be absolutely amazing.

इस हैपनिंग गाने के साथ बात करते हैं कुछ हैपनिंग ड्रामों की जो के पिछले हफ्ते रहे चार्ट्स पे टॉप 10 में और मैंने और आपने उन्हें देखा पसंद किया. लेट्स बिगिन विद नंबर 10. नंबर 10 पे जो ड्रामा रहा 5.8 टीआरपी नंबर के साथ, दैट इज नाराज है जिंदगी. ये आता है जी जुलाई 28 से. एक्चुअली ये ड्रामा शुरू हुआ था हम टीवी पे मंडे टू फ्राइडे यानी कि 5 दिन. सो ओपरा आप इसे कह सकते हैं. रात को 9 बजे आता है. अलीजे शाह और सुभान अवान का ये ड्रामा. ड्रामे की जो कहानी है वो एक इमोशनल नैरेटिव है अबाउट लव एंड फैमिली बॉन्ड्स एंड रेजिलियंस और लाइफ की अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस. मिसबा अली सैयद ने इसे लिखा है और डायरेक्ट किया है शाह हुसैन ने. लोग जो पसंद कर रहे हैं इसे, मत खास इसके बारे में हम पढ़ते हैं या मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ कि वाई इज़ दिस ड्रामा अपीलिंग टू द ऑडियंस. तो पसंद करने की खास वजह है द लीड केमिस्ट्री, लीड जो हीरो हीरोइन है उनके दरमियान की केमिस्ट्री और ड्रामेटिक पोर्ट्रेयल बाय पॉपुलर स्टार्स लाइक अलीजे शाह एंड सुभान अवान. और इसी के साथ जो फोकस है वो फैमिली डायनामिक्स पे है. अनस्पोकन इमोशंस हैं, रियलिस्टिक रिलेशनशिप स्ट्रगल्स दिखाई गई हैं. सो इसीलिए पीपल आर कनेक्टिंग टू इट. नंबर 9 पे जो ड्रामा स्टैंड कर रहा है दैट इज बिल्कुल रीसेंट एंट्री है ये हमारे टॉप 10 चार्ट्स में. इससे पहले इस ड्रामे का अगर आपको याद हो कि मैंने 3 हफ्ते पहले आपको कहा था एक नया ड्रामा शुरू हुआ है दानिश तैमूर का. और दानिश तैमूर का जब कोई ड्रामा शुरू होता है तो उसने टॉप 10 चार्ट्स में तो आना ही होता है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. 1-2 हफ्तों में वो अपनी जगह बना ही लेता है. सो नश्तर ने फाइनली अपनी जगह बना ली है नंबर 9 स्पॉट पे 6 TRPs के साथ. 6.0 TRP इसकी रही इस लास्ट हफ्ते. August 21st से ये ड्रामा शुरू हुआ है. हर पल जियो जियो एंटरटेनमेंट पे आता है फ्राइडेज एंड सैटरडेज 8 PM. तो दानिश तैमूर, अनमोल बलोची, एक बड़ी अनोखी और नई लीड पेयरिंग है. हमने अनमोल को अब तक दानिश के साथ कभी पेयर्ड नहीं देखा. सो सबसे पहले तो लोगों को ये ताजगी जो है उसकी वो पसंद आ रही है उनके दरमियान की. उनके जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है उन दोनों के दरमियान, पीपल आर लाइकिंग इट. शो जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, पुलिंग इन मिलियंस ऑफ व्यूज पर एपिसोड. और इसमें कोई अनोखी बात नहीं है. हम जानते हैं कि दानिश तैमूर और दानिश तैमूर के फैन, जैसे कि फिरोज खान के फैंस उनके ड्रामे को कभी फ्लॉप नहीं होने देते, वैसे ही दानिश तैमूर के फैंस उनके ड्रामे को कभी फ्लॉप नहीं होने देते. ऑल्दो कहानी के अंदर थोड़ी सी पीपल आर हैविंग यू नो दो हिस्सों में बटी हुई है इस वक्त जो पब्लिक है कि ये क्या दिखाया जा रहा है और कुछ कह रहे हैं बिल्कुल कोई मसला नहीं है, देखते जाइए. तो इस तरह की थोड़ी सी व्यूज हमें सुनने को मिल रहे हैं. इसी के साथ नंबर एट पे जो ड्रामा रहा दैट इज ड्रामा सीरियल लीडर 2026 का. ये पॉलिटिकल रोमांस ड्रामा है जो कि हम टीवी पे आ रहा है. इट एक्सप्लोर्स पावर एंड एम्बिशन एंड हाई स्टेक्स एंड लवर्स टू एनिमी ड्रामा और उसके साथ फ्यूडल लॉर्ड्स और स्टूडेंट्स जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और उनको किस किस फेज से गुजरना पड़ता है जहां पावरफुल लोग बैठे हैं और एक नए किसी इंसान को ऊपर तक पहुंचना कितना मुश्किल है हमारी सोसाइटीज में. दैट इज द एंटायर यू नो स्टोरी ऑफ दिस. अली रजा एंड किंजा हाशमी are seen in this drama. Ye hue aapke liye 10 9 8. After we come back from this song we will tell you 7 6 and 5.

एंड विद दैट वी आर ऑन द ड्रामा नंबर 7 जो लिस्ट पे ट्रेंड किया लास्ट वीक, और 7वें नंबर पे ड्रामा रहा तपिश. दिस इज एयरिंग ऑन जियो एंटरटेनमेंट. आता है जी मंडेज एंड ट्यूजडेज 8 PM इन द इवनिंग. और मुनीब भट्ट और लाइबा खान हमें इस ड्रामे में नजर आए. प्लॉट जो है वो लाइबा के गिर्द रिवॉल्व करता है. शी इज अ वेरी काइंड हार्टेड गर्ल जो कि एंगेज्ड और मैरिड हैं टू हर कजन एंड क्लोज फ्रेंड माज, और उनकी लाइफ किस तरह अपसाइड डाउन हो जाती है जब एक नई शख्स उनकी जिंदगी में आती है. वही कहानी तो कुछ वैसी ही है. लेकिन लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इंटेंस नैरेटिव ऑफ द प्लॉट. ऑडियंस एंजॉय द फास्ट पेस हाई वोल्टेज प्लॉट शिफ्ट्स दैट मूव अवे फ्रॉम कन्वेंशनल फैमिली पॉलिटिक्स इनटू अ डार्क पैशनेट लव ट्रायंगल. तो मतलब कुछ जो है डिफरेंट उनको देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए लोग उसको पसंद कर रहे हैं. लीड केमिस्ट्री भी बहुत पसंद की जा रही है और हाई व्यूअरशिप मिल रही है. खास तौर पर जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो आजकल के ड्रामास को हिट या फ्लॉप बना रहे हैं जी. सो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा देखा जा रहा है इस ड्रामे को. नंबर 6 पे कौन सा ड्रामा रहा? दैट इज टूटा हुआ दिल, ARY डिजिटल. डेली आता है ये. दिस इज काइंड ऑफ अ डेली सोप, 7 बजे शाम को. और इसमें नजर आए हैं जी आगा अली, साथ ही साथ नाजिश जहांगीर और रेज अहमद. ये हैं जी लीड रोल्स में. और रिटन बाय सादिया अख्तर. ये ड्रामा फोकस करता है हार्ट ब्रेकिंग और इमोशनली हैवी नैरेटिव के ऊपर. कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप डायनामिक्स है, पर्सनल सैक्रिफाइसेस हैं, हाई स्टेक इमोशनल यू नो कम्युनिकेशन है बिटवीन द सेंट्रल कैरेक्टर्स, और भी बहुत कुछ है. एंगेजिंग पेस इज वॉट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, एंड वाई पीपल आर लाइकिंग इट इज बिकॉज इट्स वेरी एंगेजिंग. इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज और प्राइम टाइम सक्सेस है. 7 बजे बहुत ज़्यादा इस ड्रामे को देखा जा रहा है. तो ये हुआ जी आपके लिए ड्रामा नंबर 6. और अब ड्रामा नंबर 5 के साथ हम बढ़ रहे हैं अगले गाने की तरफ. ड्रामा नंबर 5 रहा मैं तेरा. मैं तेरा बहुत अरसे से 5वें 6वें नंबर पे अपनी जगह को बनाए हुए है. मंडे थ्रू फ्राइडे 9 बजे शाम को आता है, यानी कि डेली एपिसोड्स आती हैं इसकी ARY डिजिटल पे. वैसे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा एवरी डे. और अरीज खान एज फराज, युसरा इरफान, घाना अली इसके अंदर हमें नजर आ रही हैं. स्टोरी जो है वो दो फैमिलीज ही मुझे बेसिकली नज़र आ रही हैं, और उन दो फैमिलीज में जो शादी ब्याह हुए हुए हैं आपस में, और किस तरह से उस मतलब कई बार तो मुझे वो मैं तेरा देख के परेशानी शुरू हो जाती है कि क्या मुसीबत है, बस भी करो, कितना ड्रामा है यहाँ पे. तो बहरहाल टू ईच देयर ओन. अगर आप थोड़ा सा मुझे मेरे नज़दीक वो जो दूसरे वाले बंदे हैं ना, वो वायलेंस ज़रा ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा मारते, थोड़ा परेशानी हो जाती है मुझे. एनीवेज़ बट पीपल आर लाइकिंग इट बिकॉज ऑफ इट्स एंगेजिंग पेस. मंडे थ्रू फ्राइडे आता है, डेली सीरियल है ऑफकोर्स, तो प्लॉट बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है. आप जानते हैं डेली सोप्स का यही एक खासा होता है, इफ दे वांट टू ग्रिप द ऑडियंस. स्ट्रांग परफॉर्मेंसेज है, ये तो बात है, सबकी बड़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस है. स्पेशली वो जो लड़की बेचारी 24 घंटे मार खाती रहती, तौबा तौबा मार खाती रहती है, उसकी तो बेहतरीन परफॉर्मेंस है. और बड़ी मतलब लोग ये कह रहे हैं कि इट्स वेरी रिलेटेबल एंड रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप ड्रामा है, सो पीपल आर लाइकिंग इट. सो दैट वॉज द टॉप 5 तक हम अब पहुंच गए हैं. जब हम ब्रेक से वापस आए, गाने से वापस आएंगे, तो मैं आपको 4, 3, 2 एंड 1 के बारे में बताऊंगी.

अल्टीमेट पॉजिटिविटी, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, जंगलों में भी रास्ते तो हैं, मिलो तो सही. तो मुझे लगता है कि ये गाना इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी, के ऑल यू हैव टू डू इज टेक दैट वन स्टेप, यू माइट जस्ट बी वेरी क्लोज टू योर हैप्पीनेस. और इसी थॉट के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे, द टॉप फोर ड्रामास तक आ चुके हैं. अच्छा, यूजली मैं टॉप थ्री बताने में आपको बहुत एक्साइटेड होती थी, लेकिन पिछले तीन चार हफ्तों से टॉप फोर ड्रामाज आर एब्सोल्युटली एक्साइटिंग. दो एक दो पॉइंट से जो है वो तीन और चार के दरमियान की रेस लगी हुई है, और वो भी इसलिए लगी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ड्रामे एक ही टाइम पे एक ही दिन में आते हैं. एक आता है ARY डिजिटल पे और एक आता है जी हम टीवी पे. तो इसीलिए दोनों आते हैं जुम्मा और हफ्ता की शाम, विच इज फ्राइडे एंड सैटरडे शाम 8 बजे. तो दोनों का मुकाबला इज बेइंतहा सख्त, और दोनों ड्रामे लिखे भी उमेरा अहमद ने हैं. जी हाँ, नंबर फोर पे जो ड्रामा इस हफ्ते ट्रेंड किया, दैट इज दरे निजात विद 11.1 TRP, और नंबर थ्री पे रहा आपकी इज्जत विद 12.5 TRP. लेट्स टॉक अबाउट दरे निजात फर्स्ट. तो दरे निजात जी ARY डिजिटल पे आता है, और शहरियार मुनव्वर अबू बकर का रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि दुरफिशा सलीम दरियाब का रोल प्ले कर रही हैं, नमीर नवाज खान जामिल का रोल प्ले कर रहे हैं. ये तो हुए मेन कैरेक्टर्स, साथ साथ बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो सपोर्टिंग कास्ट है, बट दे आर द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ द ड्रामा, जैसे कि सानिया सईद, रुमैसा खान, सबा हमीद, नादिया अफगन, महमूद असलम, फरहान ताहिर, एक से बढ़कर एक कास्ट है इस ड्रामे की, और हर बंदा ही बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है. उमेरा अहमद ने ड्रामा लिखा है तो आप जानते हैं कि रिश्तों का ताना बाना बनेगा भी, उलझेगा भी, टूटेगा भी, लड़ाइयाँ भी होंगी, और कहीं ना कहीं इंसान जो है वो अपने ऑलमाइटी से जाके कनेक्ट जरूर करेगा. दैट इज द खासा ऑफ उमेरा अहमद राइटिंग. एंड इस ड्रामे में भी हम कुछ ऐसा ही देख रहे हैं, बल्कि इस ड्रामे में तो बहुत जोर से देख रहे हैं, क्योंकि जामिल का कैरेक्टर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगा है. और अगर आपने ये ड्रामा देखना शुरू नहीं किया तो जरूर जरूर जरूर फॉलो कीजिए. दरे निजात इज वन ऑफ दोज ड्रामास दैट यू शुड नॉट मिस. इफ यू आर अ पाकिस्तानी ड्रामा फैन, देन दिस इज डेफिनेटली नॉट द वन यू वांट टू मिस. सो स्टार्ट वॉचिंग. 11 एपिसोड्स आ चुकी हैं, और बड़ी मीमें बनने लगी हैं शहरियार मुनव्वर को लेकर इस ड्रामे में. अबू बकर का जिन्होंने रोल किया है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, हर बंदा उनके कैरेक्टर को पसंद कर रहा है. सारे सब कॉन्टिनेंट में उनके कैरेक्टर को जो ड्रामा देखते हैं पाकिस्तानी वो पसंद कर रहे हैं, और सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं, कहाँ से ढूंढ के लाओ ऐसे लड़के, कौन है, कौन सी जनरेशन का लड़का है ये, हर लड़की को एक ऐसा लड़का चाहिए. एनीवेज, तो ये हुई आपके लिए बात दरे निजात की. अब बात हो रही है आपकी इज्जत की, जो कि एक बार फिर फ्राइडेज एंड सैटरडेज शाम 8 बजे आता है हम टीवी पे. आपकी इज्जत की 16वीं एपिसोड ने टीवी को तोड़ दिया है, इंटरनेट को तोड़ दिया है. चारों तरफ 16वीं एपिसोड का चर्चा मचा हुआ है. एवरीबॉडी इज गोइंग क्रेजी ओवर द एक्टिंग ऑफ उर्वा हुसैन. उर्वा हुसैन ने एक बेहतरीन पोर्ट्रेल दिया एक डिजेक्टेड, एक कम्प्लीटली ब्रोकन औरत का, अ वाइफ का, औरत से ज़्यादा मैं बोलूँगी अ वाइफ का, जो आपने अगर 16वीं एपिसोड खास तौर पे नहीं देखी, 15वीं की एंड से जो ये शुरू होता है द हस्बैंड वाइफ्स कन्फ्रंटेशन इन द जेल रूम, वहाँ जो वो कन्फ्रंटेशन शुरू होती है वो पूरी 16वीं एपिसोड तक जाती है. पूरी 16वीं एपिसोड में कुछ कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, लेकिन भाई कमाल कर दिया है उर्वा हुसैन ने, और उनकी एक्टिंग, जिस तरह से उन्होंने अपनी ख्वातीन के दर्द को अपनी एक्टिंग से दिखाया है, वो हर औरत रिलेट कर रही है, हर फीमेल इज रिलेटिंग टू इट, द मीम्स आर कमिंग, द पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, हर तरह का, वो कहते हैं ना आपको डाइसेक्शन हो चुका है उनके इस 16वीं एपिसोड का. सो इफ यू हैवंट वॉच्ड आपकी इज्जत, डू वॉच इट, इट इज एन एब्सोल्युटली ट्रीट टू वॉच. हियर इज, और ये जो उसका ऑफिशियल साउंड ट्रैक है, ये भी एक एब्सोल्यूट ट्रीट है अली जफर की आवाज में.

0: जी हाँ, अली जफर की इस आवाज़ ने इस गाने को एक नया रुख दिया, ड्रामे को एक नया रुख दिया, खास तौर पे जब बैकग्राउंड में ये ड्रामा प्ले होता है, व्हेन जो हमारे लीड हीरो हैं वो अपनी पुरानी यादें याद कर रहे होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा, वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें कुछ मोमेंट्स पे हिट करती हैं. सो दिस इज़ डेफिनेटली दैट सॉन्ग दैट हिट्स. ओके, नंबर वन और नंबर टू ट्रेंडिंग ड्रामा के साथ हम इस सेगमेंट को कर रहे हैं ख़त्म. नंबर दो पे जो ड्रामा ट्रेंड कर रहा है वो है बस तेरा साथ हो. दिस इज़ ऑन ARY डिजिटल, मंडेज और ट्यूजडेज को आता है 8 बजे शाम विद 14.5 TRP. एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट शो, अमेजिंग एक्टिंग बाय ईच एंड एवरी परफॉर्मर इन द शो. फरहान सईद हो या सना जावेद हो या फिर जोया नासिर हो, सबा हमीद हो, सलमान शाहिद हो, हारिस वहीद हो, जो भी इस ड्रामे में है उसने कमाल किया है. अगर आप बहुत ही क्रूशल मोमेंट पे ये ड्रामा आया हुआ है, जेल चले गए हैं ताया चाचा जी और अभी जो हमारे हीरो हैं वो उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है. और पहले नंबर पे जिस ड्रामे ने अपनी जगह को बरकरार रखा वो है जी जंजीरे विद 15.4 TRPs. जंजीरे में मुझे मालूम नहीं है कि अब आगे मजीद क्या दिखाना बाकी रह गया है. मेरा ख्याल है सबको तो इंसाफ मिल गया, मकाफात अमल भी हो चुका है, बहुत सारे लोग मर भी चुके, मतलब ऑलमोस्ट सभी मर चुके हैं. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब आने वाली एपिसोड्स में क्या होने वाला है, बिकॉज मेरा तो ख्याल था कि बस खत्म हो जाना चाहिए इस ड्रामे को. सो बट पीपल आर लविंग इट एंड इट वाज ट्रेंडिंग एट नंबर वन स्पॉट फॉर दिस वीक. ये था आपके लिए द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज ऑफ पाकिस्तान फॉर लास्ट वीक. नेक्स्ट वीक 3:30 to 4 वी विल कंटिन्यू विद द सेम.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
11: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: आज से आप स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कल हिंदी हिंदी बोल।
16: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. मैं हूँ नवनीता खेमका, रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी। Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, मेरे दोस्तों, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
17: Call नवनीता खेमका at 347-449-4242.
15: फोन उठाइए, नंबर दबाइए 3474494242।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: We need to talk.
2: अब क्या हुआ?
1: Nothing. It's not you.
2: Oh no.
1: It's the distance.
2: Distance? We live 10 minutes apart.
1: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
0: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches, and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार. खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
5: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है.
6: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
7: तुमसे मिलके दिल का है.
6: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
8: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM.

0: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. आप सुन रहे हैं Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran, 2:30 PM till 5 PM. I'm here with you daily, Monday through Friday. और अब वक्त आ चला है जब मैं आपको कनेक्ट करने वाली हूँ हमारे One World Business Capital सेगमेंट के साथ. Experience, expertise and ethical business practices is what One World Business Capital and Mr. Shahid Panjwani is all about. हमें शाहिद पंजवानी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि how can One World Business Capital help us build our business as well as make some right financial choices. Let's welcome him on the airwaves of Fun Asia. Good afternoon, Shahid ji. How are you doing?
1: I'm doing great. Good afternoon to you and all listeners.
0: Thank you so much for connecting with us this afternoon. Please begin by telling our listeners, Shahid ji, who are listening to you probably for the first time, what is One World Business Capital and what are your services and how can you help?
1: One World Business Capital, as the name says, that business capital is what we do. बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस खरीदना है, फ्रेंचाइज शुरू करनी है, रेंटल प्रॉपर्टी खरीदनी है, वी कैन हेल्प यू गेट अ लोन टू डू दैट. एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स, दे नीड कैपिटल टू ग्रो, एक्सपेंशन है, इक्विपमेंट है, इन्वेंटोरी है, वर्किंग कैपिटल है, और मे बी जस्ट प्लेन रीफाइनेंस, वी कैन हेल्प यू विद दैट टू. एट द सेम टाइम मेनी पीपल राइट नाउ आर वॉन्टिंग टू कैश आउट रीफाइनेंस फ्रॉम द इक्विटी ऑफ देयर प्रॉपर्टी, वी कैन हेल्प यू विद दैट टू. सो आउट एंड आउट कमर्शियल लोन, बिजनेस लोन, जो भी फाइनेंस आपको आपके एक्सपेंशन के लिए या बिजनेस शुरू करने के लिए, दैट इज व्हाट वन वर्ल्ड कैपिटल, वन वर्ल्ड बिजनेस कैपिटल डज.
0: परफेक्ट. एंड इस सारे में अगर शायद जी किसी को नया बिजनेस शुरू करना है, लेट्स फोकस ऑन दैट. सो व्हाट आर द लोन ऑप्शंस एंड यू नो व्हाट इज द रोल ऑफ वन वर्ल्ड बिजनेस कैपिटल?
1: टू प्राइमरी लोन ऑप्शंस दैट वी हेल्प विद, एसबीए लोन्स एंड कन्वेंशनल लोन्स. सो आई विल ब्रीफ में दोनों के बारे में दे दूंगा. एसबीए से क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम जब किसी को बिजनेस खरीदना है, देयर गोल इज दैट कि कम से कम पैसे में मेरा काम शुरू हो जाए. लोवेस्ट डाउन पेमेंट पॉसिबल इज व्हाट आई वांट, देन एसबीए इज द राउट टू गो. लेट्स से इफ योर टोटल प्रोजेक्ट इज $500,000, ऑल यू नीड टू डू इज पुट $50,000 डाउन और रेस्ट ऑफ द मनी कैन बी फाइनेंस्ड. And we can help you get the SBA loan. And on top of that, अभी हम लेटली हम क्या कर रहे हैं कि इस लोन जो आप बिजनेस खरीदने के लिए जो लोन करते हैं उसके साथ साथ में हम आपको वर्किंग कैपिटल भी देते हैं. तो अगर $50,000 डाउन दिया और 4,500 का लोन हो गया, ऑन टॉप ऑफ दैट विल टर्न अराउंड एंड गिव यू मे बी अनदर 25K एंड 50K इन वर्किंग कैपिटल. तो जो भी आपने डाउन दिया, दैट कम्स बैक टू यू इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड यू एंडेड अप बाइंग द बिजनेस विथ $0 आउट ऑफ पॉकेट. सेकेंड ऑप्शन इज कन्वेंशनल लोन, which requires a little bit higher down payment. These are not the only two options. There are several other options. K one-on-one consultation, agar koi bhi explore kar raha hai business kharidna, please call us. We can help you with business purpose home equity. Aapki ghar mein property mein equity hai ya commercial property mein equity hai, we can help with it. Ek aur point jo aaj kisi ne mujhe sawal pucha, call kiya tha radio pe sunke ki aapki fees kya hai. To excellent question, aur ye humne kabhi bhi on air cover nahi kiya. We do not charge any fees on SBA loans. Many brokers out there who were commercial mortgage brokers, jo aam taur pe fees charge hoti hai. So I want to make it clear, there is no fee from our side to the client, to the borrower. We work with the bank, simply bank pays us.
0: That sounds wonderful. To Shahid ji, saath saath ye bhi bata dijiye ki what is the best way to get in touch with you and what about the websites that people can log on to?
1: 817-786-3338. 817-786-3338. This line directly comes to me and the website is thesbaloanexperts.com, SBA, the Small Business Administration, and the other website is oneworldbusinesscapital.com.
0: There you go, oneworldbusinesscapital.com या फिर thesbaloanexperts.com is where you need to log on, या फिर 817-786-3338 is where you can directly contact Shahid Panjwani ji with all your questions and concerns. Thank you so much for connecting with us this afternoon, Shahid ji. We will talk to you next time.
1: Thank you.
0: Have a good evening.

ट्रॉफी ट्रैक्स सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में. ट्रॉफी ट्रैक्स में आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ अवार्ड विनिंग फिल्मों के अवार्ड विनिंग गाने. ये जो गाना आप सुन रहे थे, दिस इज टेकन फ्रॉम द मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई. फिल्म फेयर की चार, देखिए पांच नॉमिनेशंस इस फिल्म ने पाई. कोई जीता नहीं अवार्ड, बट नॉमिनेशंस पाना इज इक्वलेंट टू यू नो ऑलमोस्ट अ विन. सो बेस्ट एक्टर की नॉमिनेशन अजय देवगन ने पाई, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की इमरान हाशमी ने, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की पराची देसाई ने, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की प्रीतम ने नॉमिनेशन पाई और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल की मोहित चौहान ने नॉमिनेशन पाई फॉर माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग पीलू. अच्छा जी, अब अगला गाना जो मैं आपके लिए प्ले करने लगी हूं, दैट इज टेकन फ्रॉम अ मूवी जिसने बेइंतहा बहुत सारी मतलब बेइंतहा नॉमिनेशंस मिली उन्हें, चाहे वो फिल्म फेयर की नॉमिनेशंस हो, चाहे वो और अवार्ड्स आईफा की नॉमिनेशंस हो, या फिर वो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स की नॉमिनेशन हो. ये मूवी जो है इसका नाम है बर्फी. बर्फी के हवाले से आपसे एक गिव अवे का सवाल लेके आई हूँ, क्योंकि अब जो गाना आपके लिए प्ले करूँगी उसके साथ आपको मुझे कॉल करके बताना है कि बर्फी के लिए म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने बर्फी के गाने दिए उनको मिला था फिल्म फेयर अवार्ड. आपको मुझे बताना है कौन थे बर्फी के म्यूजिक डायरेक्टर. लेकिन उससे पहले ये तो बताऊँ आपको कि आप जीतिएगा क्या. आप जीतेंगे $10 का गिफ्ट कार्ड, एक्चुअली गिफ्ट कार्ड नहीं, $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. तो आप जाएंगे चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन, ये लेके आए हैं आपके लिए ये गिव अवे. यू विल गो टू चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन, दे आर लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन. वहां पे आप $50 का खाना खाएंगे तो आपको $10 ऑफ मिलेगा. आप उनकी वेबसाइट भी चेकआउट कीजिए, मेन्यू पहले से देख के जाइए कि आपको क्या खाना है. दिस इज chandigarhbites.com. और एक और भी आपको मजे की बात बताऊं, उनकी जो लंच थालीज होती हैं वो बड़ी स्पेशल होती हैं जी. एक कोई चीज़ आपको रिपीट नहीं मिलती. अगर आप पांचों दिन भी वहाँ लंच खाने जाएंगे या सारे दिन भी खाएंगे, मंडे टू फ्राइडे लगता है उनकी ये लंच थाली, तो आपको कुछ ना कुछ नया उनकी थाली में ज़रूर मिलेगा. सो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, मज़े की बात है चंडीगढ़ बाइट्स एंड एलन की. अच्छा, अब आप जीत सकते हैं ये $10 का गिफ्ट की ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. गाना मूवी बर्फी से आपके लिए प्ले कर रही हूँ, ट्रॉफी ट्रैक सुन रहे हैं आप. मुझे बताइए हु वॉज द अवार्ड विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म.

आप सबने बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया जी. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फोन कॉल्स का. योर पार्टिसिपेशन विच मैटर्स, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू मी. चंडीगढ़ बाइट्स आपके लिए ये $10 ऑफ लेके आए थे, $50 और मोर के आपके डाइन इन बिल पे, लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन. एंड थैंक यू, आप सबने सही जवाब दिया. प्रीतम चक्रवर्ती, जी हाँ, प्रीतम ने जीता था इस मूवी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड. और आपको मैं बताऊं कि अपने करियर में, जो कि अराउंड 20 साल पे स्पैन करता है, प्रीतम ने अराउंड 55 अवार्ड्स जीते हैं लोकली एज वेल एज ग्लोबली, जिसमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड इंक्लूडेड है फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन और 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स इंक्लूडेड हैं फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक इंक्लूडेड हैं, 5 आईफा अवार्ड्स इंक्लूडेड हैं, 3 जी सिने अवार्ड्स इंक्लूडेड हैं, और लिस्ट खत्म नहीं हो रही, चलती ही जा रही है. तो जी प्रीतम इज द करेक्ट आंसर. और जैसे आप जानते हैं, जिस सीक्वेंस में आपकी कॉल आती है वो नंबर मैप के फॉर्मूले में डालती हूं मैं, और आपकी किस्मत ही आपकी विन का फैसला करती है, बिकॉज आप सब इतने इंपॉर्टेंट और इतने प्यारे हैं कि मैं एक बंदे को पिक नहीं कर सकती जी. बट क्या करें, वन विनर हैज टू बी डिसाइडेड. एंड आज के हमारे लकी विनर हैं कॉलर नंबर 1, दैट इज निलाद्री. निलाद्री, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव 7 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे पास अभी एक और गिव अवे है आपके लिए, और वो गिव अवे तो हमेशा ही गिव अवेज का हाईलाइट होता है. बने रहिए मेरे साथ.

और अगर आप क्रेव कर रही हैं वो फ्लेवर्स जिनके साथ आप पले बड़े हैं, तो जी होको, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड फूड ब्रांड्स, इज नाउ ओपन इन फ्रिस्को, टेक्सास, एट 2693 प्रेस्टन रोड, स्वीट 1000, फ्रिस्को. जी हाँ, आप जाइए, एंजॉय कीजिए अपने फेवरेट्स, जैसे कि चना पूरी हुआ, सैंडविचेस हुए, डिलिशियस करीज हैं, और हाउ कैन यू फॉरगेट देयर लेजेंडरी होको कोल्ड कोको, विच एवरीवन स्वेयर्स बाय, यू कैन नॉट मिस इट. जाइए होको और जरूर उनका मेन्यू चेकआउट कर लीजिए, उनके स्पेशल्स देखिए, उनकी वेबसाइट पर लॉग ऑन करके hoko.us, विच इज HOCCO, hoko.us. और उनका मंत्र बड़ा सिंपल है जी, कम हंग्री एंड लीव विद द टेस्ट ऑफ इंडिया. और अब मैं आपको बताने लगी हूँ दो स्पेशल्स जो उनके लगे हुए हैं. सबसे पहले, इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट्स का स्पेशल है. अगर आपके पास वैलिड स्टूडेंट आईडी है गाइस, तो यू कैन गेट 20% ऑफ when you go and eat at Hoko. So that is a brilliant deal for you. Or now the next deal is for the employees on lunch packs. Ye deal aayi hai with your valid employee ID. Monday through Friday during office hours, you can get a 20% discount as well. So bilkul mat sochiye agli baar lunch time, where are you going? Hoko, of course.

0: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इंश्योर होम लोन्स और उमर ख्वाजा लेकर आ रहे हैं आपके लिए मेक योर ओन गणेशा विद फन एशिया नेटवर्क. तो इस गणेश चतुर्थी Children ages 5 to 12 can create their own clay Ganesha at the fun-filled workshop that is happening on Saturday, September the 12th. Spots limited hain. Aapko is website pe jaake register karna hai ganesha.funasia.net. Aaj hi register kijiye. 5 to 12 years of age ke bache can make their own Ganesha, clay Ganesha. ganesha.funasia.net.
1: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
2: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
4: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
5: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
6: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
7: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
8: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
9: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaiser Way location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनोक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
10: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
11: हाँ.
10: घर रिलोकेट करनी है?
11: हाँ.
10: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
11: हाँ भाई हाँ.
10: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
12: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
13: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
14: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
13: कैसे?
14: पेज 3 ईटरी?
13: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
14: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
13: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
15: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
16: Kya matlab?
17: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
17: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: Ab to karna hi padega, madam.
18: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas.
11: Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye, to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
19: कितने आदमी थे?
20: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।
1: Thank you so much for tuning in to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is the right place जहां आप मौजूद हैं afternoon drive time with सुनहरी किरण में. बस हमारा around 22-23 मिनट बाकी हैं. 2:30 बजे से 5 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद होती हूं. Every day, Monday through Friday, every weekday मेरा और आपका साथ रहता है. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर जहां आप मुझे कॉल करके शेयर करते हैं, अपना पसंद के गाने बताते हैं, कोई बात आपने शेयर करनी है, किसी को कुछ डेडिकेट करना है. Of course, we are all ears. और अब मैं लेके आई हूं आपके लिए आज का वो कहती हूँ ना, गिव अवेज का भी एक किंग होता है, एक बादशाह होता है, तो ये गिव अवेज का बादशाह होता है हमेशा. कल है, 2 दिन बाद 11 को है जी ये कॉन्सर्ट. कुमार सानू आ रहे हैं लाइव, और लाइव का मतलब तो आप जानते हैं कि आपको मौका मिलेगा कुमार सानू को गाते हुए, परफॉर्म करते हुए देखने का. 90s का वो नॉस्टैल्जिक म्यूजिक जिसने हमें 90s में नए नए हीरोज आ रहे थे, नई नई फिल्में आ रही थी, नई नई कहानियां आ रही थी, एंग्री यंग मैन से रोमांटिक हीरोज की तरफ का सफर जारी था, और उसमें बहुत बड़ी रोल प्ले किया था कुमार सानू साहब की आवाज ने. चाहे अजय देवगन हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, हर बंदे के लिए कुमार सानू ने गाना गाया, और एक एक दिन में 28 गाने गा के गिनीज रिकॉर्ड भी बनाया, जो कि कल मैंने आपसे सवाल किया था या गिव अवे के लिए आप सबने मुझे बताया था. आज फिर आपके लिए एक गिव अवे लाई हूं. सबसे पहले आपको बताऊं, दिस इज हैपनिंग अनफॉरगेटेबल 90s कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो. और पार्किंग बिल्कुल फ्री है, मीट एंड ग्रीट के ऑप्शंस भी हैं. सो व्हेन यू आर बाइंग योर टिकट बाय लॉगिंग ऑन टू eventbrite.com या फिर sulekhatickets.com, तो मीट एंड ग्रीट की ऑप्शंस देख लीजिएगा. यू माइट जस्ट वांट टू बाय देम. वंस अगेन, टिकट्स अवेलेबल हैं eventbrite.com और sulekhatickets.com पे. कोई आपका जहन में सवाल है, एनी क्वेश्चन दैट यू हैव, सो हियर इज अ नंबर दैट यू कैन कॉल. दिस इज 214-869-2668. 214-869-2668 is the number presented. This event is presented to you by Focus Entertainment and Fortune Group. So, Kumar Sanu, live in concert, unforgettable 90s ke saath. To, ab jo hai, main aapke liye gaana play karne lagi hoon. Aur aapko mujhe ye batana hai, ye to main aapko bata deti hoon ki is gaane ke liye Kumar Sanu ji ne paai thi Filmfare Awards ki nomination. Unfortunately, he didn't win the award, but he did get the nomination for Filmfare अवार्ड फॉर दिस सॉन्ग. बहुत सिंपल सवाल है कि आप मुझे ये बता दीजिए कि इस गाने को डायरेक्ट, यानी कि इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे. मतलब और कितना सिंपल करूं. अभी से आपको बता देती हूं जी कि आप जिस सीक्वेंस में मुझे कॉल करेंगे वो सारे नंबर्स असाइन होंगे आपको, मैथ के फॉर्मूले में जाएंगे, और उसके बाद एक लकी विनर असाइन होगा. आपकी लक आपके टिकट का फैसला करने वाली है. सो बट जस्ट दैट वी हैव वन लकी विनर. इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर का नाम बताइए जिस गाने के लिए कुमार सानू ने पाई थी नॉमिनेशन फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल.

मगर कुमार सानू के कॉन्सर्ट का टिकट आपके लिए लेकर आई थी जी, और मुकाबला बहुत सख्त है। फोन लाइंस अभी भी बज कर रही हैं। मैंने इस सारे गाने के दौरान अराउंड 12 से 13 फोन कॉल्स रिसीव की, आप सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सबसे पहले तो आपको करेक्ट आंसर बता दें, नदीम श्रवण ने ये म्यूजिक दिया था, और डेफिनेटली ये वो 90s का दौर था जब नदीम श्रवण जो है वो पीक पे थे अपने। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि जब कल आपके लिए जो है वो 90s का बॉलीवुड लेके आऊंगी तो कुछ हम नदीम श्रवण के गानों के ऊपर बात करेंगे। इट विल बी अ ट्रीट फॉर मी एंड यू एज वेल। सो एनीवेज, बैक टू द विनर्स। आप सबके फोन कॉल्स का शुक्रिया, तमाम लोगों ने जिन्होंने हमें कॉल किया और मैथ के फॉर्मूले ने हमें जवाब दे दिया है। और हमारे जो लकी विनर हैं आज के वो हैं जी कॉलर नंबर 5, विच इज नंदिनी। कॉलर नंबर 5 नंदिनी, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने कुमार सानू का ये एक टिकट। आपकी ईमेल आईडी मेरे पास है, हम आपका नाम और नंबर भेज देंगे आगे, और फिर प्लीज लुक आउट फॉर दैट ईमेल दैट यू विल रिसीव रिगार्डिंग योर टिकट। और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्या करूं जी, मेरा बस चले तो मैं आप सबको टिकट दे दूं, बट देयर इज ओनली वन विनर दैट आई कैन पिक, एंड एक्चुअली वो भी मैं खुद नहीं करती, मैथ का फॉर्मूला आपकी लक डिसाइड करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड ऑलवेज बींग अ ब्रिलियंट स्पोर्ट।

0: और इसी के साथ टाइम आ गया है जब मैं आपको कनेक्ट करने वाली हूँ हमारे मॉर्गेज लोन सेगमेंट के साथ विद मिस्टर हुसैन पंजवानी फ्रॉम ड्रीम होम मॉर्गेज, डिविजन ऑफ ब्राजर्स नेशनल बैंक. और ड्रीम होम कमिटेड है अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करने के लिए लोएस्ट रेट्स इन द अवेलेबल इन रियल एस्टेट इन योर एरिया. फर्स्ट टाइम होम बायर हैं आप, कंसोलिडेट कर रहे हैं आप, जो कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ड्रीम होम मॉर्गेज इज हेयर टू हेल्प. वी हैव मिस्टर हुसैन पंजवानी विद अस, जो आपको बताएंगे कि हाउ कैन ड्रीम होम मॉर्गेज हेल्प यू मेक द राइट चॉइसेस. लेट्स वेलकम हिम ऑन द एयरवेव्स ऑफ एशिया. गुड आफ्टरनून हुसैन जी, हाउ आर यू डूइंग?
1: Good afternoon, ma'am. I'm doing great. How are you doing? And I hope all your listeners are doing fine, enjoying this fabulous Texas weather.
0: Absolutely. Thank you so much, Sanji, for connecting with us this afternoon. Please begin by telling our listeners, as always, koi humare saath naya connect kar raha hai. I want them to know, what is Dream Home Mortgage and how can you help?
1: So Dream Home is all about real estate, whether it's commercial or residential. At Dream Home, we've been in business since 1998. In the mortgage business since 97, but Dream Home itself, 1998. So I think, Kiran ji, Dream Home aapse thoda saal zyada purana hai.
0: Theek hai.
1: So, and basically, we do anything to do with real estate, whether you're buying, selling, रेसिडेंशियल और कमर्शियल. और हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स है. अभी फिलहाल द बेस्ट थिंग राइट नाउ एट दिस मोमेंट इज एक तो जो ग्रांट है, अभी एज आज पहला कल पहला दिन था जो ये क्वार्टर का ग्रांट उन्होंने पहले से शुरू कर दिया. यूजली इट्स बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर, बट फॉर दिस क्वार्टर दे हैव स्टार्टेड ऑलरेडी. ये फोर्थ क्वार्टर के लिए उन्होंने रिलीज कर दिया है. तो इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम होम बायर, अगर आप सोच रहे हो घर बाय करने का, एंड अगर आपकी फैमिली ऑफ फोर है, आपकी हाउसिंग हाउस होल्ड इनकम, रिमेंबर दिस इज हाउस होल्ड इनकम, नॉट जस्ट बोरोअर्स इनकम, इज अराउंड 74,000-75,000, यू कैन क्वालिफाई फॉर दिस ग्रांट. अगेन ये मैं डिसाइड नहीं करता, देर इज अ चार्ट दैट इनकम चार्ट दैट इज इशूड बाय दिस गवर्नमेंट. सो बेस्ड ऑन दैट you can qualify. Ye program ke liye dusra jo do requirement hai, one is you have to be a first time home buyer, and this has to be your primary residence, and there can be no other co-signer with you. Your spouse can be on the loan with you, but you cannot have a non-occupant co-signer. To agar aapka ye primary residence hai, first time home buyer ho, so do call us. You might qualify for the grant, and there is no application fee, and this is all वेरी ट्रांसपेरेंट. किरण जी, इस पर सबसे ये सब ट्रांसपेरेंट है. यू वी कैन टेल यू अभी आज की तारीख में इतने फंड अवेलेबल है, वाई यू क्वालिफाई, वाई यू डोंट क्वालिफाई, एंड यू हैव एक्सेस टू दैट इनकम चार्ट ऑल्सो. इट्स अ मीडियन इनकम हाउस होल्ड, मीडियन इनकम फॉर नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स लिविंग इन दैट हाउस. और जो दूसरा एक है डॉक्टर्स के लिए, फिजिशियंस के लिए, इफ यू आर बाइंग योर प्राइमरी रेसिडेंस, अगेन यू डोंट हैव टू बी अ फर्स्ट टाइम होम बायर, बट इफ यू आर बाइंग योर प्राइमरी रेसिडेंस, यू कैन गो विथ 0% डाउन, जीरो डाउन, नो मॉर्गेज इंश्योरेंस, अप टू $2 million. दिस कैन बी योर प्राइमरी होम और योर सेकेंड होम, इट कैन नॉट बी एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. सो अगर आप लेक हाउस किधर बाय करने की ट्राई कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू बाय अ your investment property, we can definitely, second home, koi cabin aapko buy karna hai for your family, we can help you if you're a physician with zero down up to $2 million. So these are the different kind of programs we have at Dream Home Mortgage. And aaj ki tarikh mein jo waqt ka taqaza hai, jo government, jo abhi filhal administration ka haal hai, if you have a lot of equity in your house, if you're on any kind of work visa, or you're concerned about getting laid off, think about getting cash out. Have access to that equity in your house. Cash is king, cash is queen. Wo paise jo aapke haath mein, wo apna hai, baki sab sapna hai. So if you are concerned that you might get laid off, or you are concerned about your job, and you have a primary residence that has a lot of equity in that house, you should think about cash out loan. Or at the same time, if you have a lot of credit card debts, and you want to get cash out, whether it's on your primary residence or investment property or even commercial loan, you have paid off office condo, you have paid off shopping complex, you have good amount of equity, you have paid off land, or you have a good amount of equity in your shopping complex and you want to get some cash out, we can definitely help you. So basically, Kiranji, at Dream Home, we have a lot of different programs. We have programs for self-employed borrowers, जहाँ हम आपके tax returns को बिल्कुल नहीं देखते हैं. We qualify you based on your deposits made in your bank account. So हमारे पास self-employed borrowers के लिए great program है. And then investors जिन्हें buy करना है investment property, again we have a program where we disregard completely your tax returns. Or you have a home investment property जिस पे आपको cash out करवाना है, you are retired यार आपका layoff हो चुका है, आपको पैसे की जरूरत है, and here you have a property that is an investment property, you want to get some cash out. बहुत पहले, 2-3 साल पहले, it was not possible if you didn't have a job or if you were retired कि आपको वो cash out मिलना थोड़ा मुश्किल होता. आज की तारीख में there are a lot of different programs जहां हम आपको help कर सकते हैं.
0: Perfect. So Hussain ji, what is the best way to get in touch with you?
1: Any questions regarding real estate, whether it's commercial or residential, you're trying to construct, do any kind of construction, buy, sell, you need a realtor, we can definitely help you. The number is 972-245-5626, 972-245-5626, or info@dreamhomemortgage.com.
0: There you go, info@dreamhomemortgage.com is that email ID, जिस पे फौरन आपको जवाब मिलेगा आपके तमाम सवालात का. Thank you so much, Hussain ji, for connecting with us this afternoon. We will talk to you next time.
1: Always, always a pleasure. Thank you so much.
0: Have a good evening.

अगर आप पूछ रहे हैं कि प्लेनो में अच्छे खाने की जगह कहाँ पे है, देन सिग्नेचर इज द प्लेस यू गॉट गो. सिग्नेचर रेस्टोरेंट इज दैट नेम. ये लोकेटेड है जी राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ आलमा एंड स्प्रिंग क्रीक. इफ यू कमिंग फ्रॉम 75 देन यू विल एग्जिट ऑन स्प्रिंग क्रीक एंड यू विल फाइंड इट राइट देयर बिफोर द यू हिट द आलमा ट्रैफिक लाइट. यू विल गेट सिग्नेचर रेस्टोरेंट. नाउ यहाँ पे मिलता क्या क्या है जी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं. सम ऑफ देम आई हैव ट्राइड. उनकी निहारी जरूर खाइए, चाहे लैम शैंक खाइए, चाहे बीफ निहारी खाइए, चाहे Sizzling grills खाइए, crispy fried chicken खाइए, या mouth watering paratha rolls. Birthday anniversary के लिए उनके पास banquet hall है, and they'll make sure that they accommodate you all. Signature Cuisine at Spring Creek and Alma in East Plano. On the website you can find them at signaturecuisine.net. Leaving its signature on every taste. That is what a signature does for you, and that's the signature restaurant. लोग कहते हैं, कई बार मैं बात कर रहा होता हूँ, कहते हैं मैं पूछता हूँ नाम क्या है आपका, कहते हैं नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है. अरे भाई, नाम में तो सब कुछ रखा है, क्योंकि विश्वजीत नाम का आदमी भी अपनी बीवी के सामने हार जाता है. तो नाम में बहुत कुछ है भैया, विश्वजीत हो कि विश्वहार हो. एक और गाना है, उसके बाद छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है. आप कहीं नहीं जाएंगे, बिकॉज आई एम गोना बी कमिंग बैक विद अ लॉट मोर ओनली ऑन योर फेवरेट स्टेशन, जिसका नाम है द वन एंड द ओनली फन एशिया रेडियो. एंड आई एम गोना टेक यू टू दिस ट्रैक, जो कि फॉर ऑल द लेडीज मैन, फॉर ऑल द वर्क दैट यू डू, व्हाटएवर यू डू, यू आर जस्ट फैंटास्टिक. बिकॉज इतना काम अगर हमें दे दिया जाए, हम तो वहीं ठस हो जाएं. हमें तो बल्कि 10 बार बोलना पड़ता है, ट्रैश बाहर निकाल दिया, उसके बाद आप खुद ही निकाल लेती हो, सॉरी यार. बट एग्जैक्टली द रीजन यू आर वाओ

0: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
1: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
2: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
3: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
4: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Ducktime celebrates its first anniversary in Dallas. For Ducktime services, call Jeepu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
5: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
7: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
8: Beta, 95% aaye?
9: हाँ मम्मी.
8: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
10: मेरा?
8: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
10: वो
11: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अरे यार, घर मिल गया.
2: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन it's hard to find a realtor who offers great service and also cashback at closing.
0: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
2: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी.
0: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
3: तुझे देखा तो ये जाना सनम.
4: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज. DFW, get ready to relive the magic of Kumar Shanu live, unforgettable 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano. Gaiye, jhoomiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane. Limited seats, free parking aur meet and greet options available. For tickets, visit eventbrite.com ya fir call kare 214-869-2668 par. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.
5: सारेगामा कारवां.

मंदिर बड़ी अच्छी जगह होती है, हर बंदे को जाना चाहिए, और आसपास ना साइन वगैरह पढ़ते रहना चाहिए, वहाँ कुछ कुछ लिखा होता है वार्निंग्स पे। और ऐसे ही अभी आजकल फेस्टिव सीजन है तो मंदिरों में बहुत रश है, तो एक मंदिर के बाहर नोटिस लगा हुआ था और वहाँ लिखा था, अपनी बीवी को संभाल कर रखें, भीड़ में खो जाने पर कहीं आप ये गलत फहमी में ना आ जाएं कि भगवान ने आपकी सुन ली।

0: गलतफहमी हो जाती है बंदों को, तो उन्होंने बाहर लिख दिया कि भाई अगर बाय चांस लॉस्ट डोंट थिंक दैट गॉड हैज नो नो नो, इतनी जल्दी भी नहीं सुनता प्रेयर्स। खैर ऐसी एक लेडी अपने पति के साथ गई मंदिर और वहाँ पे ना एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर धागा बांधना होता है, धागा बांधते हुए आप जो भी मांगो ना वो पूरा हो जाता है। तो लेडी पति साथ खड़ा था, लेडी धागा बांधने लगी थी फिर रुक गई। तो पति ने पूछा क्या हो गया भाई तूने धागा क्यों नहीं बांधा, कहती नहीं नहीं छोड़ो, मन में सोच रही थी कि अगर मैंने इनकी सारी खुशियाँ मांग ली और मैं ही लटक गई तो। बंदा है जी, बिंदास है जी, राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो, गुड इवनिंग टू यू। 5:26 इन द स्टूडियो क्लॉक, टुडे सितंबर 8, बुधवार की शाम है, गर्मी अभी भी फिर बरकरार है। कौन है मेरे साथ, कुछ वार्तालाप इनसे करते हैं। गुड इवनिंग फन एशिया, हु इज दिस?
1: गुड इवनिंग भैया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो रेडियो पर।
0: बचपन में गिर गया था मालिक, उसके बाद कुछ चोटें हैं जो काफी लोगों को पता है कि परमानेंट है, पर वो दिखती नहीं है, वो अंदरूनी है।
1: बढ़िया गिरे हो, बढ़िया गिरे हो, लेकिन आज ऊंचाई पे चढ़ा रहा है आपने।
0: देखो
1: गिरे, मंदिर में जाना है।
0: देखो मैं तो एक ही बात कहता हूँ बउआ, कि गिरो गिरो जहाँ मर्जी से गिरो, पर देखो बेटा कभी किसी की नजरों से ना गिरो, बाकी सब बढ़िया है कि नहीं।
1: ओ तेरी छा गया भाई, छा गया।
0: तो बात है, ऐसी थोड़ी फालतू के पैसे लेते हैं, कुछ आता है भाई।
1: नहीं, एक बात आपसे और सारे हमारे लिसनर्स जो DFW के लिसनर्स हैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ मैं, कि आज आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि मंदिर जाना चाहिए। मंदिर के साथ साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सबको लेना चाहिए, वो है हनुमान अंश।
0: हनुमान के बारे में बिल्कुल अच्छी फिल्म है। एंड यू नो व्हाट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, कि जो उसका डायरेक्टर जो मतलब कैमरा गाय है, हु इज द सिनेमाटोग्राफर ऑफ दैट मूवी, ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स यंगर ब्रदर, तो मेरी फैमिली से है लड़का, ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब, गो चेक दैट आउट। एंड हमेशा एक बात रखना, गिरो पर किसी की नजरों से कभी ना गिरो,
1: बाकी सब से ना गिरो।

0: What a beautiful song from a lovely movie jiska naam tha ji Fashion. Priyanka Chopra, Kangana Ranaut in this one leading for the woman from the front. But main ek baat aapko batana chahta hu break pe jaane se pehle. Stree se na hamesha darna chahiye. Stree se hamesha darna chahiye chahe wo bijli wali ho ya koile wali. Okay? Bye.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
7: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
8: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
7: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
9: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
10: जिंदगी एक रंगमंच है
11: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
12: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
13: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice. Sadia!
15: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है।
16: वही आवाज आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
17: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
18: तुमसे मिलके दिल का है।
16: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
17: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

It's your boy Badshah. Welcome back after the break on Fun Asia Radio. It's 5:47 in the studio clock. 5:47 हो चुके हैं भैया. आज सितंबर की 9 तारीख है, बुधवार का दिन है. वेंसडे यानी कि मिड वीक में हम पहुंच चुके हैं. यहाँ पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है बस अब कहीं कुछ हो जाए, बस शुभ करके मैं सोऊं, सुबह उठूं फ्राइडे हो, पर नहीं होता. थर्सडे एक दिन आ ही जाता है दिन में. लेडीज, अगर आप बंदों से अपने कुछ मांग रही हैं जी, ज्वेलरी टाइप फीलिंग, तो बंदों मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर आपकी लेडी आपसे कुछ मांगे और बोले कि चलो मुझे वो सोने का हार या मुझे वो डायमंड का हार दिलवा दो, तो मैं तुम्हें सातों जन्म तक चाहूंगी, तो आपने एक जवाब देना है कि बात मेरी बात सुन ले, हार भी दिलाऊंगा, साथ में मैं एक डायमंड रिंग भी दिलवाता हूँ, पर जो मसला है ना वो इसी महीने इसी जन्म तक ही खत्म करना है. ठीक है, इसको आगे नहीं जाने देना. सात जन्म तक चाहूंगी, वो कह रहा है डायमंड भी ले ले, इसी में थैंक यू, यही है जन्म. बिफोर आई टेक यू टू द ट्रैक, लेट मी टेल यू अबाउट अटॉर्नी ओमर ख्वाजा. इफ यू आर एवर इन्वॉल्व्ड इन अ स्लिप फॉल या कार एक्सीडेंट, व्हिच आई नेवर होप दैट यू गेट इन्वॉल्व्ड इन, बट इफ यू डू, ये किस्मत की बात होती है, कोई ना कोई फंस जाता है जी चुंगल में. अगर आप फंस गए हों ऐसे किसी चक्कर में, तो एक नाम याद रखिएगा, एंड यू जस्ट हैव टू कीप दैट नेम इन माइंड एंड यूज इट व्हेन यू नीड इट. दैट नेम इज अटॉर्नी ओमर. ऑन द वेबसाइट ही इज attorneyomar.com, एंड दैट इज द पर्सन यू विल कॉल आफ्टर यू कॉल. पहले तो एक्सीडेंट हुआ, अपने आप को चेक कीजिए, मेक श्योर यू आर सेफ, एंड वंस यू हैव डन दैट गिव हिम अ कॉल सो ही कैन फाइट फॉर यू, गेट यू द राइट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. attorneyomar.com.

0: Today was the day when we lost a gem from the Indian Army. His name was Captain Vikram Batra, जिनके ऊपर फिल्म भी बनी थी जी. And I think we should definitely make more movies on people like that because that reminds us of the sacrifices they made. Captain Vikram Batra, born on today's date, 9th of September 1974. Not his lost day, but the birthday was today's date. आज ही के दिन ये पैदा हुए थे 1974 में. 7th of July 1999 he passed away. Indian Army officer who was awarded the Param Veer Chakra, India's highest military decoration, for his actions during the Kargil War. On 7th of July 1999 Batra was killed while fighting Pakistan troops. मैं नहीं बोलूँगा. At point 4875 in the Kargil district. And that was in the erstwhile of Jammu and Kashmir. But some souls that we always should remember. And we are doing the same for Captain Vikram Batra. Thank you for your service, Captain Vikram Batra. And thank you for whatever you did for the Indians and the Indian Army. With that, I'm moving on to the next track. But usse pehle aapke paas ek giveaway ki baat ki thi maine, which is coming for you from Fusion Republic. Pehle to ye bata dun ke they are very much loved in Richardson. Wahan se unki shuruaat hui thi. They are now in a brand new location in Irving. And this giveaway is coming from the city of Irving's Fusion Republic location. If you want to enjoy this lunch buffet, jo ki unka har day hota hai, wo to aap kabhi bhi jaake kar sakte hain. They have 25 items, chaat ho, chili paneer bao ho, burrata chicken tikka ho, many different flavors, jaise ki apricot malai kofta, something unique that you might not have tried anywhere else. Dinner is always a la carte, but the weekend, the lunch buffet is 7 days a week. Now, you are getting a chance to win one free siraga samba ya mutton dam biryani. उनके लैंग्वेज में इसको सीरगा सांबा बोलते हैं, विच इज एक्चुअली अ दम बिरयानी मेड विद मटन और वेजिटेबल दम बिरयानी. दोनों चॉइसेस आपकी हैं, यू कैन विन ईदर ऑफ देम. सवाल मेरा ये है आपसे, थोड़ा क्रिएटिव हैट लगा के सोचना है कि दुनिया में सबसे संतुष्ट आदमी कौन होता है. अगर हम मेल्स की बात कर रहे हैं, हु इज द मोस्ट कंटेंट मैन, संतुष्ट आदमी जिसकी कोई मांग नहीं है, कुछ नहीं है, ये कौन से लोग होते हैं. इफ़ यू कैन थिंक आउटसाइड द बॉक्स, गिव मी अ कॉल एंड टेल मी कि ये कौन लोग होते हैं जो संतुष्ट होते हैं. हु आर दोज, मी, यू, क्या उनके मतलब, व्हाट आर देयर स्पेशल थिंग्स दैट दे डू, व्हाट डू दे डू डिफरेंटली, कौन होते हैं ये लोग जो कंटेंट होते हैं लाइफ में, क्या पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, क्या कुछ और करते हैं. तो इसके लिए लाइनें आपकी खुली हैं जी. जब जवाब देंगे तो मेक श्योर करना कि आप अरविंद जाके इसको एंजॉय भी कर सके. गुड इवनिंग फन एशिया, रेडियो वॉल्यूम लो, खिड़कियां बंद कर लो, ब्लूटूथ से मुझे, आपने तो ब्लूटूथ पे उल्टा और डाल दिया, ब्लूटूथ से निकालना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को आपको छोड़ के अगली गाड़ी की तरफ जाना. नहीं जी, नहीं जी, ब्लूटूथ से काटो, स्पीकर से निकालो. हाँ जी,
1: काट दिया, काट दिया.
0: मुझे ना काटना, इसको ही काटना था ब्लूटूथ.
1: ब्लूटूथ को काट दिया.
0: वैसे तो मेरे मन को भाया, मैंने खीरा काट के खाया, किसी और का मन कुछ और कर रहा था, वो कुछ और खाते हैं. आपका नाम?
1: मेरा नाम मिहिर है.
0: मिहिर भाई, कैसे हैं मिहिर भाई? संतुष्ट हैं, कंटेंट?
1: ठीक ही है, नॉट बैड एट ऑल, चल रहा है.
0: अच्छी बात है.
1: पर सबसे संतुष्ट तो वो मैन है जिसकी जिंदगी में वो मैन नहीं है.
0: ओहो, वो मैन
1: जिसको क्रिएटिव चाहिए था ना.
0: वाह वाह वाह मिहिर भाई, क्या बात है. मिहिर भाई कह रहे हैं सबसे संतुष्ट वो है जिसकी जिंदगी में वो मन नहीं है. ओके मिहिर भाई, आपका जवाब लिख लिया गया है. अब जूतियां चाहे मुझे पड़े या आपको, वो मुझे नहीं पता. गुड इवनिंग फनेशिया, आपका नाम?
2: हाँ जी, माय नेम इज नेहा.
0: नेहा जी, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, हाउ आर यू?
0: गॉड इज गुड, लाइफ इज ब्यूटीफुल. यू टेल मी कि ये कंटेंट आदमी, संतुष्ट आदमी कौन होते हैं ये लोग?
2: आई थिंक जो मैरिड होते हैं आदमी लोग, जो 10 साल हो चुका होता है मैरिज का, नाउ उनको पता होता है कि अब कुछ नहीं होना, लड़ाई होनी है, झगड़ा होना है, फिर वापस वहीं रहना है. और कितना भी किसी से बोल लें कि प्लीज खर्चा मत.
0: बड़ी अच्छी बात है नेहा जी आपकी. इसी पे ना किसी ने एक बात बोली है कि शादी के पहले 5-10 साल ही मुश्किल होते हैं, उसके बाद आदत पड़ जाती है. थैंक यू नेहा जी आपकी कॉल का. और कौन मुझे बताना चाहता है कि भैया ये कौन सा तबका है, व्हाट इज दिस स्पेसिफिक पीपल जो कंटेंट हैं अपनी लाइफ में, सेटिस्फाइड हैं, कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है, कौन से लोग होते हैं ये? 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. गुड इवनिंग टू यू फन एशिया, हु इज दिस? आवाज नहीं आ रही आपकी हमें. हेलो हेलो हेलो हेलो, हाँ जी मालिक, कहाँ? हेलो हेलो हेलो, फोन लग गया. हेलो, हाँ जी लग गया है. गुड इवनिंग, कौन?
3: हाँ सलील बात कर रहा हूँ, आपके संतुष्टि का जवाब देना था।
0: सलील बात कर रहे हैं, SALIL।
3: यस सर,
0: सलील का मतलब क्या है सलील साहब?
3: सलील का मतलब है पानी।
0: पानी। क्या बात है, पानी की तो बहुत
3: हाँ
0: जरूरत है, गर्मी है। पिया आपने सलील अपने आप को आज? सलील भाई
3: तो जो
0: अपने आप को
3: जो
0: पिया
3: सब कुछ
0: आपने?
3: कर चुका होता है ना लाइफ में, वो बाद में बोलता है मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ
0: ओहो,
3: बाकी सब
0: मुझे
3: लोगों
0: लगता
3: को
0: है
3: जाके।
0: वो कहता है मैं सलील हूं, मैं सलील हूं, मुझे पानी पिला दो, मैं सलील हूँ। सलील भाई,
3: वो भी सही है।
0: आप ना इन गर्मियों में खुद को जरूर पीते रहा करो, क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर।
3: जी सर,
0: सलील भाई, जवाब आपका लिख लिया है जी हमने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। मूविंग ऑन टू द लास्ट कॉलर हियर। गुड इवनिंग फन एशिया, हु इज दिस?
4: दिस इज सोनू।
0: सोनू जी
4: आई
0: कैसे
4: थिंक द
0: हैं?
4: क्वेश्चन, मैं एकदम बढ़िया हूँ।
0: एकदम बढ़िया। मैं दो दम बढ़िया हूँ, मेरे को दो दम डाले थे उन्होंने। अच्छा सोनू भैया,
4: सही है, सही है,
0: ये
4: दो दम
0: बताओ,
4: बढ़िया।
0: संतुष्ट संतुष्ट आदमी, सेटिस्फाइड मैन, कंटेंट मैन, जिसकी कोई डिमांड नहीं मांगनी, हु इज दिस मैन?
4: गंजे लोग होते हैं, उनके कोई मांगी नहीं होती है।
0: अरे सोनू रे सोनू, सोनू के लिए तालियां हो जाए। सोनू, तुमने तुम्हारा मौके पर चौका जो मैं ढूंढ रहा था, बिल्कुल ठीक बात तुमने कही बाबा। देखो जो बंदा होता है जी गंजा, वो बहुत संतुष्ट है, कोई उसकी मांग नहीं होती ना ही उसका
4: कोई मांग नहीं
0: ना।
4: है,
0: और उसकी एक और बात है, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता मालिक, इसलिए वो संतुष्ट है, बेढर चलता है, इधर उधर घूमता है, मजे लेता है। आप जीत चुके हैं सोनू भैया, हमारी तरफ से बिरयानी मटन की या वेजिटेबल दम बिरयानी। ये लोकेटेड है जी फ्यूजन रिपब्लिक अरविंग में, 8080 वॉल्टन बुलेवार्ड। जा सकते हैं वहाँ?
4: बिल्कुल जा सकते हैं।
0: चलो जाइएगा, फिर एंजॉय कीजिएगा इस बिरयानी को। मेरे लिए आप करेंगे होल्ड और मैं लेता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन ऑफ द एयर। यस इट इज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर। यही बात है ना कि जिसकी मांग ही नहीं है, जिसका कोई बाल ही बांका नहीं कर सकता, वो संतुष्ट है, कंटेंट है, और वो गंजा है। अनुपम खेर साहब ने कहा था, ये ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान ही बनेगा, ये गंजे की औलाद है, ये गंजा बनेगा। खैर मैं चलाऊं जी एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे। ब्रेक के उस पार वी हैव अ लॉट मोर कमिंग फॉर यू ओनली ऑन फन एशिया रेडियो। मुझे ना अपनी माँ बाप की वो बात नहीं भूलती, वो सीधा सीधा आके ना, मम्मी मेरी ये नहीं कहती थी कि कमरा साफ कर ले, वो कहती थी कुत्ता भी अगर बैठता है ना तो पहले दुम से सफाई करके फिर बैठता है। अच्छा, कर देता हूँ सफाई।
5: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
6: Official tax and finance partner, AG FinTax.
5: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
6: In association with Passion Health Primary Care.
7: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
8: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
9: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
10: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
11: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
12: Helpline, how may I help you?
13: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
12: Fear not, we have the perfect solution.
14: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
15: ये तारा वो तारा हर तारा।
16: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है।
14: तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
16: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
17: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका. लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
18: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
17: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
18: और एंटरटेनमेंट,
17: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में.
18: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
17: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
14: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
19: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.

0: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories. 5 se 8 straight from the heart. Kal Hindi Hindi Bol.
1: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navnita Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
2: Call Navnita Khemka at 347-449-4242.
0: फोन उठाइए, नंबर दबाइए 347-449-4242.
3: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
3: ये क्या होता है?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
6: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल.
7: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
6: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन डबल द फ्लेवर.
5: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
6: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
5: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
7: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
9: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज. दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी. कॉल तो करो 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
10: डोंट लेट डेट रूइन योर लाइफ. विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर.
11: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह, HEB में. सोना सूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ. वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर.
12: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

0: कौन कहता है कि ऊपर वाला आपकी मदद के लिए नहीं आता? एक्चुअली ऊपर वाला खुद नहीं आता, वो जरिए बनाता है। पर हमारे भी लाइफ में ना बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैसे पहले शादियां होती थी शांत, चर्च में या मंदिर में हुई या मस्जिद में हुई, चुपचाप हुई, भाई साहब आए, कलमा पढ़ा, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। फिर हमने बहुत सारे जुगाड़ लगा लिए। अब क्या हुआ जी, एक आदमी ऐसी सुबह सुबह घर से निकल रहा था, निकला तो मार्केट गया, मार्केट में गया तो सड़क क्रॉस करने लगा था, सड़क क्रॉस करने लगा था, जैसी क्रॉस करने लगा बहुत रश था, एक आवाज़ सुनाई देती है उसको, रुक जा रुक जा रुक जा, वो रुक जाता है, सामने से गाड़ी बहुत तेज़ निकल जाती है, वो सोचता है थैंक यू यार जिसने भी आवाज़ लेके बचा लिया, नहीं तो मैं गाड़ी के नीचे आ जाता। 2-3 दिन बाद वो अपने दोस्त के साथ पहाड़ों में घूमने गया, पहाड़ों में घूम रहा था, गाड़ी चल रही थी, एकदम से उसको आवाज़ आती है, रुक जा रुक जा रुक जा, रुक जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है सामने, पहाड़ गिर जाता पूरा, वो बच जाता है, बचता है तो अब रियलाइज होता है उसको, यार ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वो पूछता है इधर उधर अपने मन से, आवाज़ लगाता है कि हे आवाज़ तू कौन है? तो आगे से आवाज़ आती है, मैं तेरी हिफाजत का फरिश्ता हूँ। तो कहता है, भाई साहब आप हिफाजत के फरिश्ते हो, बड़ी अच्छी बात है, ये तो ठीक है, पर आप जब मेरी शादी हो रही तब कहाँ थे? कहता मैं तो आवाज़ें लगा रहा था, तुमने डीजे लगाया हुआ था। और लगा लो डीजे, नचन तो पहला ढिकचिक ढिकचिक कर लो शौक पूरे। इतना लाउड लो डीजे लगाते हो कि तुम्हें ऊपर वाले की आवाज भी नहीं सुनाई देती, अब भुगतो। दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। जी हाँ, आपके लिए लोकेटेड है ये मेनी लोकेशंस इन DFW, एंड आई एम टेलिंग यू दे हैव अ ग्रेट ऑफर फॉर यू, स्पेशली आज के टफ टाइम्स में। यू नो इंश्योरेंस ऑफ अ फैमिली इज क्लोज टू $1,000 मैन, मेडिकल इंश्योरेंस, बट इफ यू डोंट हैव इंश्योरेंस, पैशन हेल्थ आउट ऑफ नेटवर्क है अगर आप, देन पैशन हेल्थ विल डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू आर टेकन केयर ऑफ। उनका एक प्लान आया जिसका नाम है पैशन हेल्थ डायरेक्ट, विच इज जस्ट $85 अ मंथ, दैट इंक्लूड्स योर प्राइमरी केयर विजिट्स, प्राइमरी प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ एंड मोर, एंड आई थिंक दैट इज ग्रेट। साथ साथ आपको लैब्स मिलते हैं डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, एंड यू कैन मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज सीरियस ही बात है भैया, हेल्थ है तो वेल्थ है, बाकी सब बकवास। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259, दैट्स 214-666-6259, और विजिट passionhealthphysicians.com। द प्रोग्राम इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस, एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई, बट द गुड पार्ट इज दैट इन दैट 85 योर डॉक्टर विजिट्स, योर प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड टेली हेल्थ इज अवेलेबल टू यू, एंड यू डोंट हैव टू वेट इन लाइन व्हेन इट कम्स टू पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। लुक फॉर देम in your neighborhood by just typing in to your browser Passion Health Primary Care, and you'll get all the information that you need, and I'm sure there's a location right next to you. कुवारों को लगता है कि शादी ना बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता है और उसमें रिंग डालनी होती है, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। हाँ बेटा, वो रिंग तो होती है, बट तुम्हें ये नहीं पता होता कि वो जो रिंग तुमने पहना दी है उसके बाद तुम बॉक्सिंग रिंग में हो, और जज जो है ना, जज वो भी बीवी है।
1: मेरे हीरो करण सिंघानिया, जो कि आज बहुत बड़े पॉप स्टार हैं, उन्होंने ये गाना पहली बार।
0: जज मतलब रेफरी वगैरह, वो भी बीवी है। ये फिंगर रिंग शादी के बाद, बॉक्सिंग रिंग।

इन द वॉइस ऑफ कुणाल गांजा वाला जिन्होंने गाया था जी ये गाना, इसके साथ जो इनका एक गाना और पॉपुलर हुआ था विच वॉज वो लम्हे वो बातें, एंड दैट वॉज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल नंबर एज वेल. आई एम गोना प्ले दैट सम टाइम इन माई शो, नॉट टुडे. यू आर लिसनिंग टू योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो. इट्स 6:31 इन द स्टूडियो क्लॉक, 6:31, एंड आज है जी सितंबर की 9 तारीख. सितंबर 9th को एक जन्मदिन हुआ जी, विच इज ऑफ अक्षय हरिओम भाटिया, जिनका बर्थ नेम राजीव हरिओम भाटिया है. हम इनको जानते हैं अक्षय कुमार के नाम से. 9th of September ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1967, रेफर्ड टू इन द मीडिया एज खिलाड़ी कुमार या खिलाड़ी नंबर वन. बहुत सारा नाम इन्होंने कमाया, बहुत सारी मेहनत भी करी, एंड बहुत सारे अवार्ड्स इनके नाम हैं, जैसे कि 2 नेशनल फिल्म अवार्ड हैं, 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं. 2009 में पद्मश्री भी मिला इनको, एंड फोर्ब्स इंक्लूडेड हिम इन द लिस्ट ऑफ बोथ हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज एंड एक्टर्स इन द वर्ल्ड फ्रॉम 2015 to 2020. इनके करियर की शुरुआत हुई थी, एक थकी सी फिल्म आई थी, उसका नाम थकी सी फिल्म आई थी, उसका नाम था सौगंध 1991 में. अगर उसमें आप देखो इनको तो बिल्कुल चूजे से थे, एंड ही यू नो ग्रूम्ड हिमसेल्फ, एंड देन बहुत सारा सक्सेस मिला विद अ फिल्म जो कि एक साल बाद आई थी 1992 में, दैट वाज खिलाड़ी. एंड उसके बाद खिलाड़ी के साथ एक एक्शन स्टार का 90s में जो इनका मतलब पोडियम बना, वो ऐसा बना कि बस उसके बाद फिल्में ही फिल्में, काम ही काम मिलता रहा. एंड खिलाड़ी की फिल्म सीरीज पहले बहुत अच्छी चली, फिर मोहरा आई 1994 में, सुहाग आई, संघर्ष आई, जानवर आई, ये दिल लगी 1994, धड़कन विच वॉज अनदर बिग हिट, अंदाज बिकेम अ बिग वन, एतराज, नमस्ते लंदन वॉज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज ऑफ ऑल टाइम फ्रॉम अक्षय भाई. एंड देन द कॉमेडी स्टार्टेड टू स्टिक इन, हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया, वेलकम, सिंग इज किंग, एंड अजनबी जैसी फिल्में जिसके लिए इनको मिला परफॉर्मेंस इन गरम मसाला फॉर हिज कॉमिक रोल. एंड अच्छी फिल्म में नेगेटिव रोल मिला था अजनबी में, बट नॉनदलेस आई थिंक ही इज अ ग्रेट एक्टर, ग्रेट ह्यूमन बींग. बॉर्न ऑन टुडेज डेट 9th of September. अकी भैया फ्रॉम द टीम हियर एट फनेजिया एंड फ्रॉम बंदा बिंदास मार्विन दास, वी आर विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड आई वॉन्ट टू प्ले टू ऑफ योर ट्रैक्स, बिकॉज आपकी जो फिल्में हैं वो 90s से लेके आज तक हमें एंटरटेन कर रही हैं. एंड द लास्ट वन दैट ही डिड वॉज भूत बंगला. आई एम हियरिंग दैट ही इज कमिंग बैक विद सैफ अली खान फॉर अनदर प्रियदर्शन मूवी. आई डोंट नो अबाउट इट येट, बट जैसे जैसे मुझे इन्फो मिलेगी मैं खुलासा जरूर करूंगा. तो पहले ले चलता हूँ टू हिज 90s फ्लेवर विद दिस ट्रैक दैट बिकेम एन इंस्टेंट हिट.

पैदा हुए चांदनी चौक दिल्ली में इन टू अ पंजाब फैमिली, पंजाबी फैमिली रादर, और उसके बाद डॉन बॉस्को हाई स्कूल किया मतुंगा में, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से पढ़े एंड उसके बाद ड्रॉप आउट कर गए जी। बैंकॉक गए 5 साल, वहाँ थाई बॉक्सिंग सीखी और एक सिस्टर इनकी अलका भाटिया, एंड देन इनका काम जो है थाईलैंड के बाद कलकत्ता में कुछ ट्रैवल एजेंसी के साथ काम करना शुरू किया, ढाका एक होटल के साथ एज अ शेफ काम करना शुरू किया, एंड फिर कुंदन की ज्वेलरी बेचने लगे दिल्ली में। जब उसके बाद मुंबई वापस आए, उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया और उनके ही एक स्टूडेंट ने उनको कहा कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते सर, विच लेड टू एन असाइनमेंट टू अ फर्नीचर शोरूम। उसके बाद फोटोग्राफर जय सेठ के साथ काम किया 18 महीने टू क्रिएट हिज प्रोफाइल, एंड देन पहला डेब्यू आया था अपीयरेंस इन अ फिल्म कॉल्ड आज 1987 एज अ कराटे इंस्ट्रक्टर, और उसके बाद की कहानी हिस्ट्री है। बट आई एम गोना प्ले वन मोर ट्रैक विच इज़ वेरी क्लोज टू मी, आई लव दिस ट्रैक। आई थिंक हिमेश साहब ने अगर कुछ काफी गाने उनके यूनिक हैं, बट आई थिंक कुछ अच्छे नगमे हैं जिनमें से ये जरूर है। वंस अगेन विशिंग अक्षय कुमार अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द टीम हियर एट फनेजिया एंड फ्रॉम बंदा बंदास।

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
2: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
1: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
3: Hello Texas parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna ko at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeepu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
6: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट
7: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव
6: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स
7: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन
8: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
9: जिंदगी एक रंगमंच है
10: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com
11: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस पोकर हो या ब्लैक जैक एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए लकी बन जाइए चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट एंटरटेनमेंट लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

माफियां तो अब आपको नहीं मांगनी पड़ेंगी अपनी बीवी से, यानी कि हमारी भाभी से, स्पेशली अगर आप आर्लिंगटन, मैंसफील्ड या क्या एरिया पड़ता है जी, ग्रैंड प्रेरी में रहते हैं, तो अब आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पहले तो आप माफ़ी मांगते, सॉरी बीवी, ये भूल गया, अब लेने जाऊँगा तो बड़ी दूर जाना पड़ेगा। इसलिए अब आपको लेने कुछ भूल भी जाओगे तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हिमालयन बाज़ार आ चुका है जी इन ग्रैंड प्रेरी, राइट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे 20 एंड हाईवे 360। This is at 5103 Magna Carta Boulevard in Grand Prairie. Enjoy free delivery on orders of $50 within 5-mile radius. तो पहले काम लेडीज ये करिए कि आप ये देखिए कि आप हिमालयन बाजार ग्रैंड प्रेरी से कितना दूर हैं। If you are within a 5-mile radius, चिंता ही नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर मारो या कॉल करके ऑर्डर करो, $50 की ग्रोसरी पे, नो डिलीवरी फी। एंड वहाँ पे मिलेगी आपको सारी साउथ एशियन ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, फल सब्जियाँ, उसके साथ साथ हलाल मीट्स, हॉट स्नैक्स जो कि समोसे, चाय, पकौड़े, शकौड़े गरम गरम शाम को आपको मिलेंगे, एंड एवरीडे एसेंशियल्स आर अवेलेबल, सब कुछ एक ही छत के नीचे फॉर माई नेपालीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यहाँ पे आपको हिमालयन वाटर बफ भी मिलेगा एंड ऑल ऑफ योर नेपालीज ग्रोसरीज वेल, पूरा साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर है, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, इंडिया से हैं, यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू नीड बीइंग अ साउथ एशियन, एंड दैट इज एट हिमालयन बाजार in Grand Prairie. Make sure to put that in your Google or any other browser and check them out. Agla gana jo main lagane laga hu, it's from my baby cousin. Ye mere mamu ka ladka hai, sake mamu ka ladka. He's a lot into music and he's a young bloke, I think about 30s now. And ek gana tha Pia, which is an older track. Uska ek naya version, naya infusion main bolunga jo banaya inhone, beautifully sung. And I'm sure you're going to like this. सुन के बताइएगा आपको कैसा लगा। Here we go.